फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी केंद्र है। बार है शक्सवत 1948 के वैसाख मास की 22वीं तिथि तदनुसार 12 मई 2026 इस समय 5:57 हुए हैं। हमारा प्रसारण अब आता है।

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। मंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज

0: परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के रैकेट केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 MHz पर 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चिंतन।
2: होगा

जाते हैं। ऊपर पड़ रहा है, रात हो गया। हत्या कर दी और आराम पढ़ा सदस्य पिकनिक पर बाहर गए हुए थे तो यह हादसा देखकर दंग रह गए। जब गया तो उसने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, मम्मी ने मुझे इसका परिणाम क्या हुआ है तथा अपने बीवी बच्चों को मारना पीटना तो आम बात है, कितने घर इस नशे की वजह से उजड़ गए और भविष्य में उजड़ेंगे कहना मुश्किल है। की वजह

में समा जाते हैं, उनके बाद हमारा और अनाथ की जिंदगी जीना पड़ता है। जिसे भी गलत लत लग गई, समझ लीजिए उसका सब कुछ खत्म होने में देर नहीं है। सिद्ध गायक इस भ्रम में जीते रहे कि वे पीने के बाद बहुत अच्छा गाते हैं। अपने जीवन के अंतिम दौर में एक बार जब वे बहुत पीकर बाद भी ठीक से ना गा सके, तो दादा गीत तो रिकॉर्ड पर मेरी एक प्रार्थना है, कल आप बिना पिए सिर्फ मेरे को और गा दीजिए। जब उन्होंने अलग अलग स्थिति में रिकॉर्ड किए गए उस गीत को सुना तो लगभग मुझे किसी ने पहले कराया होता

0: भी एकदम भ्रामक और बेबुनियाद है कि इससे थकान मिटती है या इसे पीने वाला व्यक्ति दुखों कि एक बार इसकी लत लग जाने के बाद इसे छोड़ना कठिन लगता है, परंतु यह मुश्किल काम नहीं है तो बस इसे छोड़ सकता है। बस तो केवल की अतः बेईमानी इसी में है कि हम इस जहर से दूर ही रहें।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। हम रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जिसमें आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अभ्यंकर की आवाज में भक्ति गीत। रचना है मीरा की, संगीत है अजय जोगलकर का।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं जय घोष वंदे मातरम और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। श्रोता, गीत नहीं है बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है, तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। गीत की महत्व तो सब भारतीय ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल भी है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नवलिस्ट थे। 7 नवंबर 1875 ये चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन जो बंकिम चंद्र ने ही संपादन किया था, बंगला दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। यदि आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया। उसके पहला सुर दिया जदू भट्टो ने। सुर में इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ

0: पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना के प्रवक्ता थे, जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर, नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट, प्रख्यात चिंता भी। रमेश चंद्र दत्त ने कहा द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी, बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी कहा गया। बंकिम ने जीवन की हर उम्र पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था, जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र अत्याभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्रेशन हुआ इस गीत में। बंकिम, मैंने पहले ही कहा कि एक नवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of Swadesh Puja. On 1876, West Bengal ki Hugli Jela mein Gopalchandra Dhar namak ek vyakti Vande Mataram Gheet Desh Mallar Dhun mein gaya tha. Aur maine bola ki 1871 mein Gheet ka parikalpana Murshidabad Jela mein hua. Vande Mataram hamara garv hai, Swadesh ko aage badhane ke liye ये गीत हर वक्त हमारा आदर्श होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं, जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे, उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में, तब उसका गीत का प्रचार हुआ। उसके बाद ये देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए सम्मान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखे तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार, बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
1: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनवेंद्रनाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार। मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: का कार्यक्रम वंदना हम आप बोल रहे हैं पर लीजिए अब सुनिए कृषि चर्चा विषय में एकीकृत मत्स्य पालन किसानों के लिए लाभकारी सहायक मत्स्य अधिकारी मत्स्य बीज परिक्षेत्र चांदमारी।
1: सभी किसान भाई मल्ला राम राम। जैसे कि

0: तो एक ही किट में जो
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। बैठ हुए हैं, आइए अब आपको जानकारी दे दी कार्यक्रमों के बारे में। थोड़ी देर पर कार्यक्रम झरोखा हम पर पैतालीस मिनट पर किया जाएगा 8:30 पर।

0: आकाशवाणी एट 90.90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: हाथी हमरगोट का प्रसारण हुआ शाम 5 बजे हुआ 5:30 पर जिसमें आज की बात का विषय है हेल्दी प्लेनेट स्वास्थ्य दिवस नजरों सुल्तानपुरी गीतकार 20 मिनट पर साथ ही शाम 7 बजे किसान का समय होगा 7 मिनट पर जिसमें आज की बात का विषय है कृषि यंत्रों का सही इस्तेमाल एवं देखभाल से उम्र बढ़ाए नींबू में लगने वाले कीट और उसका नियंत्रण कृषक प्रश्न मंच आज का मंडी भाव आज का मौसम लेकर आएंगे 8:20 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 8:30 पर विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा 9:00 से विविध से हम लेकर आएंगे 10:00 कार्यक्रम यादें का समय होगा 10:30 पर

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी 106.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए

श्री रामचरितमानस की रचना के प्रारंभिक प्रसंगों में व्यास आदि श्रेष्ठ कवियों की वंदना करते हुए तुलसीदास ने रामायण के प्रणेता ऋषि वाल्मीकि के चरणों में सिर नवाया है। कहते हैं आदि कवि के रामायण खरदूषण सहित होने पर भी अत्यंत सुंदर और सर्वथा दोष रहित है। भक्त कवि ने फिर चार वेदों की वंदना की है जो भव सागर पार करने के लिए जलयान के समान है। साथ ही प्रणम्य है ब्रह्मा जिन्होंने भव सागर की रचना की जिसमें से एक ओर अमृत चंद्रमा तथा कामधेनु जैसे जीवनदायी निकले तो दूसरी ओर मनुष्य रूपी विष तथा मदिरा। तुलसीदास को विश्वास है कि देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके ही उनके मनोरथ पूरे होंगे। सरस्वती देव नदी गंगा शिव पार्वती आदि के सम्मुख सिर नवाकर ही वो श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन कर सकेंगे। तभी उनकी भाषा तथा कविता का जो प्रभाव उन्होंने कहा है सत्य हो सकेगा।

Sondern megahertz पर प्रस्तुत है देश का

हम केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। छह बजकर 55 मिनट हुए, अब समाचार होंगे।

0: आकाशवाणी प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ता वर्णयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमंत्री ह्यः गुजरात
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोक्तवान यत केंद्र प्रशासन प्रयास भारतम पश्चिम उत्पन्न प्रबंधनं करोति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् देशं प्रभावः भवेत् इति निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति इति। एतदपि कथितवान् यत् आगामी एकवर्षं यावत् तैलेन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेशयात्राभ्यः दूरीकरणं नियंत्रणं तथा स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेष कृतः, येन देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरभ्य संयुक्त अरब अमीरात नीदरलैंड नॉर्वे इटली इत्येतेषां देशानां षड् दिवस प्रथमे चरणे संयुक्त अरब अमीरातम संप्राप्स्यति, यत्र राष्ट्रपतिना मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इत्यनेन मेलनं करिष्यति। द्वौ नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतया ऊर्जा विनिमयं करिष्यतः। यात्रायाः द्वितीये चरणे प्रधानमंत्री शुक्रवासरे नीदरलैंड देशं सम्प्राप्स्यति। यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणः नीदरलैंड देशस्य द्वितीया यात्रा भविष्यति इति। यात्रायाः तृतीये चरणे श्रीमोदी रविवासरे नगरं गमिष्यति। श्रीमोदी करिष्यति। विदेश मंत्रालयः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः आगामी यात्रा व्यापार निवेश संबंधीषु इतोपि भाजपा दलस्य नेता हिमंत विश्व इत्येषः अद्य चतुर्मन्त्रिभिः मन्त्रिरूपेण ग्रहीष्यति। द्वितीयवारं एनडीए प्रशासनं भविष्यति यत् निरन्तरं द्वितीयवारं मुख्यमन्त्रित्वेन करिष्यति। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां धर्मशाला इत्यत्र हिमाचल प्रदेश क्रिकेट

पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।

तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की रहेंगे। भारतीय

0: विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए
1: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी होगी। पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता में गिरफ्तार किया। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी गिरफ्तार पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। आईपीएल क्रिकेट में को 3 विकेट से हरा दिया है। 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 1916 प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 7:05 हुए हैं। अब चित्रपट संगीत, जिसमें सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आवाज में ये गीत, जिसे लिखा है कौशल मोनी ने।

आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्रोता प्रतिक्रिया में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एसडी महंत की प्रतिक्रिया।

में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्रेया घोषाल जावेद बसीर की आवाज में भाग मिल्खा भाग फिल्म का ये गीत जिसे लिखा है प्रसन्न जोशी ने, तर्ज बनाई है शंकर एहसान भाई ने।

के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें मुंबई संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भाषा की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, संचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेराज, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: सैनिकों की जय माला।
1: 22 की बातें यादों के उजाले,
0: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
2: सखी सहेली।
0: बॉम्बे टॉकीज
3: लॉइट के सितारे,
0: हम क्या कहें आपको, याद सब है जरा जरा,
2: मुझे याद सब है जरा जरा।
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
0: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
0: सुरीली संदली।
4: कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं चिन्मयी श्रिपड़ा शेखे रिवजैनी की आवाज में हसी तो फसी फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, तर्ज बनाई है विशाल शेखर ने।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन की क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: विविध भारती
1: देश के सुरीत
0: के साथ रीत सरिता
1: कुछ गीत
0: फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट
1: चौबारे
2: की सही
3: किस सितारे
1: हम क्या आपको या जरा जरा
2: मुझे सब है जरा जरा
1: थोड़ा सातों दिन
4: कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 7:35 हुए प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम चरोखा।

कार्यक्रम झरोखा सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने रेडियो साथी कृष्ण कुमार साव का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, लाल हमारी सेहत के लिए भले ही ठीक ना हो, लेकिन फलों के लिए लाल पीला होना बहुत ही जरूरी है। यह उनके पकने का संकेत है, जिसे समझने वाले आसानी से पढ़ लेते हैं। आपने कभी सोचा है कि अधिकांश रसीले गुदेदार फल पकने पर लाल पीले या गहरे जामुनी ही क्यों होते हैं, और इन संकेतों को पढ़ने वाले आखिर कौन हैं और उनका काम क्या है? साथियों, कार्यक्रम में आज हम कच्चे फल हरे और पके लाल पीले ही क्यों, इस विषय पर आपकी जानकारी को समृद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, अधिकांश कच्चे फल हरे रंग के होते हैं ताकि वे पत्तियों में छिपे रहें। वे पत्तियों के हरे रंग में इस तरह घुल मिल जाते हैं कि पर या फल भक्षियों को आसानी से रंग के अलावा कच्चे फलों की एक और विशिष्टता अपरी स्वाद भी है। मसलन चेरी का कच्चा फल बहुत ज्यादा खट्टा होता है, कच्चा जाम भी कसाला सा होता है। कच्चे अंजीर व गुलर के फल ठोस व लेटेक्स से भरपूर होते हैं, परंतु पकने पर यह लेटेक्स गायब होकर और फल लाल पीला नर्म मुलायम और स्वादिष्ट हो जाता है। इस तरह कच्चे फल अपने अपरी स्वाद और रंग के कारण फल भक्षियों से तब तक बचे रहते हैं जब तक कि उनके अंदर भरे बीज पककर बिखरने के लिए तैयार ना हो जाएं। कई फलों में जुलाब का भी गुण होता है, इसके भक्षण से फल भक्षी को दस्त लग जाते हैं और वह बार बार विष्ठा करता है। इससे बीजों का बिखराव बेहतर तरीके से होता है। यह मान संयोग नहीं हो सकता कि लाल पीला रंग पके फलों में बहुतायत से मिलता है। एक तो यह कि यह रंग कीटों को स्पष्ट नहीं दिखते, इससे पका हुआ फल कीटों की नजरों से छुपा रहता है, और दूसरा यह कि ये जीव इतने छोटे हैं कि वे इन फलों के बीजों का बिखराव नहीं कर सकते, अतः उन्हें नजर ना आए तो ठीक है। कीटों को लाल रंग नहीं दिखता, अतः ऐसे लाल फूलों का परागण कीटों के बजाय पक्षियों से ही होता है। रसीले व गुदेदार फलों का पकना शुरू होते ही उनमें कई सिलसिलेवार रासायनिक व भौतिक परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले पत्तियों जैसे हरे रंग से स्पष्ट व चटकीले लाल पीले या जामुनी रंग का विकास होता है। फल भित्ति में जमा हरा पदार्थ क्लोरोफिल धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और इसकी जगह अन्य रंगीन पदार्थ क्रोमोप्लास्ट बनने लगते हैं। इससे फलों की रंगत बदलने लगती है। कच्चे टमाटर का सफेद हरे से हरा पीला और फिर पीला नारंगी और अंत में सुर्ख लाल, ऐसे परिवर्तनों के चलते होता है। इन फलों को पकने में इथिलीन की महती भूमिका होती है। साथियों, यह हार्मोन्स है जो फलों को लाल पीला करने के लिए जिम्मेदार है। कच्चे फलों में उपस्थित स्टार्च और कार्बनिक अम्ल, जिससे कच्चे फल खट्टे लगते हैं, शर्करा में बदलने लगते हैं, इन सभी परिवर्तनों के साथ साथ चलने से कच्चा हरा फल सुंदर सुगंधित लाल पीला या जामुनी रंग का हो जाता है, यानी अपने अंदर छुपाए पक चुके बीजों को बिखराने को तैयार, ताकि पेड़ों पर लगे ये लाल पीले सिग्नल देखकर फल भक्षी आए और अपनी भूख मिटाएं और बदले में बीजों को दूर तक बिखराएं। इस तरह फल भक्षियों की भूख मिटती रहती है और फलों का वंश भी फलता फूलता और फैलता रहता है। इसलिए अधिकांश रसीले गुदेदार फल लाल पीले होते हैं। अगर ये लाल पीले नहीं होते तो फल भक्षियों की नजरें इनायत नहीं होती। साथियों, अब आप भी लाल पीले ना हो और आनंद लीजिए इस गीत का।

तो दीपू, कार्यक्रम से अपने रेडियो साथी कृष्ण कुमार साहब को अगले अंक में एक नई जानकारी लिए हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन की क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: अभी आप प्रस्तुत है कार्यक्रम बाजे मांगे, जिसमें हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राम प्रसाद मेनी, ललिता चंदेल, सुनीता थवाइत की आवाज में गीत।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन की क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

इस गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मादरब संपन्न होता है। हम केंद्र से बोल रहे हैं 107.7।

प्रदर्शन का समय होगा 5:10 पर। वाणी का समय होगा 5:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय है हेल्दी प्लांट हेल्दी प्लेनेट अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। एक ही कलाकार में आज हम आपको सुनवाएंगे मजरू सुल्तानपुरी गीतकार के बारे में। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकेंगे शाम 6:20 पर, साथ ही शाम 7:00। किसान भाइयों के कार्यक्रम किसान वाणी का समय होगा 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय है कृषि यंत्रों का सही इस्तेमाल एवं देखभाल से उम्र बढ़ाएं। साथ ही सुनिएगा आज की नसीहत में नींबू में लगने वाले प्रमुख कीट एवं उनका नियंत्रण। आप सुन सकेंगे इसी कार्यक्रम में आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव, आज का मौसम, गैर फिल्मी गीत हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 8:20 पर, फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकेंगे रात 8:30 पर, विविध संगीत का आनंद लीजिए रात्रि 10:00। पुरानी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम यादें का समय होगा 10:30 पर। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष पर श्रोता प्रतिक्रिया में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राहुल बिश्नोई की प्रतिक्रिया।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

हम आकाशवाणी के नगर केंद्र से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100 मेगाहर्ट्ज पर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हिमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
4: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
8: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
9: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
10: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ। और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
0: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमेरिका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
11: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
12: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवलसन परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
13: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
14: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: कि हमर कलाकार में आज हम लोकनेता श्री जयंत तीसरा कड़ीला सुनबो हमन जी जो बोला सुनें अपन गीत के माध्यम ले सब दिखावत है जयंती जी हा सोना बिहान जयंती जी हा गीत लोगन के दिल में जगह बनाए है ये फिल्मकार मनु नायक जी अब साथ उकर तेला सुनबो ता भी तीसरी कड़ी
1: तीरिया की दुख का

0: मनु राय के ला जान हाँ। बनाई
1: हाँ हाँ।
0: वो समय में एक लेखक महतारी रे हूँ
1: हाँ
0: हाँ। नहीं दू जन हो गए
1: हाँ हाँ।
0: आपको घर ललीपत हो
1: हाँ हाँ।
0: मनु नायक
1: हाँ।
0: और मलय चक्रवर्ती खोजात खोजात खोजात खोजात
1: हाँ।
0: दीपक गुरु जी मर गए बिचारा पोटिया
1: चंद्राकर
0: चंद्राकर
1: हाँ हाँ।
0: ओला धार के आई दीपक घर की सर कोई छत्तीसगढ़िया का छत्तीसगढ़ में खो रूप में चले गया कहाँ कहाँ रायगढ़ चले गया बोले
1: हाँ।
0: छत्तीसगढ़ गाँव मोर पिक्चर आए बार मो चाह छत्तीसगढ़ के गवैया ला देते थे
1: हाँ।
0: मिला हम पुलिस
1: हाँ।
0: दीपक लो
1: हाँ।
0: तो हमें फिर चाहे अरे बड़ा नाम सुनी मुनिका कहाँ रहती
1: हाँ।

0: खेरागढ़ के
1: हाँ।
0: जेला लता मंगेशकर ला वो सिखाए रही से
1: हाँ।
0: जी
1: हाँ।
0: ते मोला देखेला आइस ये गाना कौन गा है।
1: अच्छा तो कहीं देवे संदेश में ये गीत लगाए रहे हो आप।
0: हाँ
1: अच्छा
0: ईचे गा रहे हो।
1: हाँ आकाशवाणी ले।
0: हाँ
1: अच्छा
0: ये लगरी से यहाँ हाँ। के सब मसूल लगरी से।
1: हाँ हाँ अच्छा
0: मुरली चंद्राकर घर।
1: हाँ हाँ
0: पूरा मशीन धर के गेरी से।
1: हाँ
0: ओ नाम बता तू
1: बरसाती
0: भी। बरसाती
1: हाँ।
0: और एक जनऊ
1: बिसाहू।
0: बिसाहू
1: हाँ।
0: और एक जनौरी से।
1: हाँ।
0: तीनों झनगेरी से
1: हाँ।
0: मोर गाना ला
1: हाँ।
0: रिकॉर्डिंग करे बर।
1: अच्छा
0: ता वो मनगेरी से
1: हाँ।
0: ता ये गाना मन ला सुने तो वो रेडियो में आए।
1: हाँ हाँ।
0: तो वो रेडियो ला सुन के
1: हाँ हाँ।
0: खेरागढ़ के
1: हाँ।
0: पड़ोसर आके मोला कहते बेटी ये गाना कैसे गाए
1: हाँ हाँ।
0: ये गाना तोला कौन ऐसे हाँ। गुरु जी तोला बता है और सिखा है। मोर कोई गुरु नहीं है। मुझे अपन
1: हाँ।
0: गाथो छत्तीसगढ़िया गाना।
1: हाँ।
0: अच्छा मनु नायक
1: हाँ।
0: घर लिपत रहे हो अब दीपक चंद्राकर के आप बैले आए
1: हाँ।
0: पड़ोसर आए बड़े जान साहब आए जंती
1: हाँ।
0: का
1: हाँ।
0: अरे तोर गाना गवाए बा फिल्म में
1: हाँ।
0: मोर फिल्म में गाना गाओ
1: हाँ।
0: इदी कतका बहागे मोर
1: हाँ।
0: अब वो मनाई बैठा रहे वो मल्ला
1: हाँ।
0: मनु नाइक ला
1: हाँ।
0: भाई मनु राखी बांधे
1: हाँ।
0: अब बोला
1: हाँ।
0: का कहते मलाई चक्रवर्ती आई
1: हाँ।
0: ले तो गा
1: हाँ।
0: तो गाय गाना
1: हाँ।
0: वो मन खुश होगी
1: हाँ।
0: तब खरवोहरा में होतरी से
1: हाँ।
0: शूटिंग
1: हाँ।
0: कर मन के
1: हाँ। हाँ। कहीं देवे संदेश फिल्म के
0: फिल्म
1: हाँ।
0: के
1: हाँ।
0: मोहम्मद रफी आए रही से
1: हाँ हाँ।
0: लता मंगेशकर आए रही से
1: हाँ
0: हाँ। वाह देखियो आ लता मंगेशकर ला देखियो
1: हाँ।
0: चित
1: हाँ।
0: मैं क्या माँ सरस्वती देखा थो
1: हाँ।
0: आज मैं यहाँ रेडियो में माता ला सुने
1: हाँ।
0: कर आवाज ला उन गाय वो मेरी सोनेरी सोनेरी सोनेरी दे दूंगी जान जुदा मैं तू हो न रे मैंने तुझे पैड़ा दे रुनिया होया कसु रुखपा मैं तू हो न रे मैं तोर बहुत पुजारी हूँ माता
1: हाँ।
0: और तोरे गाना गा के मैं बहुत
1: हाँ।
0: आज ऊंचा हूँ
1: हाँ।
0: फिर छत्तीसगढ़ी गाना सीखे हूँ
1: हाँ।
0: यह सब चलत रहा है
1: हाँ।
0: मोहम्मद रफील देखियो कल रसीद तो देखो ऐसे ऐसे कलाकार के संगत हो इस मूर्ते तो वो गात रहा है ओकर यह गाना रहा है मोहम्मद झमकत नदिया बहनी लागे पर्वत तोरु मितान रे रे भाई पर्वत तोरु मितान हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो ये सब
1: हाँ।
0: अरे बाप रे ऐसे ऐसे कलाकार
1: हाँ।
0: और माता ला छत्तीसगढ़ हिंदी बोले ला
1: हाँ हाँ।
0: कौन ला
1: लता जी ला
0: नहीं है
1: हाँ।
0: छत्तीसगढ़ी गाना नहीं आयो
1: हाँ।
0: गाय वो हाँ। वो हाँ। गवाय बर लाए रही से मनु नायक का पैसा में
1: हाँ।
0: वो हाँ गाने से के छत्तीसगढ़ी
1: हाँ।
0: अब वो हाँ कहा पंजाबी गवैया
1: हाँ।
0: मद्रासी गवैया
1: हाँ।
0: आए
1: हाँ।
0: मराठी गवैया
1: हाँ।
0: माता हा गा
1: हाँ।
0: छत्तीसगढ़ ला वो बासी साग नून चटनी वो हमारे शरीर हम मन का गोठा था तैसे कहा जाता तो नून का वो मिर्चाए का वो है गोंदली रामकलिया ओला जान ही वो लता मंगेशकर
1: है तब फिर कैसे हुई
0: ओला गाने दिली माला बिहनी आली उगबी सूरज देव

0: माता मोला कथे छत्तीसगढ़िया कैसे गाती है बेटी तू बता। वोला टोक दी हूँ माता ला नहीं हमारे छत्तीसगढ़िया में ऐसे नहीं गा माँ। तो कैसे गाती है? अब डर के मारे ऐसे भाई इतना बड़े कलाकार सामने में गाना कौन लाई से लगी बेटा। तब मैं माताल बोलूं देख माँ छत्तीसगढ़ ये छत्तीसगढ़ की गाना बड़ा सुरीली है। छत्तीसगढ़ में ये छत्तीसगढ़ ऐसे गढ़े माता जेमे भारत ही में समाये है। ये सारी इंडिया पूरा ही छत्तीसगढ़ में समाये एक अर पीरा ला माता हम गाथन छत्तीसगढ़ महतारी मोर हम गाथन आर प पैरी के ढार महानंदी है अपार। ओकर अंग अंग ओकर उंगरी के नख नखल हमन जोड़ के कभी मन बता बना है ऐसे तेला हमारी आवाज के माध्यम से ओला हम पिरोथन मां छत्तीसगढ़ ला हम जागृत करथन मां छत्तीसगढ़ ला। बोले कितनी अच्छी सोच है तेरा रिहर्सल 15 दिन ले रही हूँ माता के साथ में लता मंगेशकर के माता के साथ वही मोला पढ़ाई से माता बोला लेगद्री से बब्बे तेरी आवाज बहुत सुंदर है कि ये दादा मन ना लेके मैं नहीं जाऊँ मोर छत्तीसगढ़ ऐसे ही के। तब वो गाइस
1: कौन से गाना
0: बिहनिया ली उगवी सूरज देवता तेरी। मैं बोला नहीं माँ छत्तीसगढ़ तेरी नहीं है हिंदी हो गए माँ हिंदी में नहीं क्या गाऊं तो बच्चे बोल बेटी ऐसे है गाना बिहनिया ली उगवी सूरज देवता

0: हाँ मुलन लेंगे बम्बे।
1: अच्छा
0: घर के लेके?
1: हाँ हाँ
0: यही लेके। तोर का कथे?
1: हाँ, मनु नायक जी।
0: हाँ मनु नायक।
1: हाँ
0: हाँ हाँ चल चल कह के।
1: हाँ हाँ
0: तोर लोग लेके उधर के चल कह के। लेके हूँ माता।
1: हाँ
0: तोला तनखा मिली।
1: हाँ
0: तोर बहुत बड़े बिल्डिंग रही।
1: हाँ
0: ते वहाँ चल।
1: हाँ
0: मैं काकरो भाड़ को नहीं नहीं आए बेटा।
1: हाँ
0: मोर छत्तीसगढ़ महतारी
1: के नहीं।
0: और छत्तीसगढ़ की पीरा के का जान में बम्बई वाले मन।
1: हाँ हाँ
0: अपन ढंग से तुम गाओ बजाओ माता राम।
1: हाँ
0: अपन ढंग से मैं अपन छत्तीसगढ़ में एक दिन ती जागृत हो बे माता।
1: हाँ
0: छत्तीसगढ़ में मोहला जागृत होना है।
1: हाँ
0: पैसा भी चाहिए।
1: हाँ
0: मैं पैसा तो दुनिया कमाईस।
1: हाँ
0: और गाइस मगर हाँ पैसा नहीं कमाए बेटा।
1: हाँ
0: मैं सिर्फ तुम्हार मन के आशीर्वाद।
1: हाँ
0: तुम्हार मन की प्यार ला छत्तीसगढ़ के मोर आचराम समेट के रखे।
1: हाँ
0: तब तो बुला तभी तो मोर याद कर थो का।
1: हाँ
0: नहीं तो मोला कौन जाने।
1: हाँ

0: दीदी आप मन हा बहुत सुघर जानकारी देवत हो और हमर जो नव संगी है हमर छत्तीसगढ़ के जो श्रोता संगी है हमर छत्तीसगढ़ के नोनी बाबू है ते मन ला आप आशीर्वचन के रूप में अपन का संदेश देना चाहू।
1: ओहो धन्य धन्य हाँ। अरे कोनो गात रथे पहली जमाना के छत्तीसगढ़ हिला हाँ। हमार कितना बड़ा ये दिस है हम देहें छत्तीसगढ़ ला हम हाँ। गा के पीरो हाँ। के बासिल खा के हाँ। चटनी रोटी खा के हाँ। हमार छत्तीसगढ़ ला जगा है
0: हाँ।
1: आज के लड़का मन
0: हाँ।
1: हमार जैसे हम तपस्या करें अपन छत्तीसगढ़ ला
0: हाँ।
1: जगाएं
0: हाँ।
1: और छत्तीसगढ़ में हम फोड़ता नहीं गाएं
0: हाँ।
1: गाएं

0: रामायण गीता भागवत का मैया ला भगवान तक ला घलो कलाकार मन अपन बस में करथन गा के जने जने के दुख पीरा चिन्हैया ती भूया के भार हरैया देवता मन गुन गावे गुन गावे मातावा माता बरुआ ला झूले ना झूल तो क्या है उसमें डूबो उसमें डूबो माता को कैसे गाया जाता है जस गाना
1: जी
0: अभी अभी लेका मन गाते हैं अभी के जो गाना मन है हाय हाय हाय मैं का ये मन हाय रे मन हाय रे मन तोर मन कैसे लागे प्रभु तोर मन यहाँ तो संत बस है भगवान मन तो यहाँ है कहाँ को जो तत्या कहाँ मंदिर में जावे वो तो

0: अपना देह तेला घंटी बजा था ना, तोर में तो सबे भरे
1: हृदय में
0: भगवान मन है तोर मन कैसे लागे राजा महल की भीतरी में तोर मन कैसे लागे लैका मन ल खोजे हो। अरे मैं तो चले जाऊ मगर तू मन हो तो बढ़िया से तो गाओ। आए ऐसे ऐसे धुलंदर धुलंदर कलाकार मन चलेगी बेटा। आए छोड़ छोड़ के गाना मन ला मगर वो गाना काबर बिगाड़ थो। खुनूर खुनूर सुर में बोली चुटके चटक बोली रे बेरी परिला। खुनूर खुनूर सुर में बोली चुटके चटक बोली रे बेरी परिला।

0: जी हाँ हाँ।
1: ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले तीन जोड़ी लहर गंगा ले ले तीन ना पुण्य के मेला में जाते दुख लाए करिया तीन गंगा स्नान ले ले तीन केला चढ़ा दे तीन भीला मना ले तीन भोला भगवान काया माया की नहीं है ठिकाना काया माया नहीं ये ठिकाना मिला ठेला देखा तीन जोड़ी मिला ठेला देखा तीना ये जिंदगी के नहीं ये ठिकाना लहर गंगा ले ले तीन जोड़ी लहर गंगा ले ले तीन।
0: दीदी बड़ सुघर आपसन गोड़ बात हुआ थे बड़ सुघर जानकारी मिला थे और हमर जो नवा पीढ़ी है नवा कलाकार है आपसन हुए बातचीत ल सुन के जरूर प्रेरणा ली और आप
2: भगवान मोर हाँ मोर आशीर्वाद है
0: हाँ
2: ये अभी गात है लड़का मन
0: हाँ
2: जैसे भी गाय
0: हाँ
2: वो जनती आदत नहीं बन जाए
0: हाँ
2: का कथे लता मंगेशकर के गाना जे गाते थे लता मंगेशकर तो नहीं बन जाए
0: हाँ हाँ
2: मोहम्मद रफी के गाना गाते तर मोहम्मद रफी तो नहीं बन जाए
0: हाँ
2: मगर नहीं जैसे भी गाते उस बच्चे लोग
0: हाँ
2: भगवान
0: हाँ
2: उसको सरस्वती मैया ने
0: हाँ
2: छत्तीसगढ़ माता ने
0: हाँ
2: कर्मादाई
0: हाँ
2: बोला रक्षा करे
0: जी जी
2: उस बच्चा मल्ला बढ़ाए
0: जी
2: का है हाँ, मोर नो है
0: हाँ,
2: वो गाना है बेटा
0: हाँ,
2: किसी कवि की कलम है
0: हाँ,
2: उसकी आत्मा
0: हाँ,
2: मरना नहीं चाहिए
0: हाँ,
2: उसकी आत्मा ला मैं नहीं गात हूँ
0: हाँ,
2: तो दूसरा गात है मैं कोई और दूसरा गात है कोई और दूसरा गात है
0: हाँ,
2: तो वो गाना हम मरे नहीं है उन्होंने
0: हाँ,
2: मरे है
0: हाँ,
2: जो लिखे है कलम से
0: हाँ,
2: वो मरे नहीं है
0: हाँ,
2: उसकी आत्मा जियर है
0: हाँ,
2: उसकी आत्मा
0: अक्षर अमर है
2: अमर
0: गीत अमर है
2: गीत अमर है
0: हाँ,
2: हाँ गाना
0: हाँ,
2: अमर करत है लड़का मन भगवान।

धन धन है मोर भाग, तुमन जीवित रखे हो मोला। सुरिता समागे सुरिता समागे जुआनी ख्याल रगा, सुरिता सु समा हमना। हाँ। ओ गाना।

0: व्रत हूँ, यह सब गाना है।
1: जयंती आबाजी, आप मन हमर श्रोता मन ला अपन जीवन के अनुभव ला गीत के माध्यम ले कैसे आप मन समाज ला नवा रद्दा दिखाए हो और नवा पीढ़ी ला गीत संगीत लोक गायकी के शिक्षा दे के वो मल्ला घलो ये लोक गायन की परंपरा ला आगे बढ़ाए के प्रेरणा दे हो, हमला समय दे हो, स्टूडियो में आए हो, एक हर बार आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भैया में अभी आप सुन रहे थे लोक गायिका श्रीमती जयंती यादव ले भेंट वार्ता, भेंट करता थे नेमीचंद साहू। आप सुन रहे थे इस भेंट वार्ता का तीसरा भाग। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

0: आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9 बजे हैं। प्रस्तुत है पारिवारिक धारावाहिक अजीत सनी। लेखिका हैं श्रीमती प्रमदा ठाकुर। प्रस्तुत करता है समीर शुक्ल।
1: अभी आप सुन रहे थे समन्वय छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम मोर भुइया। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर अविविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे नाना पाटेकर, शान और साथियों की आवाजों में वनवास फिल्म का गाना। दोस्तों आज है 12 मई, आज ही मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सेस डे, अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस। दोस्तों पूरी चिकित्सा व्यवस्था में नर्सेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है उनकी, ये तो हम सभी जानते हैं। आज जो हम ये देख रहे हैं नर्सिंग सेवा को एक सुव्यवस्थित रूप में, इसका श्रेय जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 12 मई सन 1820 ईस्वी को फ्लोरेंस नगर में हुआ था। आपने विश्व युद्ध की विभीषिका के दौरान भी दिन रात घायलों की सेवा की और आपको लोग प्रेम और आदर के साथ द लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जानते हैं। आपने नर्सिंग सेवा के प्रशिक्षण की नींव भी रखी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल और सभी नर्सेस के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की इतनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने के

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मीका सिंह और साथियों की आवाजों में शुभ मंगल ज्यादा सावधान फिल्म का गाना। वक्त हो गया है इस कार्यक्रम में, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप चित्रलोक, एक ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए रांझना फिल्म का गाना, सुखविंदर सिंह के एम एम सी सूफी एंसेंबल की आवाजें, इशाद कामिल के बोल और ए आर रहमान की तर्ज। पिया मिलेंगे।

आज ही मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। दोस्तों, प्लांट यानी पौधे ही हमारे पर्यावरण और खाद्य श्रृंखला फूड चेन की आधारशिला हैं। इनके महत्व और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी। तो चलिए, चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवा रहे हैं तेरा क्या होगा लवली, इस फिल्म का ये गाना।

0: नख्याणे।
1: और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश एक डांस नंबर आ रहा आपके रेडियो सेट्स पर अनमोल मलिक की आवाज। कुमार ने लिखा है, इसे जयदेव कुमार ने संगीतबद्ध किया है। आवाज है अनमोल मलिक की, फिल्म का नाम बजाते रहो।

ये है विविध भारती। आज की फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: चंद्रमा।
1: भारतीय सिनेमा आज जिस शिखर पर है उसके पीछे अनगिनत कलाकारों तकनीशियनों का योगदान है। एक सदी की यात्रा के बाद आज भारतीय सिनेमा तकनीकी रूप से बहुत विकसित है, लेकिन जब सिनेमा अपनी राह बना रहा था, परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए कैमरे की अपनी भाषा और व्याकरण गढ़ रहा था, उस दौर में

लोक रंजन के प्रभावशाली माध्यम सिनेमा के जरिए अनेक कलाकारों ने दर्शकों के स्मृति पटल पर अपनी एक अमिट छवि अंकित करती थी। गुजरे दौर के एक विशिष्ट कालखंड में सिनेमा के पर्दे पर राज किया था अभिनेता महिपाल ने।

भारत में हिंदुस्तानी सिनेमा के शुरुआती दौर में पौराणिक आख्यानों, जादूगरी की तिलस्मी दुनिया के आसपास बुनी गई कहानियों पर आधारित फिल्मों की अधिकता थी। आम दर्शकों की अभिरुचि, बाजार की मांग, बजट और तकनीक की सीमित उपलब्धता के दबाव के चलते फिल्म निर्माताओं ने कॉस्ट्यूम ड्रामा युक्त पीरियड फिल्मों को ज्यादा तवज्जो दी। महिपाल पौराणिक आख्यानों पर आधारित फिल्मों के नामचीन अभिनेता थे।

0: सन 1919 में जोधपुर राजस्थान में जन्मे महिपाल सिंह सन 1940 में मुंबई आ गए और पहली बार नजर आए 1942 में आई फिल्म नजराना में। अभिनेता महिपाल ने होमी वाडिया, जेबीएच वाडिया, सोहराब मोदी और वी शांताराम जैसे उस दौर के दिग्गज फिल्मकारों के साथ काम किया
1: कुछ
0: था।
1: भी नहीं।

0: रामो।
1: फिल्म नवरंग में अभिनेता महिपाल की भूमिका अभिनय कला के विविध रंगों में रंगी नजर आती है।
2: अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलवेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हई ये ने पकड़ी बाह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा भोली परी हरी भोली।

0: नवरंग महिपाल की एक उल्लेखनीय फिल्म है। अभिनेत्री निरूपा रॉय, माला सिन्हा और मीना कुमारी के साथ भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। बाबू भाई मिस्त्री की फिल्म पारस मणि भी अभिनेता महिपाल की एक प्रसिद्ध फिल्म है।
1: जो

0: अभिनेता महिपाल के अभिनय से सजी यूं तो अनेक फिल्में हैं, लेकिन उनमें भी प्रसिद्ध फिल्में हैं अल हिलाल, माया बाजार, जन्म जन्म के फेरे, आन बान, तुलसीदास, अली बाबा और 40 चोर, अल्लादीन और जादुई चिराग, जबक, संपूर्ण रामायण, सुनहरी नागिन, बीन का जादू, जंतर मंतर, वीर भीमसेन, सती सावित्री, वीर घटोत्कच, बालक ध्रुव, रानी और लालपरी, जय संतोषी मां, गोपाल कृष्ण और संत रविदास की अमर कहानी। अभिनेता महिपाल की मशहूर फिल्म का ये गीत आज भी बेहद लोकप्रिय है।
1: जरा

0: दर्शकों में अभिनेता महिपाल के लिए जबरदस्त दीवानगी थी। पर्दे पर कई पौराणिक चरित्रों की भूमिका में दर्शकों ने उन्हें सराहा। कई अवसरों पर लोग श्रद्धा में भरकर उनके चरण तक छू लिया करते थे। महिपाल हमारे भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।
1: तू छुपी है कहां, मैं तड़पता यहां तेरे

0: दूर। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। जी सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। प्रदेश में राशन कार्डधारी परिवारों को अप्रैल से जून महीने तक आवंटित खाद्यान्न के एकमुश्त वितरण की समय सीमा बढ़ाकर 15 मई कर दी गई है। और जांजगीर चांपा जिले के धुरकोट गांव में तरबूज खाने के बाद एक बच्चे की मौत और 3 अन्य बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया है। और अब समाचार विस्तार से।

0: बढ़ावा दे या जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। प्रधानमंत्री ने स्कूलों से भी आग्रह किया कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था पर काम करें। साथ ही उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि जब तक हालात सामान्य न हो सोने की खरीदी न करें। केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की कोई कमी नहीं है और देश के पास 60 दिन के कच्चे तेल, 60 दिन के प्राकृतिक गैस और 45 दिन के एलपीजी का भंडार है। यह जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में पश्चिम एशिया पर मंत्रियों के अनौपचारिक समूह की पांचवी बैठक के दौरान दी गई। बैठक में संघर्ष में नवीनतम घटनाक्रमों का जायजा लिया गया और जनता पर इसके न्यूनतम प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए देश की तैयारियों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के उत्कृष्ट रखरखाव में देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश के सीहोर में आयोजित योजना के रजत जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य को सम्मानित किया। राज्य की ओर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह और प्रमुख अभियंता के कटारे ने पुरस्कार ग्रहण किया। प्रदेश में अब तक 32,000 किलोमीटर लंबी 8,000 से अधिक सड़कों का नवीनीकरण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दूसरे चरण और तीसरे चरण के सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राशन कार्डधारी परिवारों को अप्रैल से जून महीने तक आवंटित खाद्यान्न के एकमुश्त वितरण की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब हितग्राही को 15 मई तक एकमुश्त राशन का वितरण किया जाएगा। खाद्य विभाग ने सभी उचित मूल्य के दुकानदारों और संबंधित अधिकारियों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। खाद्य विभाग ने राशन कार्डधारी परिवारों से अपील की है कि वे समय रहते अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर लें। नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं वहां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। चुनाव प्रचार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। लंबे चुंगे वाले लाउडस्पीकरों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। चुनावी सभाओं और प्रचार वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। चापा जिले के धुरकोट गांव में तरबूज खाने के बाद एक बच्चे की मौत और तीन अन्य बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर जन्मेजय मोहबे ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग की टीम और एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए। बीमार बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है और उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। प्रशासन ने तरबूज के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर में 10वीं और 12वीं की प्रवीण सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उनकी सफलता के अनुभव और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। प्रदेश में राशन कार्डधारी परिवारों को अप्रैल से जून महीने तक आवंटित खाद्यान्न के एकमुश्त वितरण की समय सीमा बढ़ाकर 15 मई कर दी गई है। और जांजगीर चांपा जिले के धुरकोट गांव में तरबूज खाने के बाद एक बच्चे की मौत और तीन अन्य बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। उजाले की ओर कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है छत्तीसगढ़ संवाद।

0: शिक्षा ज्ञान के लिए होनी चाहिए। इस उक्ति के प्रकाश में लोक कल्याणकारी सरकारें नित नई योजनाओं को लागू करती हैं। इसी के तहत नई शिक्षा नीति पूरे देश में लागू की गई है। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि एक पुराने ढर्रे पर चलने वाली शिक्षा नीति केवल कुछ क्षेत्रों में ही रोजगार के अवसर प्रदान कर पाती है, जबकि परिवर्तित नीति बहुत सारे शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को विकसित करती है। भारत एक प्रगतिशील देश है, यहाँ की एक बड़ी आबादी आज भी रोजी रोटी के संघर्ष से जूझ रही है। ऐसे में जमीनी स्तर पर शिक्षा के प्रचार प्रसार की अत्यंत आवश्यकता है। बात यदि हम अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति एक समान नहीं है और न ही समान संसाधन है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला किया है कि हर वो विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा पाना चाहता है उसे मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना का लाभ दिया जाएगा। आज ये योजना प्रदेश भर में लागू है। इस संबंध में और अधिक जानकारी दे रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के सहायक महाप्रबंधक व्यवसाय एवं सांख्य श्री अमर खनुजा।
1: मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना छत्तीसगढ़ शासन की उच्च शिक्षा हेतु ब्याज का अनुदान देने की योजना है। यह योजना तकनीकी एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु लागू होती है। योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना है। इस योजना में अधिकतम 4 लाख तक के ही शिक्षा ऋण पात्र होते हैं। हितग्राही की पात्रता के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं हो सकती है। योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान मॉरेटोरियम अवधि के पश्चात जो ब्याज लगता है उस पर देय होता है। ब्याज अनुदान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 100% अर्थात 100% छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा वहन किया जाता है। अन्य जिलों में 1% जो है वो विद्यार्थियों को देना पड़ता है और 99% राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ऋण किस्तों का नियमित भुगतान करना अत्यंत आवश्यक है। यह योजना ड्रॉप आउट निष्कासित विद्यार्थियों को योजना का के लिए नहीं है, उनको इसका लाभ नहीं मिलता है। जितने भी उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम है उसके लिए लागू है और जितने भी संस्थान है लाइक IITs, IIMs, NITs और एम्स, MCI, DCI, IMC इत्यादि में ये स्कीम लागू होती है। अप्लाई तो एक्चुअली बैंक के थ्रू जाता है। जब बैंक में आप शिक्षा ऋण लेते हैं तो बैंक इसका क्लेम करता है गवर्नमेंट को पात्रता अनुसार जो खाते होते हैं। जब आदमी अप्लाई करता है लोन की तब बताना पड़ता है कि हाँ मेरी जो लाइफ मेरी जो परिवार की वार्षिक आय है वो 2 लाख से कम है और टोटल जो मुझे 4 लाख के लोन चाहिए, कौन सी जगह पढ़ने जा रहा हूँ, क्या पढ़ने जा रहा हूँ, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि ये इस योजना का पात्र है कि नहीं। पात्र खातों का जो अनुदान क्लेम है वो बैंक के द्वारा सब्सिडी इंटरेस्ट सब्सिडी क्लेम की जाती है। दस्तावेज में आप जहां पर हायर एजुकेशन लेने जा रहे हैं उसके सारे दस्तावेज जिसमें आपको फीस वगैरह सब रहेगा, एजुकेशन फीस, हॉस्टल फीस वगैरह सारा कुछ, और इसके अलावा आपका KYC लगेगा, जो भी एजुकेशन लोन के डॉक्यूमेंट है सब ऐसी फीस लगेंगे।
2: और उसको लौटाने की अवधि क्या होती है?
1: जो एजुकेशन लोन की नॉर्मल पॉलिसीज बैंक की होती है उसके अनुसार, मतलब एग्जिस्टिंग एजुकेशन लोन में ही अपनी ओर से एड ऑन दे रहा है छत्तीसगढ़ शासन ताकि इसको प्रमोट कर सके एजुकेशन लोन को भी और उनके लिए एजुकेशन के साधन भी हो सके जिनके पास आर्थिक रूप से जो कमजोर विद्यार्थी है। देखिए शिक्षा ऋण तो एक्चुअली एक बार मिलता है क्योंकि आप पूरे कोर्स का पैसा ले लिए रहते हैं ना, तो दोबारा मतलब इसमें कोई दोष सिस्टम तो रहेगा नहीं, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए मेडिकल करना है तो मेडिकल आपका 5 साल का अगर कोर्स है तो 5 साल में जो फीस लगनी है जो भी लगना हो तो पहले प्रोजेक्ट होकर आपको लोन मिल जाता है, तो दोबारा लोन जैसा कोई इसमें होता नहीं है सिस्टम।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना के पात्र वे सभी विद्यार्थी हैं जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं और जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम हो। इस योजना के तहत डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ एक लंबे समय से नक्सलवाद से पीड़ित रहा है। बस्तर और सरगुजा संभाग के वे सभी जिले जहां कभी हिंसा का आतंक था, वहां मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना ने शिक्षा का परचम फहरा दिया है।

अब यहाँ उच्च शिक्षा से वंचित छात्रों को समुचित संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा के बंद द्वार सरकार ने सभी के लिए खोल दिए हैं।

0: छत्तीसगढ़ के मेधावी छात्र छात्राओं को अपने उच्च शिक्षा पाने के सपनों को पूरा करने का आधार प्रदेश सरकार ने दिया है। तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा महंगी होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे अक्सर उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ये योजना ऐसे छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके करियर को सुदृढ़ सोपान प्रदान करने में भरपूर सहयोग देती है।
1: ब्याज नहीं लग रहा है लोन लेने में, तो अच्छी बात है। और पेरेंट्स भी ज्यादा प्रेशराइज्ड नहीं रहेंगे, बच्चे भी ज्यादा प्रेशराइज्ड नहीं रहेंगे और वो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उनके लिए कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि हमको ब्याज देना है तो हमको उस चीज के लिए भी पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे, सेव करने पड़ेंगे, तो ये चीज अच्छा है, वो बिना टेंशन के पढ़ सकते हैं।
2: मैं मोदी और विष्णुदेव साय को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा योजना कल निकाला। जो सभी छात्राएं हैं उनको बहुत तकलीफ होती थी ब्याज देने में, और वो सभी उन सभी के लिए माफ हो, इसके लिए आपका

0: छत्तीसगढ़ में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए आज कई शाखाएं हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी शाखाएं भी हैं जिनमें पढ़ाई के लिए अन्यत्र जाने की जरूरत होती है। AICTI, UGC, MCI, DCI और INC जैसे मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना छात्र छात्राओं को अध्ययन के लिए ऋण की व्यवस्था करता है। ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा 4 लाख रुपए है। ब्याज अनुदान का लाभ लेने के लिए नियमित रूप से ऋण किश्तों का भुगतान अनिवार्य है। ये मॉरिटोरियम अवधि के उपरांत नियमित भुगतान की स्थिति में ऋण राशि के ब्याज भार में छूट प्रदान करता है।
1: आप हैं भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक श्री राकेश सिन्हा।
2: यह जो राज्य सरकार की उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना है, यह तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित छात्रों के लिए योजना सत्र 2012-13 से लागू है। इस योजना में ऋण किस्तों के नियमित भुगतान की स्थिति में ऋण पर ब्याज अनुदान राज्य के चरम वामपंथी प्रभावित जिलों और जो वहां के जो विद्यार्थी हैं उनके ब्याज का संपूर्ण भार राज्य प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है और राज्य के शेष जिलों में जो निवासी शिक्षार्थी हैं उन्हें केवल 1% की दर से ब्याज का भार वहन करना पड़ता है और शेष राशि की ब्याज जो है वह राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यह योजना जो है केवल छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए लागू है। इसमें जो पेरेंट्स हैं उनकी इनकम जो है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। स्कीम जो है जो विद्यार्थी फेल हुए हैं या ड्रॉप आउट हुए हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है और जैसा कि मैंने पहले बताया जो नक्सलाइट बेल्ट है वहां पे मोरेटोरियम पीरियड का पूरा ब्याज राज्य सरकार वहन करती है और बाकी जो जिले हैं उसमें विद्यार्थियों को केवल 1% ब्याज दर से ब्याज देना पड़ता है। केनरा बैंक इसका नोडल बैंक है लेकिन राज्य के विद्यार्थी जो है वो किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक या 21 प्राइवेट बैंक से लोन ले सकते हैं और इस स्कीम में मैक्सिमम लोन जो है वह 4 लाख है। तो सरकार की ओर से यह एक पहल है जिसमें जो शिक्षार्थी हैं उनको एकदम कम किस्त में कम ऋण में ऋण की सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे उच्च शिक्षा का लाभ उठा सके और अपने को खुद को सक्षम बना सके। डॉक्यूमेंट्स जो स्कूल के उनके जो राज्य के निवासी हैं उसका प्रमाण और स्कूल और कॉलेज के जो सर्टिफिकेट्स हैं और जहां उनको एडमिशन मिला है उस एडमिशन का जो कॉपी है वो केवल चाहिए और कुछ नहीं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस योजना का लाभ उन्हीं विद्यार्थी को मिल सकता है जिनकी पारिवारिक इनकम जो है 2 लाख से कम है, तो वो एक इनकम प्रमाण पत्र जो होता है वो चाहिए होता है, आय प्रमाण पत्र। तो पंचायत से या राज्य सरकार के किसी ऑथोरिटी से जो आय प्रमाण पत्र होता है वो लगता है।

राज्य विकास के पंख फैलाए हर क्षेत्र में तरक्की की परवाज भर रहा है। सरकार ने न सिर्फ पूरे प्रदेश को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है, बल्कि उसकी मंशा ये भी है कि किसी भी मेधावी छात्र को उच्च शिक्षा के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। वंचित वर्ग पर सरकार के लगातार ध्यान देने के कारण ही आज जनजाति बाहुल्य इलाकों से उच्च शिक्षा प्राप्त युवक युवतियां बड़ी संख्या में दीक्षित होकर आ रहे हैं। ये तस्वीर बयां करती है छत्तीसगढ़ के चौमुखी विकास की बहती अविरल धारा को, जहां हर कोई कदम से कदम मिलाकर बढ़ रहा है।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर की अगली कड़ी, जिसका अनुप्रसारण रायपुर केंद्र से किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला,
0: हवा महल, 22 की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
3: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
0: मन का सुकून दिल की आरती
1: सुरीली संदली।
5: Yeah.

0: मन पसंद के छत्तीसगढ़ गीत संगीत के फंगी धवल किशोर गुप्ता आप सबो संगी संगी के फोन ले
1: खेत में फोन करत हूँ मैं
0: अच्छा तो

0: பண்ணுறோம் சார்.
1: அச்சா धन हो
0: जी
1: तो
0: सर अभी।

0: কোটা, বিলাসপুর, ছত্তিশগড় বলে।
1: আচ্ছা,
0: আছে শিলা।

बेटा शरण या तुमा के पानी पिया देते। राम राम सर।

0: संगीत है जो हमारा
1: जय
0: जी।
1: और कहाँ हाल चाल संगी, आप मन के का नाम है
0: जी? आदरणीय मेसा ग्राम जुनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ ले आपके नियमित श्रोता पुलिस रमेश साहू बोला था आदरणीय।
1: अच्छा रमेश साहू जी, चलो बहुत बहुत स्वागत है साहू जी मन के हमारे कार्यक्रम में। और कहाँ हाल चाल है, कैसे पड़त है आप मन गर्मी?
0: गर्मी तो यहाँ बहुत जोर के पड़त है गुरु जी, लेकिन अच्छा। और गर्मी का है ठंडा करसी के ठंडा पानी पीठन आदरणी।
1: हाँ।
0: और ढक के निकलथन काबर के भूटा भी बतरे नहीं है।
1: हाँ।
0: भूटा जो गोय है तेन थोड़ा 15 दिन हो जाए तैसे लगत है।
1: चलो बहुत
0: आप मन कौन बोला था आदरणीय? आप चौधरी साहब बोला था का?
1: नहीं, मैं धवल किशोर गुप्ता बोला था संगे। तो आज
0: धाम परसोनी के श्रीमान जितेंद्र कुमार मानिकपुरी साहब जी है, साकरा सोनी के नारायण लाल साहू जी है, विरायगढ़ के रोशन लाल देवानंद जी है, कर्नाटक लोहारी जी से अशोक कुमार साहू जी है, उमा बांधा सैनिक बाजार भिलाई से सुशील जैन साहब है, और मालेगांव मलाजखंड से बसंती बघेल जी है, और हमारे कन्या दमो बालाघाट से धुरवा राम साहू जी है, और डोंगरिया मलाजखंड से मुन्ना लाल पटले जी है आदरणीय।
1: अच्छा बहुत
0: हाँ। ये आपके खास प्रशंसक है, जब कभी भी हमारे मन से टेलीफोन में जब बात होते नहीं तो धवल किशोर साहब जी जो है एक तो आवाज नहीं है, आते तो कार्यक्रम में अतिक जोर से पेशकश करते, अतिक बढ़िया पेशकश करते कि वो कर आवाज के का कहना इसे की थे गुरु जी।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: तो धवल किशोर जी तो मोर पसंद के गीत ही रही थे कि एक राम नारायण ध्रुव के गाने रही थे।
1: अच्छा राम नारायण ध्रुव के, चलो राम नारायण ध्रुव तो आप मान लो
0: जी सर।
1: चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप मन फोन करा हमें कार्यक्रम पर। तो चलो

ग्राम ठेंगा टोला सलवार पंचायत जिला डिंडौरी से बोला था जी। खेत के काटा फूटी है सही संगी।

0: आगे संगी चंद्रा करके सुना दो जी। संगी कुमार।
1: अच्छा।

संबिंब काला नावा संबिंब के जैसे

जी आप मुझसे गोट बात करके सुधार छत्तीसगढ़ी ग्रीष्मकालीन गहरी जोताई काम चला थे संगी सुनाते हैं भैया उठो किसान जागा रहे बहुत बहुत धन्यवाद संगीत।

त्याला राम

मैम हेलो संगी, हम से बोल रहे हैं फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बजे हैं, विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण अब दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

श्रोताओं नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग में।

हरिओम शरण की गई इस भक्ति रचना के साथ हमने शुरुआत की आज के रंग तरंग कार्यक्रम की। चलिए अब बढ़ते हैं अगली रचना की ओर।

0: मीराबाई का ये भजन आप सुन रहे थे चित्रा सिंह की आवाज में, धुन बनाई थी जगजीत सिंह ने। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे

0: एक शानदार शख्सियत।
1: मैंने रंगमंच पे कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
1: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

सुधा मल्होत्रा की आवाज में आप सुन रहे थे ये गजल, तर्ज बनाई थी जगजीत सिंह ने। चलिए अब जगजीत सिंह की आवाज की ओर बढ़ते हैं, कलाम है जावेद अख्तर का।

तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। दिल भी तू जहां भी तू एल्बम से जगजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे जावेद अख्तर का कलाम।

0: मधुरानी की तर्ज पर जमीर काजमी का ये कलाम आप सुन रहे थे छाया गांगुली की आवाज में इश्क एल्बम से।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
2: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
1: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
2: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सब के नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर

नुमाइश एल्बम से पंकज उधास की आवाज़ में आपने सुनी ये गज़ल। चलिए बढ़ा जाए अब शांतनु मोइत्रा के संगीत की ओर। प्रसून जोशी के बोल हैं, शुभा मुद्गल की आवाज़, क्या कहता है मन के मंजीरे फिल्म का एल्बम से ये गाना, आइए सुनते हैं।

जान मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिस

फैज अनवर ने इस गाने को इस गाने को लिखा था सोनू निगम की आवाज जान एल्बम से ये गाना आप सुन रहे थे। और अब हम बढ़ते हैं जावेद अली और आकांक्षा शर्मा की आवाजों की ओर।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। कपड़े बेचने की आड़ में गांजे की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश, 12 तस्कर गिरफ्तार, करीब 2 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया गया। और आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर प्रदेश भर में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। कल वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पूलिंग को बढ़ावा दें। यह जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। प्रधानमंत्री ने स्कूलों से भी आग्रह किया कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था पर काम करें। साथ ही उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि जब तक हालात सामान्य न हो सोने की खरीद को टालें। छत्तीसगढ़ ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के उत्कृष्ट रखरखाव में देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश के सीहोर में आयोजित योजना के रजत जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य को सम्मानित किया। राज्य की ओर से पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग

प्रदेश में बारिश में कमी आने के बाद लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एक निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से लेकर श्रीलंका के उत्तरी तट के ऊपर बना हुआ है, जिससे कल कुछ इलाकों में विशेषकर दक्षिण छत्तीसगढ़ के जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव और बीजापुर में गरज चमक के साथ हल्की बारिश, वज्रपात और तेज हवा चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। कपड़े बेचने की आड़ में गांजे की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश, 12 तस्कर गिरफ्तार, करीब 2 करोड़ रुपए का गांजा बरामद। और आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर प्रदेश भर में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकेगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
0: श्री शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें से दो भाजपा के और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद तथा बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के हैं। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी बार सरकार है। श्री शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों द्वारा पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति में उलटफेर हुआ है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगरपालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद

भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती के कार्यक्रम यादों की महफिल में। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार और उषा मंगेशकर के गाए इस गाने के साथ।

0: टैक्सी चोर फिल्म का ये गाना था। इसी गाने के साथ शुरुआत हुई आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की। किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाजें थीं। अनजान ने इस गाने को लिखा था, बप्पी लहरी का संगीत।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। साथियों, बॉलीवुड गानों में हवाओं, पवन और फिजाओं का जिक्र बड़ी ही खूबसूरती से किया गया है, जो अक्सर रोमांस, उदासी या मौसम के मिजाज को दर्शाता है। तो आज हवाओं का जिक्र करने वाले कुछ प्यारे से गीतों को हमने शामिल किया है यादों की महफिल कार्यक्रम में। चलिए बढ़ते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ की ओर।

0: विश्वनाथ फिल्म का बहुत ही मीठा ये गीत आप सुन रहे थे। एमजी हशमत ने इसे लिखा था और संगीत तैयार किया था राजेश रोशन ने। चलिए अब हम भी हवा के साथ साथ आगे बढ़ते हैं।
1: अरे

सीता और गीता फिल्म से। ये दो गाना आपने सुना, किशोर कुमार और आशा भोसले के जुगल स्वर थे, आनंद बख्शी की रचना थी, राहुल देव बर्मन का संगीत। साथियों, हवाओं का जिक्र करते गीत हर दौर में लिखे गए हैं। हर दौर के गीत की जो हवाओं का जिक्र करते गीत हैं उनकी अपनी ही कहानी है। अब ये गीत कौन सी कहानी कह रहा है, आइए सुने।

शंकर जय किशन के संगीत से सजा ये गाना रमेश शास्त्री ने लिखा था, लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम था बरसात। साथियों, ठंडी हवाएं और इंतज़ार, इनका रिश्ता भी बड़ा पुराना है। ठंडी हवाएं और इंतज़ार गीतों में जब ढलते हैं तो बड़े ही खूबसूरत लगते हैं।

नौजवान फिल्म से ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर का गाया हुआ। साहिर लुधियानवी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार सचिन देव बर्मन ने। हवा का जिक्र करते

0: मिलता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे शैलेंद्र की रचना, एस एन त्रिपाठी का संगीत, फिल्म का नाम था संगीत सम्राट तानसेन। अब बढ़ते हैं आशा भोसले की आवाज की ओर। रवि का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, फिल्म का नाम दो बदन।

तो आपने ये गाना सुना आशा भोसले की आवाज़ में, शकील बदायूनी की रचना, रवि किया संगीत और फिल्म थी दो बदन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज का ये कार्यक्रम सचा है हवाओं का जिक्र करते कुछ सुरीले गानों के साथ।

शांतनु मोइत्रा का संगीत आप सुन रहे थे। स्वानंद किरकिरे के बोल शान और शांतनु मोइत्रा की आवाजें थीं, और अब हम बढ़ेंगे लता मंगेशकर की आवाज की ओर। पहचाना ये गाना, बहुत सुना सुना सा है, जरा गौर से सुनिए।

0: लिबास फिल्म से ये गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार की आवाज है अगले गाने में, उस गाने को हम और आप सुनेंगे साथ साथ, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार,
2: हम लोग उनके लिए हैं।

0: क्षणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए
1: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
0: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सब के नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर।
2: तो चलिए अब उस गाने की ओर बढ़ते हैं जिसमें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है।

0: आज हमरे जिया में भी चैना नहीं।
1: चोरी चोरी चुप कर।

हाथी मेरे साथी फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आखिरी गाने की बारी। तो भाई हवाओं का जिक्र करता ये गीत है और ये गीत ना बजे ऐसा तो हो नहीं सकता। हेमंत कुमार का संगीत, गुलजार की रचना, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम दो दुनी चार।

तो साथियों, दो दुनी चार फिल्म का ये गाना बना आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप बने रहिए विविध भारती के साथ, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। जी हाँ, आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, हम अभी हाजिर होते हैं सुरीला सफर के साथ।

श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं शिफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सुरीला सफर कार्यक्रम में हम रोजाना एक टेक्स्ट, एक इबारत पोस्ट करते हैं और उसी में से कुछ शब्द चुनते हैं और उन्हीं शब्दों के आसपास घूमते हैं कुछ गाने जो हम आप तक पहुंचाते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। तो आज का टेक्स्ट आप तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी मैं वो टेक्स्ट आपको फिर से पढ़कर बताती हूँ। तो आज का टेक्स्ट है, आज की इबारत है, शाम की नरम चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनती है तो आसमान पर टिमटिमाते तारे जैसे मोहब्बत के अफसाने लिखते हैं। चांद अपनी ठंडी रोशनी से दिल के अंधेरों को सहलाता है और सूरज हर सुबह ये एहसास दिलाता है कि उम्मीद अब भी जिंदा है। इंसान सारी उम्र मोहब्बत, ख्वाब और सुकून की तलाश में भटकता रहता है, मगर ज़माना अक्सर उसे अपने उसूलों में बांध देता है। फिर भी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत सच्चाई यही है कि एक सच्चा दिल हर अंधेरी रात के बाद अपने लिए नया आसमान खोज ही लेता है। तो भाई, ये तो था आज का टेक्स्ट और इसी में से कुछ शब्द हैं। और वैसे शब्द

तो आपने ढूंढ ही लिए हैं और गानों के भी बहुत करीब पहुंच चुके हैं आप। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज की पंक्तियां जीवन के अनवरत संघर्ष, प्रेम और आशा के बीच संतुलन को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती हैं। तारों की टिमटिमाहट में छिपी मोहब्बत और चांद की शीतलता से अंधेरे को सहलाने का रूपक दिल के गहरे जख्मों पर मरहम जैसा सुकून देता है। और आगे लिखा है, सबसे मार्मिक बात यह है कि दुनिया की हकीकत इंसान को थका देती है, लेकिन सूरज की हर सुबह ये यकीन दिलाती है कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, उम्मीद की किरण कभी नहीं बुझती। आज शब्दों के माध्यम से रचा गया एक ऐसा सुकून भरा मंजर है जो तारों की छाओं में जीने और सूरज की रोशनी में विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। इन्होंने शब्द भी लिखकर भेजे हैं, शाम, रात, आसमान, ख्वाब, उम्मीद, चांद, टिमटिमाते तारे और सूरज। तो वैसे मैंने कहा ना कि शब्दों के बहुत करीब पहुंच चुके हैं आप लोग।

कुछ और कमेंट हैं जिनमें बहुत ही बेहतरीन हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। बड़े सुकून से लिखा है आपने ये कमेंट। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि वक्त की बहती नदी में जब यादों के दीप जलते हैं तो तन्हाई की खामोशी भी एक सुरीली नज्म सी लगने लगती है। सर्द रातों में ओस की बूंदें जैसे जमीन के कानों में सुकून के किस्से सुनाती हैं और ढलता हुआ सूरज जाते जाते ये वादा कर जाता है कि हर ढलती शाम एक नई शुरुआत की दहलीज होती है। वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती से लिखा है आपने। आगे लिखा है कि इंसान अक्सर मंजिलों के शोर में रास्तों की खूबसूरती भूल जाता है और दुनिया की बंदिशों में अपने अरमानों को कैद कर लेता है, मगर हकीकत तो यही है कि जिस दिल में हौसलों की चमक और प्यार की गर्माहट होती है वो मुश्किलों की पथरीली जमीन को चीर कर भी अपनी खुशियों का गुलशन खिला ही लेता है। बहुत खूब। सच में साथियों, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत बात यही है कि दिल अगर सच्चा हो तो मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। तो भाई अपने दिल को थोड़ा सुकून दीजिए, यादों को मुस्कुरा के महसूस कीजिए और अगर कोई अपना दूर है तो चांद को देखकर उसे याद कर लीजिए, क्योंकि साथियों कुछ रिश्ते आवाज़ों से नहीं एहसासों से ज़िंदा रहते हैं। एक और कमेंट हमारे पास आया है कि सूरज और चंद्रमा केवल आकाशीय पिंड नहीं हैं, ये प्रकृति और मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। कहीं ये जीवन की ऊर्जा, भावनाओं, समय और सौंदर्य के प्रतीक हैं। सूर्य को आत्मा का भी प्रतीक माना गया है जो आत्मविश्वास और यश प्रदान करता है, वहीं चंद्रमा को मन की शीतलता और शांति का और प्रेम का प्रतीक माना गया है। तो भाई जब मोहब्बत सच बात है कि मोहब्बत न होती, प्यार मोहब्बत न होती, प्रेम न होता तो कुछ भी न होता। चांद, तारे, फूल, पत्ती, पेड़ पौधे, साथियों ये झरने, नदियाँ कुदरत की सौगातें हैं, हमारे भीतर जीने की उम्मीद जगाती हैं। ये सच में हमें मोहब्बत है इनसे, अगर ये ना होते तो ये जहाँ ही ना होता। चलिए अब बात चल रही है प्यार मोहब्बत की, तो मोहब्बत का जिक्र करता एक गाना सुनते हैं और देखते हैं कि किस किस की पसंद मिलती है हमसे। वैसे अभी तक इस गाने का जिक्र मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया आपके इस कमेंट्स में।

आशा जी के गाए इस गाने के साथ हमने शुरुआत की आज के इस कार्यक्रम की। फिल्म का नाम था ये रात फिर न आएगी। बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि ये कम सुना गाना है। जी हाँ, ये आपने कम सुना है लेकिन बेहतरीन गाना है। और एक साथी लिखते हैं कि शानदार गीत है, कम सुना है फिल्म ये रात फिर न आएगी। और आशा जी की गायकी का तो अंदाज ही अलग है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि चांद जब भी आसमान में आता है तो सुनहरे सपने साथ मिलाता है, रात में सपनों के आगोश में गहरी नींद लेते हैं, सुबह की लाली पहनकर जब सूरज निकलता है तो सब सपने वास्तव लगते हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आपने शाम की बात का जिक्र किया है। सच में शाम एक ऐसा वक्त है जहां उम्मीद खत्म होती है, तो सुबह वो पल है जो हर एक उम्मीद का एक नया पल एक वक्त लेकर आती है, एक सुनहरी किरण के साथ सुबह के साथ। और एक साथी स्नेहिल नमस्कार के साथ लिखते हैं कि शब्दों को चुराकर गीतों में संवारे हूं मैं, और शाम है दिल की कसम आ भी जा, आसमान से आया फरिश्ता, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। तो मैंने कहा ना कि आप लोग भी गानों के कुछ कुछ करीब पहुंच चुके हैं। शब्दों को तो आपने ढूंढ लिया लेकिन गानों के बहुत करीब हैं। एक कमेंट में लिखते हैं कि हवा के धीमे झोंकों में जब यादें अपनी दस्तक देती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त की किताब का कोई पुराना पन्ना फिर से मुस्कुरा उठा हो। ढलती शाम अक्सर तन्हाई की सुर्खी ओढ़ लेती है लेकिन वही तन्हाई हमें खुद से मिलने का मौका भी देती है। इंसान अक्सर मंजिलों की चाह में रास्तों के सुकून को भूल जाता है और ज़माना उसे कामयाबियों के तराजू में तौलता रहता है, मगर हकीकत तो ये है कि दुनिया की भीड़ में खो जाने के बाद भी रूह की असली चमक वही पा सकता है जो अपनी टूटी हुई उम्मीदों को जोड़कर एक नई उड़ान भरने का हौसला रखता है। बहुत गहरी और सच्ची बात आपने लिखी है कि टूटी हुई उम्मीदों को जोड़कर वो नई उड़ान भरने का हौसला रखता है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे।

एक साथी लिख रहे हैं कि सदियों से मानव जाति ने चंद्रमा को प्रेम और प्रेमियों से अटूट रूप से जोड़ रखा है। कहीं पर वो प्रेम करने वालों को आपस में एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में एक बात करने वाला साथी भी मानते हैं। वहीं एक साथी लिख रहे हैं कि आज की इबारत बड़ी दिलकश है। तो दूसरे साथी ने लिखा, आज शब्द गीतमाला में दोपहर में ही शाम, रात और चांद की बात होगी, तो शीतल चांदनी का अनुभव कराते हुए गाने इस चिलचिलाती धूप की तपिश में थोड़ा सुकून का एहसास जरूर कराएंगे। वैसे भी इतनी गर्मी है, गर्मियों में गाने बड़ा ही सुकून देते हैं साथियों। एक साथी ने ढेर सारे गानों की लिस्ट भेजी है हमारे पास। लिखते हैं, इबारत अनुरूप संभावित गाने हैं, टिम टिम तारों के बीच, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, चांद सी महबूबा हो, ठंडी हवाएं, गया अंधेरा हुआ उजाला, चमका सुबह का तारा, सच्चाई छुप नहीं सकती, वगैरह वगैरह। तो एक साथी ने लिखा है कि आज की इबारत दिल के अरमानों को ख्वाबों की दुनिया में ले जाती है, शाम की रूमानी ख्याल रातों में अंगड़ाई लेती है, टिमटिमाते तारे चांद की ठंडक उन पर स्नेह की वर्षा करती है, सुबह जब ख्वाब टूटता है तो सूरज की रोशनी मानो पुकारती है, चलो अभी मंजिल दूर है, बहुत कुछ करना है, बहुत चलना है। ख्वाब और हकीकत का ताना बुना पर आधारित लाजवाब इबारत है, संगीत में सफ़र का इंतज़ार रहेगा। तो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है।

साथियों बताइएगा जरा कि अगर आसमान का एक तारा आपकी कोई एक ख्वाहिश पूरी कर दे तो वो ख्वाहिश क्या होगी, जरा बताइए। तो जब जिक्र आसमान का चला है तो हम भी जरा देखें कि कौन है वो फरिश्ता जो हमें प्यार का सबक सिखाने के लिए ऊपर से आया है।

0: प्यार है तुमसे
1: सहाना
0: जाना कहो प्यार है तुमसे
1: हाँ हाँ है
0: कहो प्यार है तुमसे
1: वो
0: जाना कहो
2: मोहम्मद रफ़ी की गायकी का ये बड़ा ही चुलबुला सा अंदाज आपने सुना एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म के इस गाने में। एक साथी ने लिखा है वाह भाई वाह एन इवनिंग इन पेरिस का ये जबरदस्त गीत हेलीकॉप्टर पर शम्मी कपूर और समुंदर में शर्मिला टैगोर। और एक साथी ने लिखा है कि आसमान से आया फरिश्ता शम्मी कपूर है शर्मिला टैगोर को प्यार का सबक सिखलाने पेरिस के आसमान में उड़ता हुआ आया है। क्या बात है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि अगर आसमान का एक तारा आपकी कोई एक ख्वाहिश पूरी करे तो वो क्या होगी। एक साथी ने लिखा है कि एक ख्वाहिश है बस इस ज़िंदगी में तुम साथ रहो हर खुशी और हर गम में आपके सवाल का जवाब है। क्या बात है। आपका जवाब हमें मिल गया। बहरहाल कि आपकी ख्वाहिश यही है। तो भाई दूसरे साथी लिख रहे हैं कि कमेंट शामिल होने पर मन अजीब सा लगता है यज्ञ सफल हुआ लंबे इंतजार का मीठा फल प्राप्त हुआ। वाह क्या बात है भाई। मैं समझ सकती हूँ आप सबकी भावनाओं को। एक साथी लिख रहे हैं कि काफ़ी दिन बाद आपका आना हुआ और आपको सभी श्रोताओं को नमस्कार है। जीवन का सुकून वहाँ मिलता है जहाँ हरियाली पानी नदियों की कलकल झरनों का कोलाहल चिड़ियों की चहचहाहट हो और इसी को बचा कर रखना हमारा काम है। बिल्कुल सही बात। चलिए एक बार मैं टेक्स्ट आपको फिर से पढ़कर बताती हूँ और वो साथी जो अब तक शब्दों का चुनाव नहीं कर पाए हैं उन्हें शायद सहूलियत हो जाए। तो आज का टेक्स्ट है शाम की नरम चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनती है तो आसमान पर टिमटिमाते तारे जैसे मोहब्बत के अफसाने लिखते हैं। चांद अपनी ठंडी रोशनी से दिलों के अंधेरों को सहलाता है और सूरज हर सुबह ये एहसास दिलाता है कि उम्मीद अब भी जिंदा है। इंसान सारी उम्र मोहब्बत ख्वाब और सुकून की तलाश में भटकता रहता है मगर ज़माना अक्सर उसे अपने उसूलों में बांध देता है। फिर भी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत सच्चाई यही है कि सच्चा दिल हर अंधेरी रात के बाद अपने लिए एक नया आसमान खोज ही लेता है और आपको खोजने हैं इनमें से शब्द। एक कमेंट आया है कि आपने सही कहा जो भी फैसला हो अच्छा या बुरा

हमें दोनों को स्वीकार करने में अक्सर वक्त लगता है, मगर वक्त के साथ देखें तो सही होता है। अक्सर दुनिया के नियम हमें बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सच्चा दिल हमेशा उन बेड़ियों से ऊपर उठकर अपनी राह खुद तलाश लेता है। आंतरिक शक्ति ये विचार स्पष्ट करती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा सच्चा दिल है, जो अंधेरे से डरता नहीं बल्कि नया आसमान खोजने का साहस रखता है। एक साथी लिख रहे हैं कि भाई बड़ी खूबसूरत है, उत्सुकता दिलचस्पी से मैं सुन रहा हूँ, गीतों का आनंद ले रहे हैं हम, आप आए बाहर आई और आपके कार्यक्रम में बहुत सुकून से भीषण गर्मी में ठंडक पहुँच रही है। बहना जी बहुत बहुत बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं। तो आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय शुभकामनाएं, आप सभी का दिन शुभ हो। तो वहीं एक कमेंट में हमारे साथी ने लिखा है, अभी तक के सुरीले सफर में ये महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि कुछ गीत रिपीट कम हो रहे हैं, कुछ अनसुना गीत, कुछ कम सुने गीत सुनने को मिल रहे हैं। एक बड़ा ही प्यारा सा कमेंट है और बड़ी ही उसकी जो शब्द हैं बहुत ही सुंदरता से चुने गए हैं। लिखते हैं कि हिंदी फिल्म गीतों और कविताओं में चंद्रमा को अक्सर प्रेम का गवाह और प्रेमी के सुंदर चेहरे का प्रतीक माना जाता है। लेखकों ने चंद्रमा की तुलना नायिका के मुखड़े से की है, ये प्रेमियों के लिए शांति और शीतलता का प्रतीक है। पूर्णिमा की रात को विशेष रूप से रोमांटिक माना जाता है, जो मिलन और विरह दोनों भावनाओं को जगाती है। भारतीय संस्कृति में चांद केवल एक खगोली नहीं है, बल्कि ये भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। गीतों में चांद से बातें करना या उसे संदेश वाहक बनाना प्रेमियों की एक पुरानी पहचान रही है। साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से चंद्रमा प्रेमियों की पहचान है, क्योंकि ये मानवीय भावनाओं, विशेषकर प्रेम और सौंदर्य को प्रतिबिंबित करने वाला सबसे प्रमुख प्राकृतिक तत्व है। बहुत ही अच्छी बात लिखी है इन्होंने। तो वहीं दूसरे साथी लिख रहे हैं कि भाई मेरी लिखी हुई इबारत का पहला गीत शामिल, आसमान से आया फरिश्ता। तो क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको।

एक कमेंट में लिखा है कि वही सुरीला सफर का हम और हमारा बेटा ऐसे इंतजार करते हैं जैसे कोई मेहमान आने वाला हो, क्या बात है। और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि अभी मैं ऑटो में हूँ, बस घर पहुँचते ही हम आपके साथ आराम से इस कार्यक्रम को सुनेंगे। तो बिल्कुल आप आहिस्ता आहिस्ता सहूलियत के साथ घर पहुँचे, तब कार्यक्रम का आनंद लें। साथियों, हर शाम एक बड़ा ही सुरीला सा पयाम लाती है। आप बताइएगा कि आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम उसकी कोई याद हमारे साथ साझा कीजिए। यकीनन शाम की चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनने लगती है तो नील गगन पर टिमटिमाते हैं तारे, तो ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत अफसाने लिख रही हो। तो जब जिक्र शाम का चला है तो क्यों ना शाम से जुड़ा एक गाना हो जाए। बहरहाल जो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ वो अभी तक मुझे आप सबकी लिस्ट में कहीं नहीं दिखा। प्लीज़ अपने मन को टटोलिए, कहीं ये गाना आपके दिल में तो नहीं है। ज़रा बताइए इसके शायर का नाम।

0: तो भाई ये गाना था कानून और मुजरिम फिल्म से, आवाजें थी सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर की। हमने पूछा था इसके शायर कौन है, चलिए उसकी बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने

इस खूबसूरत से गाने के लिए हमने पूछा था इसके शायर का नाम, तो कुछ हमारे पास कमेंट्स आए हैं। आप सब ने लिखा है कि इसके शायर थे अहमद वसी। जी हाँ, अहमद वसी का ये कलाम था, फिल्म थी कानून और मुजरिम। और इसको स्क्रोलिंग के बाद मुझे न जाने कितने गानों में, कितने कमेंट्स में ये गाना नज़र आया। आप सबकी पसंद शायद मुझसे काफ़ी हद तक मिलती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में मिलते जुलते गानों को आपने भी चुना। हमारे एक साथी ने लिखा है कि शाम मेरी मसूरी में गुजरी थी, बहुत ही अच्छा, ढलते सूरज के साथ वो सूरज की किरणें, पहाड़ों के पीछे से वो छुपना, वो नज़ारा बहुत सुंदर था। मैंने फ़ोटो खींचकर अभी भी जो मेरे पास है, सच में शाम तो मुझे बहुत अच्छी ही लगती थी लगती है। मैं हर रोज़ ही, कल ही मैंने एक फ़ोटो खींची है। जैसा कि हमने पूछा भी था कि आपकी सबसे खूबसूरत यादगार शाम कौन सी है, आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। वैसे होता है ना साथियों कि हम जब अपने अनुभव साझा करते हैं तो अनुभव किसी दूसरे के लिए आशा की किरण बन जाते हैं, उनके होठों की मुस्कुराहट बन जाते हैं। एक कमेंट में साथी ने लिखा है कि हाँ जी, शाम तो हर किसी को अच्छी लगती है। मेरी मम्मी के शाम के टाइम जब शादी नहीं हुई तो वो नानी के घर नदी के किनारे जाया क्या लिखा है इन्होंने, जाया करती थी। अरे वाह। एक कमेंट में साथी ने लिखा है, मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी शाम वो है जब मेरी कक्षा 12 का बोर्ड का परिणाम आया था और मैंने 96.96% के साथ पूरे गांव में टॉप किया था। तो भाई सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। और आगे लिखा है कि अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब मिलने आए हुए थे और मेरे माता पिता की आँखों में गर्व की चमक को देख कर मेरे लिए वो शाम अमिट हो गई। बिल्कुल, बहुत खुशी का पल होता है माता पिता के लिए, गर्व का पल होता है। माता पिता अपने बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं और जब वो उम्मीदें साकार हो जाती हैं तो यकीनन उनका सर गर्व से उठ जाता है। एक साथी ने लिखा है कि अपने वादे के मुताबिक एक छोटे से अंतराल के बाद मैं आपके सामने कुछ संभावित गीतों की फहरिस्त पेश करता हूँ, या आपकी लिस्ट में से मेल खा लें तो मैं उसे अपनी खुशनसीबी समझूंगा। इन्होंने कुछ गाने लिख भेजे हैं। आगे लिखते हैं कि ये मेरे कुछ तराने हैं, अगर आपकी लिस्ट से मेल खाएं तो बड़ी खुशी महसूस होगी, अगर ना भी मेल खाएं तो कोई गम नहीं, अगली बार फिर नई उम्मीद के साथ कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी, ये उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। और एक साथी ने लिखा है कि जैसे कि एक आसमान का एक तारा हमारी कोई ख्वाहिश पूरी करे तो वो क्या होगी। तो एक साथी लिखते हैं कि ख्वाहिश पूरी करने की बात हो तो मैं यही ख्वाहिश मांगूंगी कि मेरे वे सभी जो अपने जो मुझसे बिछड़ गए हैं वे मुझे फिर से मिल जाएं। तो एक साथी लिखते हैं कि अपनी ख्वाहिशों की बात पूछी है तो इंसान की ज़िंदगी किसी किसी की पूरी होती है, विविध भारती के सिवा कोई चैनल नहीं है, बस यही मेरी ख्वाहिश है। तो बस जुड़े रहिए विविध भारती के साथ। एक कमेंट आया है, लिखते हैं, दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ जिसे इंसान को स्वीकार करना चाहिए वो है जीवन की वर्तमान स्थिति को प्रेम और समझदारी के साथ स्वीकार करना। इसे ही स्वीकार कहते हैं जो मन की शांति, संतोष और हर हाल में खुश रहने की कुंजी है, क्योंकि जीवन हमेशा हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलता। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है कि हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलता। हर शाम अपने समय पे आती है, सूरज अपने समय पे उदय होता है और हर सुबह सूरज का उदय हमारे अंदर उम्मीद जगाता है, जीने का हौसला देता है कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करो। तो सुनिए ये गाना, बताइए फिल्म का नाम।

हेमंत कुमार का गाया ये गाना आप सुन रहे थे और हमने पूछा था इस फिल्म का नाम, आप सभी ने लिखा हरिश्चंद तारामती फिल्म लाजवाब गीत हेमंत कुमार जी की आवाज में। तो भाई एक साथी लिख रहे हैं कि बेहतरीन गीत है ये हरिश्चंद तारामती फिल्म से, तो दूसरे साथी बहुत खुश हैं, उन्होंने लिखा है और उनकी खुशी दोगुनी हो गई है और उनको हम बहुत बहुत बधाई भी दे रहे हैं, आप सबको बधाई। और लिखते हैं कि मेरी इबारत का दूसरा गीत भी शामिल, वाह सूरज रहे तू जलते रहना। तो भाई आप सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई कि आप सबकी पसंद हमसे मिल गई आज के इस कार्यक्रम में। एक कमेंट पे लिखते हैं कि विविध भारती सुरीली धड़कन शायराना तान आप सभी को नमस्कार और सुरीली धड़कन के लिए इस नए निराले मनोरंजक कार्यक्रम सुरीला सफ़र में आज प्रकृति के सौंदर्य को जिस तरह समाहित किया गया है काबिले तारीफ है और दोपहर की चिलचिलाती धूप में ये गीत ठंडी फुहार का काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि जिंदगी में कई शाम ऐसी आई जो यादगार बन गई और उम्मीद है जब तक जिंदगी है अपनों के प्यार बदौलत ऐसी शाम बार बार आएंगी। पर आज जिक्र करेंगे अभी के लेटेस्ट शाम का जब अपनी शादी की सालगिरह पति और बेटी के साथ मनाई, खास इसलिए थी कि बेटी का योगदान था इस शाम को स्पेशल बनाने में। कई सालों से पढ़ाई और जॉब के कारण बच्चे हर बार साथ नहीं होते, जब होते हैं तो वही समय स्पेशल हो जाता है। यकीनन अपने परिवार के साथ बिताया हर समय, हर सुबह शाम दिन रात बहुत स्पेशल होती है, यादगार होती है। एक साथी ने लिखा है घनी काली रात के बाद नया सवेरा आशा, सकारात्मकता और नई शुरुआत का संदेश लाता है, ये जीवन की कठिनाइयों के बाद उजाले का आश्वासन देता है, ये मुहावरा दर्शाता है कि हर अंधेरे दौर के बाद रोशनी जरूर आती है, जैसे हर रात सूर्योदय के साथ समाप्त होती है। कविताओं और प्रेरणादायक लेखों में इसे हार के बाद जीत या निराशा के बाद खुशी के रूप में चित्रित किया जाता है, ये हमें धैर्य और आशावाद रखने की सीख देती है। और हमारे साथियों ने बहुत सारे गाने वाह लिख के भी भेजे हैं। एक साथी ने दो पंक्तियां लिख भेजी हैं, सूरज के डूबते ही आसमान में रंग बिखर जाते हैं, सूरज के डूबते ही आसमान में रंग बिखर जाते हैं, जैसे शाम के साथ दिल में यादों के दीप जल जाते हैं। क्या बात है। यकीनन साथियों जब रात गहराती है और आसमान तारों से भर जाता है तो ऐसे में कोई ऐसा शख्स जिसकी बातें आज भी आपके दिल को सुकून देती हों, उस एहसास को हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि किसी की उम्मीद बन सकती है आपकी बातें, आपके अनुभव। वैसे जब बातें तारों की चल रही हैं तो ये गाना सुनिए और ज़रा बताइए। और वैसे ये गाना मुझे आपकी लिस्ट में मिल चुका है बहुत सारे साथियों की, बहुत ही प्यारा गाना है, इसके गीतकार और संगीतकार कौन है सुनिए ज़रा।

बहुत ही मीठा गाना आपने सुना, मौसी फिल्म से था और हमने पूछा था गीतकार और संगीतकार का नाम। आप सभी ने बहुत प्यार से लिखा है और यहाँ तक कि आप सब ने इसका सन भी बताया कि किस सन में ये पिक्चर आई थी। तो बहरहाल गीतकार भरत व्यास और संगीत वसंत देसाई का था और इसमें गायक स्वर थे तलत महमूद और लता मंगेशकर के। हमारे एक साथी लिखते हैं कि सूरज रे जलते रहना, ये गाना सुनते ही मुझे उन वीर वीरांगनाओं की याद आती है जिन्होंने हमें आज़ादी की किरण देने के लिए खुद को सर्वस्व कर दिया और उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ हैं। बिल्कुल बहुत सही बात आप लिख रहे हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि फिल्म हरिश्चंद तारामती में हेमंत कुमार का स्वर था, भाई हमारी और आपकी पसंद एक है और इन्होंने बहुत ही अच्छी सी एक इमोजी भी बना के भेजी है। और एक साथी क्या लिखते हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। अगर कहीं तारा ज़मीन पर उतर आए और वो मुझसे रूबरू हो जाए तो मैं अपने दिल की बसी तमाम बातें साझा करूंगा। मैं उससे कहूंगा कि देखो भाई, मैं अपनी उलझनों परेशानियों में इस कदर उलझा हुआ हूं कि सही रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूं, तू मुझे वो सही रास्ता ढूंढने में मदद कर। बहुत से ख्वाब देखता हूँ लेकिन वो बमुश्किल हकीकत में तब्दील होते हैं। उस तारे से कहूँगा कि मुझे वो हिम्मत फरहाम करे कि मैं उन अधूरे ख्वाबों को दुनिया के उसूलों के बीच चलकर अपनी पहचान बनाकर पूरा कर लूँ। क्या बात है, आपके सारे ख्वाब पूरे हों ये हमारी शुभकामनाएं। और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि रात जितनी घनी होती है सवेरा उतना ही करीब होता है। आगे भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, वो मैं पढ़ती हूँ। लिखते हैं, हर काली रात अपने साथ थकावट और सन्नाटा लाती है लेकिन ये इस बात का प्रमाण भी है कि पुराना वक्त बीत चुका है। क्षितिज पर उभरती पहली किरण केवल उजाला नहीं बल्कि संघर्षों पर विजय का प्रतीक है। नई उम्मीदें हमें साहस देती हैं कि हम अपनी गलतियों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करें। मृदुल कल्पनाओं के दिन, सुखद भविष्य के सुंदर सपने अक्सर सबसे कठिन रातों के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। कितने सुंदर शब्दों में पिरोया है आपने दिल की भावनाओं को। एक साथी ने लिखा है, आज की इबारत एक बहुत ही अच्छा संदेश दे रही है कि कभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह आती है। इसलिए परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखकर आप अपना कर्म करें और सुरीला सफ़र तय करते रहें। साथियों, बहुत ज़रूरी होते हैं यहाँ पर रिश्ते बनाने, रिश्ते बना कर रखना, क्योंकि कुछ रिश्ते चांद की तरह होते हैं जो दूर होकर भी दिल के बहुत पास, और कुछ लोग तारों की तरह होते हैं जो हमेशा हमारे साथ तो नहीं होते लेकिन हाँ अंधेरे वक्त में उनकी रोशनी हमें टूटने नहीं देती। शायद इसी का नाम उम्मीद है। आप क्या कहते हैं ज़रा बताइए। और बात चली है चांद की तो ये गाना हो जाए, और बताइए कि क्या ये गाना आपकी लिस्ट में था।

साथी ने बहुत ही भावुक सा कमेंट भेजा है कि अगर एक तारा टूटकर आए तो पूछूं मेरी माँ ऊपर कैसी है। आपने भावुक कर दिया सचमुच।

ये बड़ा ही स्वीट सा गाना देवता फिल्म से सुना आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। हमारे एक साथी ने लिखा है, गुरुदेव और लता जी का सुपर गीत, संगीत राहुल देव। शायद इन्होंने गुरुदेव किशोर कुमार जी को लिखा है। और एक साथी लिखते हैं कि गुलजार जी ने चांद से इतनी मोहब्बत की है कि जैसे लगता है चांद और वो एक ही हैं, एक में समा गए हैं। वो कहते हैं चांद का मेरे पास कॉपीराइट है। एक साथी ने अपनी शाम यादगार शाम साझा की है कि मेरी सबसे खुशनुमा और यादगार शाम 27 मई साल 16 की है, 2016 की। शादी की 25वीं सालगिरह को मेरी दोनों बिटियों ने यादगार बनाया था, बेहतरीन उपहार, और हम चारों ने रात का भोजन एक साथ किया था। इन मधुर स्मृतियों को हमेशा अपने साथ सजाए रखिएगा। तो वहीं दूसरे साथी ने भी कुछ शेयर की हैं बातें। लिखते हैं, मुझे बहुत सुहाती है, सुहाती वो शाम है जब छिटकती चांदनी से धुलती शाम है, संग फजा में रात रानी की महक हो, इसी बहाने मेरे चेहरे पर थोड़ी सी तो इत्मीनान की चमक हो।

आप सब ने अपने अपने गीत हमारे साथ साझा किए हैं और हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुरीला सफ़र की पोस्ट टिमटिमाते तारे और ठंडी रोशनी के बीच यानी रात को ही पढ़ने को मिल गई, लेकिन अभी दोपहर में कड़ी धूप के बीच जब ठंडी हवा और शीतल चांदनी से जुड़ी बातें और उनसे जुड़े गीतों की बरसात होगी तो इस गर्मी से थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी। और अब वो मोस्ट अवेटेड सॉन्ग आप सबके लिए पहुंच रहा है, सुनिए ये गाना और बताइए ज़रा कि इसके संगीतकार कौन है और इसमें नायक कौन है। आप में से अधिकांश साथियों की लिस्ट में ये गाना

एक साथी ने लिखा है, कुछ महीने पूर्व मैंने रात को ग्रहण के समय रेड मून का खूब लुत्फ लिया था। सुना था कि 144 साल बाद अब ये नज़ारा देखने को मिलेगा। रात 12 से सुबह 1:30 तक बस चांद की हरकतों पर नज़र रखी थी मैंने। ये पल सबसे यादगार है मेरे लिए।

बहुत बहुत बहुत मिल गई और गाने आपके हमारे बहुत करीब थे। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी आपसे कुछ देर के बाद। बहरहाल आप बने रहिए विविध भारती के साथ, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

नमस्कार श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर वर्ष 12 मई को मनाया जाता है, जो आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के रूप में भी जाना जाता है। ये दिन उन नर्सों के सम्मान में समर्पित है जो दिन रात मरीजों की सेवा में लगी रहती हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाली नर्सें केवल इलाज में ही नहीं बल्कि मरीजों को मानसिक सहारा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनका धैर्य, करुणा और सेवा भाव उन्हें समाज में एक खास स्थान दिलाता है।

नर्स का कार्य केवल दवाइयां देना या मरीजों की देखभाल करना नहीं होता, बल्कि वे मरीजों के दर्द को समझती हैं और उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत भी बनाती हैं। कई बार मरीज अपने परिवार से दूर होते हैं, ऐसे में ये परिचारिका ही तो उनका सहारा बनती है। कठिन परिस्थितियों में लंबे कार्य घंटों और मानसिक दबाव के बावजूद वे अपने कर्तव्यों को भी पूरी निष्ठा से निभाती हैं। कोरोना काल जैसे संकट के समय में भी नर्सों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मानवता की सेवा का उदाहरण पेश किया था।

अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हमें ये सिखाता है कि सेवा और समर्पण ही सबसे बड़ी मानवता है। ये दिन हमें नर्सों के प्रति आभार व्यक्त करने और उनके योगदान को सम्मान देने का अवसर देता है। हमें चाहिए कि हम उनके कार्य की सराहना करें और उनके प्रति सम्मान बनाए रखें। एक छोटा सा धन्यवाद और सम्मान भरा व्यवहार भी उनके कठिन परिश्रम को सार्थक बना सकता है। गंभीर रूप से बीमार रोगी और उसके परिजन और डॉक्टर के बीच महत्वपूर्ण सेतु होती हैं परिचारिकाएं। आज के दिन हम नर्सेस को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद देते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्य

0: मंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के.ए. सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर और नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया।

0: श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
1: आवर एलपीजी किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ER News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़क कर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर हम लेकर हाजिर हैं गुजरे जमाने के कुछ नायाब, कुछ अनमोल सदाबहार नगमे।

नजर को दिल, किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम। मैं नशे में हूँ फिल्म का ये गाना आपने सुना, मुकेश की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार शंकर जयकिशन ने, और ये थी आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की पहली पेशकश। तो भाई, दिल देने के बाद दीवानगी का आलम कुछ इस तरह।

0: बेजुबान फिल्म से ये बहुत ही मीठा सुरीला गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। प्रेम धवन की रचना थी, चित्रगुप्त का संगीत। ऐसे ही सुरीले नगमों का दौर जारी रहेगा, लेकिन अगला गाना सुनने से पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे

0: एक शानदार शख्सियत।
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
1: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जाने

0: शेखन।
1: मोहम्मद रफी की आवाज, जावेद अनवर के बोल, उषा खन्ना का संगीत, आपने सुना शबनम फिल्म का गाना। और प्यार में कुछ कस्में होती हैं, कुछ वादे होते हैं, ऐसा ही सुरीला गीत एक और आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा ये गाना आप सुन रहे थे तेरे मेरे सपने फिल्म से। आवाजें थीं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। इस गाने को लिखा था गीतकार नीरज ने। तो ये तो थी बातें वादों की कस्मों की और मोहब्बत में फिर कहाँ का हिसाब रह जाता है इश्क जब बेहिसाब हो जाए।

आशा भोसले की गायकी का ये अंदाज आप सुन रहे थे फागुन फिल्म के इस गाने में। कमर जलालाबादी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार ओपी नैयर ने। और अब अगले गाने में संगीत का जादू शंकर जयकिशन का, शैलेंद्र की रचना है, लता मंगेशकर की आवाज में। क्या कहता है ये गाना दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से, आइए सुन।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के गाए मेरे सनम फिल्म के इस गाने के साथ ही अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सखियां आ चुकी हैं स्टूडियो में, सखी सहेली कार्यक्रम की तैयारी हो चुकी है और अब आज के लिए शेफाली कपूर को दीजिए इजाज़त। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा महेश्वरी और
1: चंचल वर्मा का
0: नमस्कार और साथ में हेल्दी नमस्कार भी।
1: ये हेल्दी नमस्कार क्यों?
0: भाई देखो कितनी गर्मी है।
1: हाँ?
0: और बाहर गर्मी से तो जैसे कि ये हो रहा है कि आंख मिचोली का खेल हो रहा है ना इन दिनों। तो अपना सब ध्यान रखें, खूब अच्छे से ध्यान रखें, और खास तौर पे हमारी सखियां सबका तो स्वास्थ्य, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रख लेती हैं, लेकिन खुद को हम कहीं छोड़ देते हैं पीछे, तो ऐसा ना करें।
1: सबसे पहला ध्यान दीपा ने खींचा है स्वास्थ्य की तरफ।
0: जी
1: बहुत अच्छी बात है। और स्वास्थ्य से मुझे याद आया कि जैसे तुमने कहा ना कि भाई महिलाएं जो है वो सबका ध्यान रखती हैं, और जब छुट्टियों में बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं, और फिर जब मेहमान आते हैं तो बच्चे भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो जो महिलाओं की जिम्मेदारी है वो बहुत बढ़ जाती है, और खास तौर पर एक तो गर्मी के दिन ऊपर से रसोई का जो काम है वो बहुत बढ़ जाता है।
0: हाय हाय, ये तो पूछो ना, सच में देखो पसीना तो बहुत आता है, ऐसा लगता है कि कब बस ये बन जाए, जो भी व्यंजन बन रहा है ये बन जाए और हम बाहर जाएं। लेकिन ये बात भी है, कहीं बच्चे नानी के घर आए होंगे, कहीं बच्चे दादी के घर आए होंगे, या कहीं बुआ किसी के घर पे आई होगी, या हम कहीं गए होंगे। ये बात तो गर्मियों में, ये मई और ये जून का महीना है, इसमें ये सब चीज़ें चलती हैं, और देखो फिर यादें भी तो वहीं बनती हैं।
1: बिल्कुल,
0: कितनी बातें हम संजोते हैं, कितनी हमारे जब यादों के गलियारे में जाते हैं, हम अपने दिनों में ही जाते हैं अगर चंचल।
1: हालांकि तो, समय बदल रहा है, पहले एक एक पूरे दो दो महीने डेढ़ महीने के लिए हम नानी के घर चले जाया करते थे, आजकल क्योंकि समय बदल रहा है हम लोग भी बहुत सारी बच्चों को एक्टिविटीज के लिए डाल देते हैं, तो समय कम होता है, लेकिन फिर भी लगता है कि छुट्टियां आई हैं बच्चों की, थोड़े बदलाव के लिए क्यों ना कहीं बाहर चला जाए, तो एक हफ्ता दस दिन का समय निकाल कर तो हम छुट्टी मनाने चले ही जाते हैं किसी न किसी रिश्तेदार के घर, या तो फिर किसी जगह पर घूमने चले जाते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं किसी रिश्तेदार के घर, तो वहां जब उनका काम बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि हम लोग जो जाते हैं वहां हमें भी थोड़ा हाथ बटाना चाहिए। इस पर हमारी सखियों के क्या अनुभव हैं, क्या उनके ऊपर भी कभी उन्हें लगता है कि काम का बोझ बहुत बढ़ गया है तो झुंझुलाहट आती है, या आए मेहमानों के साथ में वो एक यादें बनाने के लिए बहुत खुश होती हैं, उनके अपने अच्छे बुरे खट्टे मीठे सभी तरह के जो भी अनुभव हैं वो हमारे साथ साझा कर सकती हैं।
0: और साथ में ये भी बताइएगा कि आपके घर में बच्चे आए हैं या आपके घर के बच्चे कहीं गए हैं।
1: हाँ।
0: क्या चल रहा है इन दिनों घर में, खूब सारी जो चहलकदमी चल रही है, या अभी कहीं बच्चे गए हुए तो घर में शांति है, सब तरह की जो भी बातें आप चाहती हैं साझा जरूर करिएगा।
1: और हम जब अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं ना, तो उनकी बातें जब हम सुनते हैं तो उसमें बहुत सारे कहावतें मुहावरे ये सुनने को मिलती हैं, और ये ऐसे मुहावरे या कहावतें जो होती थी ना, चार शब्दों में 40 लाइनों की कोई बड़ी बात कह जाते थे, ऐसे शब्द होते हैं,
0: यानी कि 100 सुनार की और एक लोहार की वाली बात कर रही हैं आप।
1: बिल्कुल, और यही आज का मुहावरा है जिस पर हम बातचीत करने वाले
0: जी
1: हैं।
0: और महिलाओं ने उद्यम के क्षेत्र में
1: जी
0: बिजनेस के क्षेत्र में बहुत सारा अपना नाम कमाया है।

0: पिछले कुछ वक्त में, कोरोना के बाद तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि कितनी सारी महिलाएं अब काम कर रही हैं। हम बाहर निकलते हैं ना तो दुकानों पे भी बैठी मिलती हैं, ऑफिस में भी मिल रही हैं, घर का काम तो संभाल ही रही हैं, और व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रही हैं।
1: घर से ही बैठकर वो अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर रही हैं, घर पर बैठकर कोई बैग बना रही है, कुछ खाना बना रही है, कुछ कहते ना घर को सजाने वाली चीज़ें बना रही हैं। तो इसी तरह से घर सजाने के साथ खुद को सजाने संवारने की बात अगर की जाए तो इस तरह के व्यवसाय से जुड़ी आज एक महिला की हम बात करेंगे। और फेसबुक पर हमारी सखियों ने देख ही लिया है, फिर भी हम नाम बता देते हैं। आज बात होगी विनीता सिंह के बारे में जो कि एक महिला उद्यमी है, और इनके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। लेकिन पहले और विषय बता देते हैं कि किन पर चर्चा होने वाली
0: जी
1: है।
0: आज बात करने वाले हैं हम डॉक्टर निशा सिक्वेरा से, लू लगने के जो लक्षण होते हैं और बचाव उसे कैसे किया जाए और किस तरह से ध्यान रखा जाए, तो वो हमें बहुत सारी जानकारियाँ देंगी।
1: इसके अलावा दो खास दिन आज हैं, एक है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जिसे हम परिचारिका दिवस भी कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस भी आज है, इनकी बात भी होगी। और पेड़ पौधों को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, इस पर बात होने वाली है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि बातचीत को यहीं रोकें और पहले एक गीत सुन लें।
0: चलो चलते हैं।

0: चंचल, जो गुलमोहर ये लाल पीले फूल जब सब तरफ फैले होते हैं कितने सुंदर लगते हैं देखने।
1: और गर्मियों में खासतौर पर गुलमोहर का पेड़ जो है वो हरा भरा होता है और जो उसका लाल रंग के जो उसकी पत्तियां होती है ना, जब हम गुजरते हैं रास्तों से और जो रास्ते पर चादर सी बिछी हुई होती है, सच में
0: ऐसा लगता है इसके ऊपर चले नहीं है ना,
1: और लेट जाए बस, गर्मी से राहत दे जाती है। तो भाई ये सुकून तभी नसीब होगा ना जब हम इन पेड़ों की पौधों की सुरक्षा करेंगे, संरक्षण करेंगे।
0: सही बात है।
1: इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई का जो दिन है इसे अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में घोषित किया है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ। तो ये वैश्विक स्तर पर इस बात के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके ताकि जो भी छोटे पौधे हैं उनकी रक्षा हम करें, क्योंकि छोटे पौधे जो है ना यही आगे चलकर हमारी भूख समाप्त करने का जरिया बनते हैं, और पर्यावरण की रक्षा अगर हम करेंगे तो आर्थिक विकास को भी इससे बढ़ावा मिलता है।
0: बिल्कुल। और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम सब जानते हैं कि जब पौधे पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो हम लेते हैं, तो लगभग सभी पेड़ों से ये काम होता है। हम जो भोजन खाते हैं उसका भी करीब 80% पेड़ पौधों से ही हमें मिलता है, लेकिन हर साल कीट और बीमारियों के कारण लगभग 40% फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिससे सभी के लिए भोजन और फिर पोषण उपलब्ध करने के प्रयासों में भी रुकावटें आने लग जाती हैं।
1: और हम देख रहे हैं कि जब एक पौधा हम रोपते हैं, जब वो बहुत छोटा होता है, तब उसे सबसे ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय उसने अपनी जड़ें नहीं पकड़ी है, वो बहुत नाजुक होता है
0: जी।
1: तो उस वक्त उसे देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है, चाहे वो हमने खेत में कोई फसल लगाई है या घर पर कोई पौधा छोटा सा रोपा है, लेकिन उस वक्त उसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है, एक छोटे बच्चे की तरह उसकी देखभाल की जरूरत होती है।
0: जब हम घर में भी लगाते हैं तो हर दिन कैसे जा करके देखते हैं, और सिर्फ एक जो लगाता है घर में गमले में पौधा छोटा सा, पूरा घर फिर आके पूछता है ये ठीक से तो है ना, बढ़िया है ना, पानी डाला, सब पूछते हैं एक दूसरे से, और कितना बिल्कुल एकदम परिवार का एक हिस्सा बन चुका होता है वो गमला या वो पौधा। तो सब सोचिए, जब सब तरफ से लगे हों या आपके बागीचे में लगे हों या आप कहीं बाहर भी कहीं पे किसी ऐसी जगह पर जो कोई सार्वजनिक जगह है जहाँ पे आप लगा सकते हों, तो ज़रूर लगाना चाहिए पौधों को, पेड़ के।
1: पता है जब हम गर्मी में कहीं जाते हैं, कहीं बस स्टॉप पर खड़े हैं, किसी बस का या रेल का इंतज़ार कर रहे हैं, और जब वहाँ हमें कोई छांव नहीं मिलती तो कई बार यहाँ वहाँ जाकर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कहीं कोई पेड़ हो तो जिसके नीचे खड़े होकर थोड़ा सुस्ता लिया जाए, कहीं छांव मिल जाए हमें। और कई बार हम अपने वाहन से भी अगर जा रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा छांव में सुस्ता लें।
0: सही बात है। और कभी कभी तो पता है कैसा होता है कि वो रास्ते की निशानी बन जाता है।
1: हाँ।
0: भाई तुम आगे वो रास्ते तक जाओगे ना, बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, बस वहां से उल्टा दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना। हाँ। है ना, कई बार ऐसा होता है।
1: ये निशानियां बनाने के लिए या उस वो छांव लेने के लिए उन पेड़ों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है दीपा, और इसीलिए ये दिन हम मना रहे हैं ताकि जो छोटे पौधे हैं उनकी सुरक्षा हो सके। और पौधों की सुरक्षा उनके लिए सीमा नियंत्रण और स्वच्छता की तरह होती है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो खतरनाक कीट हैं और उनमें लगने वाली जो भी बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए उनकी जांच करना समय समय पर और उनकी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। ये सुरक्षा कवच का काम करता है, जिनसे हमें भोजन मिलता है और किसानों का रोजगार भी सुरक्षित रहता है। कई बार हम देखते हैं खेतों में बहुत सारी टिड्डियां घुस जाती हैं जो पूरी पूरी फसल को खा जाती हैं।
0: बिल्कुल, मवेशी घुस जाते हैं तो वो तो बर्बाद कर देते हैं बिल्कुल, है ना। और उस वक्त आप सोचो वो जो किसान है जिसने वो लगाया है पौधा, उसके दिल पर क्या बीतती है, और उनको आर्थिक भी बहुत नुकसान हो जाता है।
1: अरे लेकिन इसके अलावा हमारे पर्यावरण को, प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है। ये जो हम देख रहे हैं ना ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है
0: जी,
1: जब हम गाड़ियां वाहन बहुत सारे बढ़ रहे हैं, लेकिन वाहनों से जो निकलने वाला कार्बन है उसे पौधे क्योंकि अपनी तरफ खींच लेते हैं और हमें एकदम फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं।
0: सही कहा,
1: ताज़ा सांस लेने के लिए वो जो सुविधाएं हैं वो कम हो रही हैं, हम मशीनों पर धीरे धीरे निर्भर होते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम पेड़ लगाएंगे और उनको संरक्षण भी देंगे तो ये जो समस्याएं हैं इनसे काफ़ी हद तक हम निजात पा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखो एक वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, अंतराल के बाद आते हैं और फिर इस बारे में और बात करेंगे।

बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे हम एक बार फिल्म से, ये गीत हमने लिया था और पौधों और पत्तों की इस गीत में बात हो रही थी। ये पेड़ जो हैं ये हमें लू से बचाव में बहुत सहायक होते हैं, और इसी विषय पर डॉक्टर निशा सिक्वेरा से जो बातचीत हमने की है अब वो सुनते हैं।

नमस्कार, सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर निशा सिक्वेरा। आज आप सभी के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं एक चिकित्सा विशेषज्ञ हूं और मेरा उद्देश्य ये है कि लोगों को स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने में सहायता करना। आज मैं हीट स्ट्रोक या लू के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। गर्मियों के दिनों में अपने देश के कई शहरों में तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। इन दिनों दोपहर के समय बाहर बहुत तेज गर्म हवाएं चलती है। इन गर्म हवाओं को ही लू यानी हीट स्ट्रोक कहते हैं। मजबूत इम्यूनिटी वाले लोग इन गर्म हवाओं को सहन कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इन हवाओं को सहन नहीं कर पाते हैं और इनके संपर्क में आते ही बीमार पड़ जाते हैं। अपने देश में हर साल काफ़ी बड़ी तादाद में लोग लू की चपेट में आ जाते हैं। लू लगने के कारण ये गर्म हवाएं जब अपने शरीर के संपर्क में आती हैं तो शरीर का तापमान बढ़ा देती हैं और इस वजह से कई समस्याएं होने लगती है। ज़्यादा देर तक धूप में काम करना और शरीर में पानी की कमी होना लू लगने के प्रमुख कारण हैं। बच्चे और बूढ़े लोग लू की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। अधिकांश मामलों में लोगों को ये जल्दी पता ही नहीं चल पाता है कि उन्हें लू लग गई है। हालांकि इसका सटीक अंदाज लू के लक्षणों को देखकर लगाया जा सकता है।

0: इसीलिए हर किसी को लू के लक्षणों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। लू लगने के लक्षण, लू लगने पर सिर में तेज दर्द होना, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होने लगती हैं। शुरुआत में इन लक्षणों की तीव्रता काफ़ी कम होती है, लेकिन समय के साथ साथ ये बढ़ते जाते हैं। लू लगने पर अचानक से तेज़ बुखार होने लगता है और शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। शरीर में गर्मी बढ़ने के बावजूद लू लगने के दौरान शरीर से पसीना नहीं निकलता है। लू लगने पर उल्टी आना और शरीर में तेज़ दर्द होना आम बात है। उल्टी होने के कारण शरीर में सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है। कमज़ोर इम्यूनिटी वाले या शारीरिक रूप से कमज़ोर लोग लू लगने से बेहोश भी हो जाते हैं। लू लगने पर क्या करें? लू लगने पर मरीज को तुरंत छायादार जगह पर या ठंडी जगह पर लिटाएं। शरीर को ठंडा रखने के लिए शरीर पर ठंडे पानी का पट्टियाँ लगाएं, घर के खिड़की दरवाजे खोल दें और कूलर या एसी चालू कर दें। अगर मरीज लू लगने से बेहोश हो गए हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। लू से बचने के उपाय, ये सच है कि हर साल लू से कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि अगर गर्मी के मौसम में आप ठीक ढंग से अपना ख्याल रखें और कुछ ज़रूरी सावधानियां बरतें तो लू के प्रकोप से बच सकते हैं। आइए लू से बचने के कुछ प्रमुख उपाय मैं बता देती हूँ। गर्मियों के दिनों में हल्का भोजन करें। गर्मियों के दिनों में कभी भी खाली पेट पर घर से बाहर ना निकले। ज़्यादा देर तक धूप में रहना हो तो छाते का इस्तेमाल करें। अधिक मात्रा में पानी पिए। बाहर जाते समय पानी की बोतल साथ में लेकर चलें। हाइड्रेटेड रहें। प्यास ना लगने पर भी पानी, नारियल पानी और जूस पीते रहें। बाहर निकलने के समय पर टोपी, स्कार्फ या छाते का इस्तेमाल, जैसे मैंने बता दिया अभी, उस इस्तेमाल करें। हल्के और जल्दी पचने वाले भोजन करें। प्याज और दही का सेवन बढ़ाएं। आज हीट स्ट्रोक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आप इस गर्मी में खुद को और अपने परिवार को बचाएं, अच्छे से ध्यान रखें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।
1: अभी हमने सुना डॉक्टर निशा सिक्वेरा से लू से बचने के कई तरीके। तो चलिए अब सुनते हैं गीत।

0: इस गीत के बाद फिर से हम अपनी बातचीत लेकर हाजिर हैं, और हमने शुरुआत में कहा था कि दो खास दिवस आज हैं, तो 12 मई का दिन है, आज है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस, और ये स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है एक जो कि हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, और ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर इस पेशे के प्रभाव को मान्यता देना है, और ये जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें पहुँची है।
1: चंचल, 1953 में अमेरिकी स्वास्थ्य शिक्षा और कल्याण विभाग की जो प्रतिनिधि थी डोरोथी सदरलैंड, उन्होंने नर्स को सम्मानित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का प्रस्ताव रखा। 1965 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद यानी कि ICN इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। हालांकि उस समय ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था। फिर 1974 में फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के साथ 12 मई को इस दिन यानी आज के दिन इस दिवस को मनाने के रूप में चुना गया, जिससे उनकी विरासत और वैश्विक स्तर पर नर्सिंग पेशे का महत्व और भी पुख्ता हो जाता है।
0: भाई, नर्सों का महत्व ये ख़ास तौर पर वो ज़रूर समझते होंगे जब किसी के घर में कुछ ऐसी अवस्था आई हो, जब उनके परिवारजन अस्पताल में भर्ती रहे होंगे, और जब हमें समय नहीं होता कि हम सारा दिन या रात भर अस्पताल में रुक सकें, तो यही परिचारिकाएं होती हैं जो हमारे परिवारजन का और उस रोगी का बड़ी शिद्दत से ध्यान रखती हैं। और इसी बात को लेते हुए हमारे जो श्रोता साथी हैं वो लिख रहे हैं कि 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के अवसर पर नर्सों के निस्वार्थ समर्पण, उनकी कड़ी मेहनत, स्वास्थ्य सेवा में उनके अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए एक समर्पित दिन है।
1: जी, और एक और संदेश है, कहता है कि नर्स चिकित्सा संबंधी विषय है जो मरीज के सेवा भाव के दायित्वों का निर्वहन करते हैं, और आज के दिन ही हर साल की तरह इस साल भी वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। ये दिन नर्सों के हित, परख, शिक्षा और समर्पण को ही समर्पित है।
0: एक अन्य संदेश में यही बात कही गई है कि इस दिन नर्सों को सम्मान देने के लिए दिन मनाया जाता है, और उनका जो अग्रणी योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और अन्य संदेश है जिसमें लिखा गया है कि नर्स के प्रति जो उनका महत्व है, उनकी सेवा का जो भाव है, इस विषय को लेकर जागरूकता के लिए ये दिन मनाया जा रहा है। अगर नर्स ना हो तो जो लोग हॉस्पिटल में अकेले रहते हैं बीमारी में, उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए नर्सों का जो योगदान है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है।
1: जी बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वक्त हो चला है एक संदेश का, एक अंतराल का।

0: अंतराल के बाद आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर आ चुके हैं।
1: बिल्कुल, मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा
0: और मैं दीपा माहेश्वरी
1: और अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: चलिए

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीज़ें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमिडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: भाई देखो चंचल, मौसम कोई भी हो, सुंदरता पे तो किसी भी चीज का कोई जोर नहीं चलता है कि
3: बिल्कुल और भी हर महिला को सजने संवरने का थोड़ा सा शौक तो होता ही है। वैसे आम दिनों में वो ना भी सजें, लेकिन कुछ खास मौका आता है तो थोड़ा सा श्रृंगार तो बनता भी है।
2: बिल्कुल।
3: और आज जिस सफल महिला की हम बात कर रहे हैं, जो एक महिला उद्यमी हैं, वो हैं विनीता सिंह, और इन्होंने शुगर कॉस्मेटिक की संस्थापक हैं, उनकी CEO हैं, और देश विदेश की महत्वाकांक्षी उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत है। हालांकि उनकी असाधारण कहानी, मेकअप की जो जीवंत दुनिया है और ये जो फलता फूलता व्यवसाय है, इसमें तो इनकी प्रसिद्धि बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अपने स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही जो अपनी असाधारण प्रतिभा है उसका प्रदर्शन इन्होंने शुरू कर दिया था।
2: जी, और उनकी इसी असाधारण शैक्षणिक उपलब्धि ने उन्हें प्रतिष्ठित IIT मद्रास में प्रवेश दिलवाया, जहां उन्होंने बैडमिंटन के प्रति अपना जुनून दिखाया और पहचान एक बनाई। फिर कई टूर्नामेंट में वो जाती थी और वहां पे जीत भी उन्होंने हासिल की। बाद में IIM अहमदाबाद में उन्होंने शिक्षा तो की ही, दौड़ में भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया।
3: क्या बात है?
2: और अपने प्रयासों के रूप में कई सारे उन्होंने कठिन मैराथनों को भी पूरा किया था। तो ये जो उनके अंदर प्रतिस्पर्धा वाली जो भावना थी और सीमाओं को पार करने की जो उनकी इच्छा थी, उनके आने वाले दिनों के उद्यमिता गुणों को स्पष्ट दिखाई दे रहा था सभी को कि ये ऐसे तो सीधे सीधे नहीं चलेगी, कुछ तो जरूर करेगी।
3: बिल्कुल, वो सीधे दौड़ लगाएगी और जीत भी हासिल करेगी। और निवेश बैंकिंग में एक बड़े पैकेज के साथ उन्हें एक प्रस्ताव मिला, लेकिन बिजनेस का चुनौती भरा माहौल लगातार उन्हें पुकार रहा था। और उनका जो पहला बिजनेस था, ये एक पृष्ठभूमि जाँच पर आधारित उद्यम था, लेकिन ये जब उन्होंने किया तो उनको लगा कि कुछ खास सफलता नहीं मिली उन्हें।
2: जी, लेकिन यहाँ उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने फिर एक ब्यूटी सब्सक्रिप्शन सेवा की स्थापना की, जिसे कुछ हद तक तो सफलता मिली, लेकिन ये भी जो उनका असली जो जुनून था वहाँ से कहीं कुछ मेल नहीं खा रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कहीं तो कुछ अभी बाकी है।
3: तो ये जो शुरुआत में असफलताएं उनको मिल रही थी, लेकिन ये सब चीज़ें थी ना उनके लिए एक सबक की जैसे रही, जिससे जो भी बाजार किस तरह का होता है या अपनी क्षमताएं किस तरह से उनको बाहर निकालनी चाहिए, ये चीज़ें जानने में उन्हें बड़ी मदद मिली।
2: जी, और बहुत सारे शोध के बाद विनीता ने ये समझा कि जो भारतीय सौंदर्य बाजार है, क्योंकि हम इंडियंस में अलग अलग त्वचा रंग होते हैं और अलग अलग टाइप्स होते हैं स्किन के, त्वचा के, तो उसके पसंद के अनुरूप उत्पादों की यहाँ कमी है, जो कि किफ़ायती भी हो। और फिर बस क्या था, 2000 2015 में उन्होंने अपने अनुभव और एक दृढ़ दृष्टिकोण के साथ विनीता ने अपने पति कौशिक मुखर्जी के साथ मिलकर एक कॉस्मेटिक ब्रांड की शुरुआत की।
3: और ये जो उन्होंने अपना ब्रांड बनाया काफ़ी किफ़ायती दामों पर और बहुत आकर्षक और उच्च गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधन वो लेकर आई, बाजार में उन्होंने पेश किए। और ये जो ब्रांड था ये भारतीय युवा महिलाओं के लिए उनमें बिल्कुल लोकप्रिय हो गया और डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण ने तेज़ी से इसको अपना ग्राहक बना लिया।
2: जी, कंपनी का एक उत्पाद है चंचल, चटक और अलग अलग रंगों का काजल।
3: हाँ,
2: ये बहुत प्रसिद्ध हुआ लड़कियों में खास तौर पे, और देखते देखते शुगर कंपनी की कई उत्पाद ई प्लेटफॉर्म पर प्रसिद्ध होने लगी।
3: और वो ऐसा मानती है कि हर महिला को सुंदर दिखने का पूरा अधिकार है, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार तक सारे सौंदर्य प्रसाधन पहुंच सकने के लिए उनका जो बजट है ना, कई बार वो उनको अलाउ नहीं करता। तो कम बजट में किस तरह से उनको ये सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध करवाए जाए, उनका ब्रांड इसी चीज़ पर काम कर रहा है।
2: और विनीता ने सफल होने के साथ साथ अपनी महिला सशक्तिकरण वाली

0: प्रतिबद्धता का भी ध्यान रखा है। कंपनी में लगभग 75% कर्मचारी महिलाएं ही हैं और उनके नेतृत्व में शुगर कंपनी बदलते रुझान और उपभोक्ताओं की पसंद के अनुरूप लगातार अलग अलग नवाचार करती चली आ रही है।
1: और वनिता ने अपने करियर को एक नया मोड़ तब दिया जब उन्होंने एक भारतीय रियलिटी शो में एक निवेशक और जज के रूप में अपनी भूमिका निभाई और इस तरह से कहते ना कि वो आगे बढ़ती रहीं और अपनी मंजिलों को हासिल करती रहीं और हमारी शुभकामना है कि वो और आगे बढ़ती रहे
0: जी। और वक्त हो चला एक गीत का
1: जी।

0: बहुत सुंदर गीत सुनवाया दीपा तुमने, और मुझे लगता है हमारे जो सुनने वाले हैं ना उन्हें भी ये गाना पसंद आया होगा। और अब हम बात करें कुछ मुहावरों की, कुछ कहावतों की, और हमारे जो सुनने वाले हैं भाई वो भी इस पर बहुत सारे कमेंट हमें लिखकर भेज रहे हैं। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुहावरे हमारे दैनिक जीवन में विनोद भी कराते हैं और मोटिवेशन भी हमें देते हैं। आम बोलचाल की कुछ बातों के बीच मुहावरे जोड़ देने से उस बातचीत में ताजगी आ जाती है, दम आ जाता है। तमाम मुहावरों में 100 सुनार की 1 लोहार की ये हम अक्सर सुनते हैं, जो किसी ना किसी काम में बहुत सारा प्रयास करते असफल सा लगने लगता है, लेकिन धमाके से उस काम के पूरा होने पर इस बात को अक्सर कहा जाता है।
1: बिल्कुल। एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि ये मुहावरा सुनार के गहने बनाने की शैली और हल्की हथौड़ी के सामने लोहार के खेत या अन्य बड़े औजार बनाने भारी वाले भारी भरकम हथौड़े के उपयोग की तुलना की गई है। मतलब कमजोर या छोटे प्रयासों के मुकाबले सटीक और करारा प्रहार अधिक प्रभावशाली होता है और कारगर साबित होता है। अगर कोई काम नहीं करने के 100 बहाने बना ले, लेकिन जब बॉस सामने आते हैं तब सच सामने आ ही जाता है।
0: क्या बात है, बिल्कुल मिलता जुलता एक और संदेश है। 100 सुनार की 1 लोहार की का मतलब होता है कमजोर या छोटे प्रयासों की लंबी श्रृंखला की तुलना में एक शक्तिशाली सटीक प्रयास अधिक प्रभावशाली होता है। ये कहावत गुणवत्ता और मजबूती की मात्रा को बेहतरी से बताती है।
1: जी, और 100 सुनार की 1 लोहार की यह लोकोक्ति मुहावरे हमारे जीवन से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम अक्सर ही बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया करते हैं। उन्हीं में से एक ये मुहावरा अपने प्रयासों के तौर तरीकों के बारे में बताता है कि सुनार आभूषण बनाने के 100 प्रयासों से अच्छा लोहार का 1 लेकिन अति उत्तम महत्वपूर्ण प्रयास सफल हो जाता है। उसके 1 सटीक प्रहार से सामग्री के टुकड़े हो जाया करते हैं। इस दृष्टिकोण से यह लोकोक्ति इस अर्थ में हमें सटीक प्रहार के तौर तरीकों पर एक सीख देती है।
0: क्या बात है। इसी तरह से एक अन्य संदेश है कि ये मुहावरा हमें बताता है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति या कार्य 100 साधारण लोगों या कार्यों से अधिक श्रेष्ठ होता है। जीवन में हमें अपनी ऊर्जा को बखेरने की बजाय उसे केंद्रित करके बड़ा परिणाम लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बारे में कुछ कहानियां भी प्रचलित हैं, और एक प्रसंग इस तरह से भी कुछ आता है कि महाभारत के समय जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध चल रहा था तो सारे कौरव मिलकर पांडवों को पछाड़ रहे थे, और तब भीम ने अपनी गदा उठाई और एक ही साथ बहुत सारे कौरव यानी कि जो 100 कौरव थे उनको धाराशायी कर दिया, और 100 कौरवों के बराबर शक्ति भीम के पास अकेले ही थी। इसलिए उस समय से इस मुहावरे को प्रयोग में लाया जाने लगा, कहा जाने लगा कि 100 सुनार की 1 लोहार की। इसी तरह से कुछ कथाएं भी इसको लेकर प्रचलित हैं।
1: तो गीत सुने अबे
0: जी।

0: दीपा, याद है गर्मियों की छुट्टियों के दिन?
1: बिल्कुल याद है। और देखो ना, नानी के घर जाते थे, खूब सारे आम खाते थे, और शाम को फिर हमारे नाना जी लेके जाते थे हमें गार्डन।
0: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। मुझे याद है जब हम गर्मियों की छुट्टियों में ददिहाल जाया करते थे। हमारे पिताजी के चार भाई थे, जो कि सब उस वक्त वहाँ जमा हो जाया करते थे, और कुल मिलाकर हम 15 बच्चे थे, जो कि अलग ही मज़ा आता था। हमारी चाचियाँ और मम्मी सब मिलकर रसोई संभालते थे। हम सब बच्चे दादी के ही साथ हमारा आना जाना होता था। हमारा बगीचा भी बहुत बड़ा है, जिसमें दादाजी ने बहुत बड़े बड़े फलदार पेड़ लगा रखे हैं। और अब तो ये सिर्फ यादें ही रह गई हैं, क्योंकि सब भाई बहन बड़े हो गए और सब अपने अपने काम में लग गए हैं। तो सच बात है, ये जो बचपन के दिन हो जाते होते हैं ना, ये यादें बनकर रह जाते हैं। और जो नानी दादी के घर जाने के, या बुआ मौसी के घर जाने के, और वहाँ इकट्ठे होकर खूब हंगामा करने के, मस्ती करने के, यादें बनाने के जो दिन थे ना, वो अब हमारी खूबसूरत यादों में हैं, सिर्फ एल्बम्स में वो दिन हमारे पास रह गए हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही चंचल। देखो, एक संदेश ये कहता है कि गर्मियों में आना जाना तो लगा ही रहता है बच्चों और परिवार का, कोई नानी के घर, कोई दादी के घर। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही कही आप लोगों ने कि जो मेहमान होते हैं उनको भी हाथ बटाना चाहिए। इतनी गर्मी होती है, अगर वो लोग हाथ नहीं बटाएंगे तो एक बड़े काम का बोझ आ जाएगा। तो बिल्कुल सही कहा आप, अगर जा रहे हैं किसी के घर तो हाथ ज़रूर बटाइए।
0: इसके अलावा बच्चों को भी थोड़ा सा हम व्यस्त रख सकते हैं, उन्हें बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, क्योंकि दोपहर में वो यहाँ वहाँ ना भटकें, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है, गर्मी बहुत तेज़ होती है। और जब हम बच्चों को कहते हैं ना कि दोपहर में थोड़ा सो जाओ, तो वो सोना भी पसंद नहीं करते। तो उन्हें कोई एक्टिविटी करने के लिए आप दे सकते हैं, कुछ भी उन्हें मतलब कशीदाकारी करने को दे दीजिए, उनको सिलाई कढ़ाई सिखा सकते हैं उस समय
1: वो भी। और अगर वो बैठना नहीं चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं चंचल, कि आप वो कहते हैं ना इंडोर ट्रेजर हंट, हाँ। जब उनको ऐसे बड़े बड़े से नाम बता दो ना, तो बच्चे एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ भी एक चीज़ को आप छुपा दीजिए कहीं, हाँ। और फिर उनको बोलना है कि अगले आधे घंटे में हमें ये चीज़ ढूंढ कर देनी है, तो सच में उन्हें इतना मज़ा आता है, सारे के सारे लग जाते हैं। हाँ, छुपाना ऐसी जगह है जहाँ उन्हें तुरंत उनके हाथ में ना वो आए।
0: और घर में अगर कोई ऐसा हो जिसे किससे कहानियाँ सुनाना बड़े मज़े से आता हो, तो बच्चे उसे घेरे बैठे रहते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे एक मामा थे, जो कोई मतलब पौराणिक कहानियाँ नहीं होती थी, बस वो मनगढ़ंत वो कहानी बनाए सुनाए जाते थे हमें, और वो कहानियाँ उनकी चार चार दिन, पाँच पाँच दिन ख़त्म ही नहीं होती थी। हम इंतज़ार करते थे कि ये इसके आगे क्या हुआ होगा, और वो मन से कुछ भी जोड़कर वो कहानी बनाकर सुनाते थे। तो इस तरह से बच्चों को आप व्यस्त रख सकते हैं। और या फिर जब महिलाएँ किचन में काम कर रही होती हैं, तो कोई छोटे मोटे काम बच्चों को दीजिए, तो उन्हें घर में काम में हाथ कैसे बटाया जाता है इसकी आदत भी होगी।
1: वो जो पुरानी छुरी जो होती है ना घर में, पुरानी छुरी जिसमें ज़्यादा तेज़ धार नहीं होती, वो हम उनको दे सकते हैं। उनको भिंडी काटने के लिए दीजिए, आलू काटने के लिए दीजिए, बहुत मज़ा आता है उनको। वो आड़े टेढ़े तिरछे तरीके से काटते हैं, लेकिन जब हम उनको बना के उनको बताते हैं ना, देखो ये आपकी कटी हुई सब्जी है, तो बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, हमने काटी, वो सब बताते हैं, ये वाले देखो, ये वाला शेप का मेरा है, ये उसका है, इस तरह से बड़े खेल खेलते हैं वो लोग।
0: आप छत का छिड़काव करने को उन्हें कहिए, आंगन में काम करने कहिए, कूलर में पानी भरने को कहिए, तो छोटे मोटे काम बता सकते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ हरियाणा में 1 जून से बच्चों की छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं, और इन छुट्टियों का हमें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है, क्योंकि हमें जाना होता है अपने नाना और मामा के घर पर।
1: हाँ बिल्कुल। और एक और संदेश कह रहा है कि भाई बच्चों की छुट्टियों में तो सच में हम सब माताओं पर तो बड़े भारी पड़ जाते हैं ये दिन। और अभी हमारे बच्चों की छुट्टियां शुरू नहीं हुई हैं, मई के अंत में होने वाली है। रसोई और गर्मी का दोनों का जो है ये जुड़ाव बिल्कुल ऐसा है, उससे तो हम अलग कर ही नहीं सकते, और हम सभी महिलाओं को इसकी कुछ ज़्यादा ही हमें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ये लगता है कि गर्मी से हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप बेशक बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बच्चों को बना के खिलाती होंगी। और ऐसे ही अगर सब महिलाएं सोचने लगें तो फिर क्या ही बात है। तो देखो, उनके बच्चों के जो आप बात कर रही थी ना, कि बच्चों से आप कुछ उनसे खाने की तैयारी करा सकते हैं, किचन गार्डन भी लगवा सकते हैं।
0: हाँ,
1: उनके हाथ की उगी हुई जब चीज़ें होंगी ना, तो वो भी बड़े चाव से देखते हैं कि कैसे बड़ा हो रहा है।
0: इसी तरह से वो पौधों का संरक्षण करना भी सीख जाएंगे, जब वो खुद पौधा लगाएंगे तो उसे किस तरह से बचाना है, वो बढ़ते हुए हर दिन देखेंगे उसको, तो उन्हें भी एक अलग आनंद का अनुभव होगा। और गानों में भी कहीं ना कहीं आनंद होता है, तो सुन ले गाना।
1: चलिए।

0: कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा और बस इतना ही समय है कि सखियों से ले लें हम इजाजत।
1: आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
0: चंचल वर्मा का नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं, मैं उनका परिचय कराती हूँ, लेकिन उनके बारे में मैं ये कहूँगी कि वो फिल्म लाइन में स्क्रीन पर एक बहुत ही बुरे इंसान हैं, बहुत बहुत बुरे इंसान हैं। लेकिन देखिए कितनी खुशनुमा हंसी है उनकी। मेरे सामने बैठे हैं, बहुत ही उम्दा इंसान हैं, और उनका नाम है सदाशिव अमरापुरकर। सदाशिव जी, मैं खुद अपनी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से और विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की तरफ से आपका यहाँ स्टूडियो में स्वागत करती हूँ, और उन सब की तरफ से आपको कहती हूँ कि नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार।
0: और अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
1: अच्छा।
0: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी, अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
1: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
0: तो आप अपनी बचपन की ही याद ताज़ा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
1: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर
0: जी,
1: ना वो शहर है ना वो देहात था। तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ, और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे, लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारे पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे, लेकिन शिक्षा ज़रूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था, तो 40-50% हमें मार्क्स मिलते थे, और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में,
0: शरारतों में,
1: हर चीज़ में गुजारते थे। और हर मौसम का मज़ा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियाँ खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
0: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
1: सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, तो छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहाँ लिया, और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई थी। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है, और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ, और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा ये इंसान, ये आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे, तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी, उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं, और ये एक बड़ा अच्छा

0: संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है।
1: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द गिर्द जाते रहे हैं।
0: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की। वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है, लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांद बीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांद बीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है
1: जी।
0: और क्रिएटिव है
1: जी।
0: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
1: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
0: जी,
1: है ना सदाशिव जी। इसी बात पे आपकी पसंद का कोई ये गीत हम क्यों ना सुन लें।
0: जी जी जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
1: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये। हाँ
0: और उसके बोल है मेरे दिल में है एक बात।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई, और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो हमारा वर्ग है उनको लेकर, कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले। और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
1: और जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
0: जी।
1: आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे। और इसकी कॉम्पिटिशन थी और उस ज़माने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
0: जी।
1: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
0: उस समय।
1: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
0: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
1: नहीं। नाटक करता रहा
0: जी,
1: धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आईं, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
0: जी।
1: हम मतलब हवा में दौड़ते थे
0: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे।
1: जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफ़ी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
0: जी।
1: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी हैं सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी
0: जी।
1: प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग
0: थे। तो वो पलट के नहीं देखती थी?
1: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया
0: जी।
1: हमारे अंदर हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी।
0: तो आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
1: जी।

0: चलिया।
1: लेकिन आप आगे ये बताइए ना कि थिएटर की जो बात है वो वहां से आपकी शुरुआत हो गई
2: जी।
1: और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुखबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
2: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूँगा, प्रोफेसर बनूँगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूँगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था, इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
1: जी।
2: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम

0: काम था तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो मैं, मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूँ तुम्हें? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो ये पीडीएम में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे ख़त्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए और थिएटर करने लगा। तो फिर उसके बाद उसी वक्त 1 साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली।
1: वाह।
0: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
1: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है।
0: जी, और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
1: आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
0: नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
1: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर।
0: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी नए होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे,
1: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे जी, होता है हेलो फरमाइश।
0: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाए किसी होटल में, चाय पीने जाए, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो ले।
1: लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी।
0: जी छोड़ दी, और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
1: पुरानी
0: बहुत पुरानी, गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
1: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत बहुत अच्छा लगा?
0: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
1: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा।
0: जी।
1: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे।
0: जी जी, जी।

0: पूना पहुंच गए, पूना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, लेकिन पूना से बंबई की तरफ कब आए और कैसे आना हुआ था?
1: नहीं, पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कॉम्पिटिशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्न विकाई चेत। वो नाटक उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को। और नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक जो परीक्षक थे उनका नाम था भिकुपई आंगले, उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, आज भी हैं
0: जी,
1: उन्होंने कहा कि आप आइए। और मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं, सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूँगा लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपके एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिकुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी उनका नाम शांताबाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है।
0: उन्होंने मेरी अनंत जोक कर रहे हैं
1: जी, जी, उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, बड़ा नर्वस हुआ। फिर दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया,
0: बोले उसी रोल के लिए
1: नहीं,
0: हाँ।
1: हमारे पास एक नाटक है, जयवंत दळवी ने लिखा है, नाम है बैरिस्टर,
0: वाह, हाँ।
1: विजया मेहता जी डायरेक्ट करने वाली है, आप अच्छे एक्टर हो तो चलो हम विजया जी के पास जाते हैं। मुझे उनके घर ले गए लेकिन वो मिली नहीं, फिर दूसरे दिन हमको गोवा हिंदू एसोसिएशन के ऑफिस में मिली और उन्होंने मुझे कह दिया कि देखो सदाशिव, मैंने इस रोल के लिए पहले ही चुन लिया है एक्टर को और विक्रम गोखले वो काम करने वाला है, तो इस बार हम कुछ नहीं कर सकते हम। फिर मैं वापस आया और दो अच्छे नाटक मेरे हाथ से चले गए, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी, दिल में एक आवाज़ बज रही थी, आँखों में एक सपना था कि कुछ कोई बात नहीं और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फ़ोन मुझे

0: दूरवांची जोड़ी एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आइए।
1: जी,
0: मैं तीसरी बार बम्बई आया, तीसरी बार मुंबई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया था।
1: अरे वाह।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में मेहमान सितारे हैं जाने माने फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने,
0: और नीचे छोटी छोटी दुकानें थी और वहां गाने बज रहे थे, आपके बरस भेज बंदिनी का गाना जो आज भी मुझे याद है।
1: अच्छा, इसे सुनेंगे हम अभी?
0: जी
1: जरूर सुनेंगे।

0: उसके बाद मैं ऊपर गया, दारवकर जी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बिठाया, वो बातें करने लगे और वो उनसे कहने लगे कि मैंने जो आपको कहा था वो नगर में रहता है वो आदमी सदाशिव, उनको लेकर आओ ना, आप किसी इन जवान लड़के को लाएंगे तो कैसा होगा, वो तो प्रोफेसर का रोल है। तो उन्होंने कहा कि सर ये वही है सदाशिव अमरा प्रकर जी। तो वो दो मिनट तक मुझे घूरते रहे, बोले आपने वो मास्टर का रोल किया था उस नाटक में और आप तो बूढ़े लग रहे थे उसमें और आप तो इतने जवान हैं, ये कैसे हुआ। तो मैंने मन में कहा ये दाद है या क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं वही हूँ। अरे बाप रे, फिर उन्होंने जो मेरी तारीफ की है बहुत तारीफ की। फिर मुझे कहा कि आप ही इस रोल के लिए फिट हैं, बराबर हैं, आप ये स्क्रिप्ट, उस वक्त वो परदेशी थे उनका ही वो स्क्रिप्ट था, अभी मुझे उस नाटक का नाम याद नहीं आ रहा है, हाँ मैंने मुझे याद आया सत्यम शिवम सुंदरम
1: जी।
0: और मैं स्क्रिप्ट लेकर घर आया, गावाया, याद करने लगा, प्रोफेसर के डायलॉग याद करने लगा। एक महीने के बाद मुहूर्त पे मैं वापस गया तो दारवेकर जी मुझे देखकर कहने लगे आइए आइए बैठिए, लेकिन इस वक्त वो मेरे से बात करने से झिझक रहे थे। लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि देखो भाई हमने आपको वो रोल तो दिया था, लेकिन अभी भी एक सीनियर प्रोफेसर कमलाकर सोनटक के जो औरंगाबाद से वो जो है उनकी एक्टिंग की स्कूल है वहाँ से इस्तीफा देकर आए हैं और वो अब ये रोल करेंगे। अब ये तीसरी बात जब मेरे साथ हादसा हुआ तो मैंने कहा देखो भाई, उसके पहले घर में मेरी हमेशा पिताजी से झगड़े चलते थे, बोलते थे ये नाटक नाटक छोड़ दे, ये अपना लाइफ नहीं है। और मैं कहता था नहीं मुझे नाटक ही करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ।
1: तो आप करते भी नहीं थे उस समय कुछ?
0: कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि नाटक के अलावा मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इस बार जब फाइनली मुझे पिताजी ने बुलाया तो पिताजी को मैं मिलने गया तो पिताजी ने कहा अगर तेरे जीवन में यही ट्रेजेडी लिखी है तो जाओ करो। और मैं आया था, बैग भरकर आया था, रिहर्सल करने आया था, दोबारा मैं नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? बोले क्या करे, उनका नाम बड़ा है, ये है वो है, उनको लेते हैं। मैंने कहा नहीं, इसमें कोई और रोल हो तो मुझे दे दो। और मैं उसमें एक डबल रोल करता था, एक गुंडे का रोल करता था एक और एक लड़के का रोल करता था, वो दो रोल मैंने। और इस तरह मेरी व्यावसायिक नाटक में पहली बार एंट्री हुई
1: जी।
0: उसके बाद मैंने केंकरे जी के साथ काम किया और मेरे हाथ में एक नाटक था, मेरे दोस्त ने लिखा हुआ यात्रिक, वो यात्रिक नाटक मैं छबिलदास में करना चाहता था और इसी वजह से मेरी INT इंडियन नेशनल थिएटर में पहचान हुई और उनकी तरफ से मैंने पहली बार डायरेक्शन की यात्रिक की
1: जी।
0: उसके बाद मैंने छिन्न नाटक किया जिसमें स्मिता पाटिल ने काम किया था, आशा लता ने काम किया था और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया। तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए हैं, हैंड्सअप नाटक किया और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्ध सत्य
1: जी।
0: और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई, वो मेरा हैंड्सअप नाटक देखने आए और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, 3 दिन का काम है, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी,
1: अर्ध सत्य का रामा शेट्टी।
0: और मैं नर्वस हो गया, मैंने कहा क्या यार इतनी बढ़िया एक्टिंग मैंने की इंस्पेक्टर की और ये कौन से शेट्टी फिट्टी का रोल दे रहे हैं, ढाई तीन सीन का है, हमें पसंद नहीं यार। तेंदुलकर जी को पूछा मैंने, कहा ये क्या रोल है, बोले छोटा है अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, दो ढाई सीन थे लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था
1: जी।
0: और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था। मैंने कहा चलो एक एक्सपीरियंस होगा। दो ढाई दिन काम किया, उसको भूल गया, मेरा नाटक चलता था।
1: भूल भी गया
0: क्योंकि बाद में 6 महीने में मैं भूल गया कि मैंने किसी फिल्म में काम भी किया।
1: क्योंकि आपके अर्धसत्य के रामा शेट्टी को लोग आज भी याद करते हैं
0: जी, जी।
1: और मैं तो कहूं कि एक विलन के लिए एक नया चेहरा आपने उस समय दिया और कुछ विलन की तरफ देखने का लोगों का नजरिया भी उसी भूमिका से बदल गया और आप भूल गए।
0: जी मैं सचमुच मैं भूल गया क्योंकि मैं इतना नाटक में व्यस्त था कि मुझे मालूम भी नहीं था। और उसके बाद मैं नाटक खत्म हुए, मैं कुछ काम के लिए गांव गया और उस वक्त मुझे वहां पे फोन आया कि आपका पिक्चर का प्रीमियर है, आप आइए, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने पिताजी को कहा कि मेरे प्रीमियर शो है, मैंने एक फिल्म में काम किया है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, अच्छा अभी फिल्म भी करने लगे, वहाँ भी नाचने लगे, कमर हिलाने लगे। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है, अच्छा रोल है। नहीं नहीं बोले अभी इधर ही रहो, उधर जाने की ज़रूरत नहीं, अभी कोई आपका मतलब नाटक बिटक नहीं है। मैं वहीं रह गया,
1: प्रीमियर में नहीं गया,
0: प्रीमियर में नहीं जा सका। बात यह हुई कि बड़ा अफसोस लगता था और उदासी छाई हुई थी। और उस वक्त मैंने फिर गुरुदत्त की एक फिल्म देखी, कागज़ के फूल, और उसमें का वो जो गाना है वो मुझे आज भी बहुत याद आता है।

0: वाकई रामा शेट्टी को लोग नहीं भूल पाए हैं आज भी। और उसके बाद जो है आपकी कई फिल्में आई, जैसे आखिरी रास्ता में जो आपने पॉलिटिशियन चतुर्वेदी का रोल किया, वो भी मुझे वो पूरा सीन ऐसा देख के लगता था कि अभी जाके इस आदमी का गला घूम दूं, ये जयाप्रदा कुछ नहीं कर पा रही है, हम जाके कुछ इसका कर डालें। और मैं समझती हूँ कि यही आपका सक्सेस है, यही एक बहुत बड़ा।
1: उस फिल्म में एक बहुत मजा हुई थी कि अमिताभ बच्चन जी उसमें थे, जयप्रदा थी, श्रीदेवी थी, और उसके डायरेक्टर थे के भाग्य राजा, जो वहाँ के बहुत बड़े डायरेक्टर और एक्टर भी थे, हीरो भी हैं। और उनको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी तो कैसे, मतलब उनसे बातचीत कैसे करें। अमित जी को तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी उस वक्त, और वो जब भी जो भी करना समझाना चाहते थे वो थ्रू एक्टिंग ही समझा सकते थे
0: जी।
1: तो उनके बाजू में एक हिंदी और तेलुगु जानने वाला आदमी था, मतलब तमिल जानने वाला, और वो उनको बताते थे, फिर ये हिंदी में हमें बताता था, और बीच में वो फिर एक्टिंग करते थे। तो वो जो सीन है जो उनके ऊपर मैं रेप के बारे में बात करता हूँ, वो सीन जब मैंने किया तो उन्होंने मुझे एक्टिंग करके बताया कि मुझे इस तरह चाहिए, और वो एक एक्टिंग की लैंग्वेज भी होती है ना, तो वो मैं समझ गया
0: जी।
1: और फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल रहे
0: जी।
1: तो एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस था, और फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई, अच्छा हुआ
0: जी।
1: काफी वैरायटी फिल्में कर रहा हूँ।
0: ये जो विलन बनना और एक साथ कॉमेडियन भी बन जाना, ये आप कैसा कर पाते हैं? कहीं पे मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि जैसे आपके प्रोड्यूसर्स या निर्माता जो आपके पास अपना रोल वो भेजते थे, तो वो विलन का रोल रहता था, वो उसमें बदलाव नहीं आया, तो लगातार वही काम करते करते करते करते जब कॉमेडियन का रोल करने को मिल गया, तो उस चीज़ से निकल के, उस शय से निकल के इस शय में अपने आप को ढालना, वो आपने कैसे कर लिया?
1: नहीं, मैं एक्टर हूँ, और जो भी रोल मेरे सामने आता है उसे लगन और निष्ठा से निभाना मेरा काम है, इसीलिए तो मेरे हर कैरेक्टर को गालियां मिलती हैं, लेकिन हमें तालियां मिलती हैं।
0: तो उम्र एक अलग चीज़ है जो व्यक्ति की होती है, और फिल्म की जो अदा है, जो भूमिका है, जो रोल है, उसकी एक अलग उम्र होती है। मतलब हर उम्र में कलाकार को अपने आप को ढाल लेना पड़ता है, तो कुछ उसके बारे में बताइए ना कि बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा था कि आप तो बहुत बूढ़े थे और आप तो हो जवान बिल्कुल, ऐसी कोई किसी भूमिका के बारे में जिसमें आपको लगता है कि बिल्कुल अलग मैं कुछ ये कर रहा हूँ?
1: हाँ, वैसी एक भूमिका मैंने सड़क में की थी
0: जी,
1: महारानी की, युनक की। वो भूमिका जब मेरे पास आई, उसके निर्देशक थे महेश भट्ट, और बड़े मुझे रोल तो दिया उन्होंने, लेकिन घबराए हुए थे कि इस तरह का यूनिक का विलन का रोल लोगों को अच्छा लगना,
0: महारानी
1: का रोल बहुत ज़रूरी है, और अच्छे लगने के साथ साथ उसकी एक दहशत पैदा करना, क्योंकि आज तक फिल्मों में जितने भी यूनिक के रोल हुए हैं वो कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये रोल लोगों के दिल में दहशत पैदा करे, ऐसा होना चाहिए
0: जी।
1: और उसके लिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, और रोल सुनकर मैंने कहा मैं ये करता हूँ। बोले आपको जरा भी हिचक नहीं हुई हाँ कहने में? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आप ये कर पाएंगे? मैंने कहा जरूर करूँगा। कैसे करेंगे? मैंने कहा वो आप मुझ पर छोड़िए, इसके लिए क्या करेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, वो भी मुझ पर छोड़िए। और मुझे सोचने में जरा थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने एक प्ले किया था, उसमें किंचित गंधर्व का रोल था, वो मैंने किया था कॉलेज में, इसलिए उसके एक्टिंग की मुझे चिंता नहीं थी। मुझे चिंता थी कि इस कैरेक्टर की दहशत कैसे मैं पैदा करूं
0: जी।
1: और जब हमने पहला सीन जिस दिन किया, उस दिन भट्ट साहब बहुत खुश हुए, और उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये लड़का अच्छा काम करेगा, और उसी का फल मिला मुझे। उस रोल की काफ़ी तारीफ हुई, पिक्चर भी बहुत चली, और उसमें काफ़ी अवार्ड्स भी मुझे मिले
0: जी। जी
1: तो ये करते वक्त मुझे बड़ा मजा आया। एक उसमें सीन हम करते थे तो मैंने कहा एक सीन इसका साड़ी में होना बहुत जरूरी है कि वो साड़ी पहनकर बात करता है। तो बोले जरूर करेंगे, आप बोलो कैसे करना है। वो छोड़ देते थे और ये उनका छोड़ना बड़ा अच्छा था,
0: मुझे ऐसा लगता है कि
1: प्रोत्साहित करना था।
0: हाँ, कलाकार के साथ साथ जो आपने निर्देशन का इतना सारा काम किया
1: जी,
0: वो ही आपका इसमें
1: जी
0: हुनर।
1: हाँ, तो उस वक्त मैंने किया और बाद में लोगों ने पूछा मुझे कि आपने ये रोल करते वक्त क्या स्टडी किया, कहाँ किसको देखा, क्या देखा क्या नहीं देखा। तब मुझे याद आया कि मैंने वो प्ले किया था, वो एक्टिंग मेरे पास थी। और एक ज़माने में मैं जब गया था मेरे दोस्त के साथ किसी काम के लिए, तो वहाँ एक फ़ोटो लगी हुई थी साड़ी में किसी औरत की, और उन्होंने कहा नहीं ये औरत नहीं ये मर्द है। लेकिन कभी कभी वो साड़ी पहनकर ऐसे बैठते हैं और उनको शौक है साड़ी पहनकर फ़ोटो निकालने की। तो वो मैंने फ़ोटो देखी थी, वो मेरे दिमाग में थी। वो जो यादगार हैं, वो यादगारें हमें काम आती है
0: जी,
1: वो बहुत बढ़िया होती है
0: जी।
1: जब आदमी एक्टिंग करता है तो यादें सामने आ जाती है कि भाई देखो ये है ये है ये है
0: जी।
1: वही तो हमारी मतलब जिसको हम कहेंगे कि जीवन का अनुभव, जिसको लोग कहते हैं, मैं तो यादगारें कहता हूँ, वही बहुत संपन्न करती है हमें और वही हमसे एक्टिंग करवाती है
0: जी।
1: ऐसे कुछ डायलॉग थे उसमें, डर मत मेरी जान डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, जानती हूं क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूं और आधी औरत। देख ना ये किस्मत का खेल तो देख, कुछ नहीं मेरे पास है ना, तो वो सिर्फ दिमाग। हाँ कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए औरतों का धंधा करती हूं और मर्दों की सेवा। इस जिस्म के बाजार का महाराजा और नाम महारानी।
0: वाह वाह वाह। लेकिन इसके अलावा आप और क्या क्या, मतलब आपकी हॉबीज क्या हैं, आप क्या करना और पसंद करते हैं या खाली समय में और क्या करते हैं?
1: खाली समय में मैं किताबें पढ़ता हूं, फोटोग्राफी करता हूं, दोस्तों से बातचीत करता हूँ। पुराने शिल्प मुझे बहुत पसंद है, मैं मंदिर में जाता हूँ किसी पुराने, तो ज़रूर वो मंदिर देखना चाहता हूँ और उसी लिए मंदिर जाता हूँ। टीवी देखना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी देखता हूँ, कभी कभी बीबीसी भी सुनता हूँ। और आप यकीन नहीं करोगी, मैं ऑल इंडिया रेडियो सुनना बहुत पसंद करता हूँ।
0: वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही उम्दा बात कही है आपने जी। आपने कभी लिखा है जो आप ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ, उनको अपनी भूमिकाओं में ढाल लेता हूँ, तो क्या आपके मन का कभी ये रुझान नहीं हुआ कि कुछ लिखें भी?
1: नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन एक हादसा ज़रूर हुआ था कि अपने मराठी थिएटर के बहुत बड़े राइटर विवा शिरवाड़कर, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, आज वो नहीं है, मैं और डॉक्टर लागू एक दो बार डॉक्टर लागू के संग में उनके पास गया था और बातें हो रही थी और सोशल वर्क कमिटमेंट की बातें हो रही थी। तो मैंने कहा ये बातें करने से क्या होगा, अगर करना है तो चलो जीवन के कुछ साल निकालो दे दो उनको, काम करते हैं। तो शिरवाड़कर जी ने मेरी तरफ कहा, देखा और कहा कि देखो कि समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि बाहर निकलो और समाज का काम करो, हर आदमी अपना काम सिंसियरली करे तो भी वो एक समाज सेवा है
0: जी।
1: तुम तुम्हारे माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते हो। उस वक्त समझ में नहीं आई बात, कुछ साल बाद एक स्क्रिप्ट मिला फिल्म का, वो हेलन केलर के ऊपर था। मैंने वो फिल्म पढ़ी और मैं बड़ा खुश हुआ कि एक आंधी गूंगी बहरी लड़की को कैसे सिखाया 100 साल पहले। तो मैं वो स्क्रिप्ट लेकर गया शिरवाड़कर जी के पास और कहा कि इसके ऊपर मुझे नाटक लिख के दो, मैं ये नाटक करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं इंग्लिश ना फिल्म के ऊपर इस तरह नाटक मैं नहीं लिख सकता, आप किसी और से लिखो। तो मैं गया, फिर वापस बैठा, फिर कुछ सीन तैयार किए, कुछ ढांचा तैयार किया, फिर उनके पास आया। तो उन्होंने कहा ये आपने कुछ किया है लेकिन ये मैं विजुअल नहीं कर सकता हूँ उसको, तो आप ऐसा करो इसके कुछ डायलॉग्स भी लिखो, संवाद लिखो और फिर मेरे पास आओ। फिर मैं गया, फिर कुछ संवाद लिखे, फिर लेकर आया और उनके सामने रखा। हाँ बोले अभी ठीक है, तुम ये रख के जाओ। और उसके बाद उन्होंने 10 दिन में उसमें कुछ संवाद लिखे, जहाँ मैंने संवाद लिखे थे उनको अच्छे लगे थे वो वैसे के वैसे रखे, और इस तरह हम दोनों ने मिलकर एक की मायागार नाम का नाटक लिखा।
0: एक की मायागार ही हो गई जैसे।
1: जी जी।
0: और वो बहुत उसका नाम भी हुआ।

0: आप विविध भारती की तरफ दोबारा जरूर आइएगा, आपसे बात करने का एक मौका हमें जरूर दीजिएगा। और सारे श्रोताओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ, आगे चाहती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर से कांचन प्रकाश संगीत की बातचीत सुन रहे थे।
3: सेल्यूलॉइड के सितारे।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती कार्यक्रम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 5 है। ये गणेशपुर, दलदली, मदन नगर, धर्मपुर, गौरा, भरदा, सिंघरा, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 23 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनकपुर, लुर्गी, टकिया, मेंढारी, प्रेमनगर, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 16 है। ये लक्ष्मणगढ़, जगन्नाथपुर, सायर, सस्कालो, मुड़ापारा, सुखरी भंडार, कंडराजा, बैडांड, दातीढाब, घटगांव, उरंगा, बरिमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ा माचा, राजा आमा, महेशपुर, कुकुरगांव, कुदराझरिया, साजा पानी, तीता पाकेर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बाकारुमा, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 136 है। ये गिरसा, पोटिया, आमगांव, रुपुंगा, तेजपुर, बेहरामार, बनहर, औरानारा, कूड़ेकेला, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, मुकुआ, जुनवानी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 5 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वनमंडल के गोमरडा अभयारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये खम्हारपाली, पथरीपाली, दबगांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी, पकरीत, ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और तौरेंगा में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराझड़, डडईपानी, नगरार, खोलापारा, जिडार, छिंदौला, तौरेंगा, कावारामा, डूमर घाट, कोदोमाली, कोनारी, लूठा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गाँव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

0: हाथी हमर गोट FM 107 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या की 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले सुनिए हमारे केंद्र से आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोता थोड़ी देर बाद सुनिएगा नाटिका, लेखक हरि मेहरा, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर, कलाकार हैं विजय मोहन, गिरिराज भट्ट, सविता बजाज, माया इसरानी व ब्रजभूषण। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगी संध्या 5:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा हेल्दी प्लांट हेल्दी प्लेनेट, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। साथ ही साथ एक ही कलाकार मजरूह सुल्तानपुरी गीतकार के लिखे हुए गीत का आनंद लेंगे आप। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार संध्या 6:00 और 6:10 पर सुनिएगा छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनिएगा संध्या 6:20 पर, प्रादेशिक समाचार 6:45 पर रिले होगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कार्यक्रम फिल्म संगीत के समय होगा संध्या 7:00। कृषक बंधुओं का कार्यक्रम किसानवाड़ी के समय होगा संध्या 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा कृषि यंत्रों का सही इस्तेमाल एवं देखभाल से उम्र बढ़ाएं। आज की नसीहत में नींबू में लगने वाले प्रमुख कीट व उनका नियंत्रण। इसके प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव, आज का मौसम। कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत सुनिएगा रात्रि 8:20 पर, कार्यक्रम फिल्म संगीत 8:30 पर, समाचार संध्या 8:45 पर, विविध भारती कार्यक्रम रात्रि 9:00, कार्यक्रम विविध संगीत रात्रि 10:00, पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें 10:30 पर हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे रात्रि 11:00 और 11:05 पर सुनिएगा अंग्रेजी में समाचार। ये थे हमारे केंद्र से आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही।
1: आकाशवाणी @90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: FM 107 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र, संध्या के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है नाटिका सेंट की बोतल, लेखक हैं हरि मेहरा, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर, कलाकार हैं ब्रिजेंद्र मोहन, गिरिराज भट्ट, सविता बजाज, माया इसरानी व ब्रजभूषण।

0: दिल बना रहा हूँ, ये लीजिए।
1: ये क्या? अजी साहब, मैंने तो सिर्फ 1 सेंट की शीशी ली है 30 रुपए की, और आपने शायद सारी दुकान का माल इसमें लिख दिया है।
2: मेरा बिल तैयार है।
0: ओह, तो मैडम ये सब सामान आपका है। माफ कीजिए साहब, भूल से आपकी सेंट मैंने मैडम के बिल में लिख दी।
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये लीजिए पैसे, बिल बनाते रहिएगा।
0: एक मिनट साहब, एक मिनट।
1: क्या?
0: ये लीजिए आपका बिल, पैकेट डिलीवरी काउंटर से मिलेगा।
1: व्हाट नॉनसेंस। लाओ भाई ये पैकेट जल्दी से दे दो मुझे।
2: ये मेरा पैकेट है, जरा अच्छी तरह रैप कर दे।
0: यस मैडम।
1: ये क्या बदतमीजी है, आप ना हक मेरा वक्त एक छोटे से पैकेट के लिए जाया कर रहे हैं।
0: गुस्सा ना हो साहब, आपका पैकेट गिफ्ट रैप हो रहा है।
2: सब सामान चेक कर लिया है ना?
0: यस मैडम।
1: व्हाट नॉनसेंस।

0: Taxi! Taxi!
1: Taxi! Taxi!
0: Taxi!
1: Taxi! ए मिस्टर, कहाँ घुस रहे हैं आप? ये टैक्सी मैंने रोकी है।
2: हाँ तो पहले मैंने दिया था मैडम।
1: जी नहीं, ये टैक्सी पहले मैंने देखी थी।
2: हो सकता है देखी आपने हो पहले, पर बुलाई तो पहले मैंने थी। चलिए ड्राइवर से ही पूछ लेते हैं। मैंने कहा सरदार जी,
3: आओ जी,
2: टैक्सी किसने रोकी थी?
3: रोकी तो उसी से।
1: पर बुलाई तो मैंने थी, क्यों?
3: जी हमने दोनों के हाथ साथ देखे, हमने समझा दोनों इकट्ठे हैं।
2: मैडम देखिए, आप दूसरी टैक्सी ले लें प्लीज।
1: आप ही क्यों नहीं ले लेते?
2: प्लीज मैडम, आज हमारी मेरा मतलब है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। मुझे 6 बजे घर पहुंचना था और 6 यहीं बज रहे हैं।
1: ओह दैट्स योर प्रॉब्लम।
2: आप नहीं समझेंगी, अगर और देर हो गई तो क्या हो जाएगा।
1: बीवी तलाक दे देगी। अच्छा आपको जाना कहाँ है?
2: महालक्ष्मी
1: मंदिर।
2: जी नहीं,
1: रेस कोर्स।
2: बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब है महालक्ष्मी मंदिर के पास।
1: मुझे हाजी अली जाना है। ठीक है, दोनों शेयर कर लेते हैं। चलिए बैठिए।
2: पहले आप।
1: पहले आप।
2: जी नहीं, पहले आप।
1: पहले आप।
3: फैसला हो गया तो चलाऊं गड्डी, बारिश जोर की आने वाली है।

0: सरदार जी, जरा अपना शीशा चढ़ा दे, बारिश का पानी अंदर आ रहा है।
1: बीबी, हमारा कांच टूटा हुआ है, आप थोड़ा साहब के नेड़े हो जाओ ना।
0: What nonsense?
2: अरे इसमें गुस्से की क्या बात है, आप जरा इधर हो जाइए ना। सरदार जी जरा जल्दी चलिए प्लीज।
1: साहब जल्दी कांच लाए, रास्ता मिले तो मैं हवाई जहाज बना दूं गड्डी को, पर इस वेले तो ट्रैफिक बहुत है।
2: ओह डैम इट।
0: कौन सी एनिवर्सरी है?
2: शादी की।
0: मेरा मतलब है कितने साल हो गए शादी को?
2: बहुत साल हो गए, बहुत साल, आई मीन यही कोई 10-12 साल हो गए होंगे।
0: कैसे शोहर हैं आप? आपको ये भी याद नहीं कि शादी किए कितने साल हो गए? ये भी खूब रही।
2: देखिए टू बी एग्जैक्ट आज 11 साल पूरे हो गए।
0: लगता है आप अपनी बीवी से बहुत डरते हैं।
2: जी हाँ, मेरा मतलब है जी नहीं, इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है ना, पर हाँ थोड़ा बहुत तो डरना ही पड़ता है सबको।
0: थोड़ा बहुत क्यों?
2: क्या आपके शोहर आपसे
0: लकीली आई एम स्टिल अनमैरिड।
2: लकीली क्यों? देखिए
0: नहीं तो आज आपकी जगह मैं अपने शोहर के डर से घबराई हुई हूँ।
2: देखिए आप मेरी बात का बिल्कुल गलत मतलब ले रही हैं, इसे डरना नहीं कहते, मैं तो इसे जिम्मेदारी समझता हूँ, जिम्मेदारी। फिर ये देखिए ना, दिन साल के साल आता है, रोज रोज तो आता नहीं।
0: गया की 364 दिन आप नहीं डरते, सिर्फ साल में एक दिन। क्यों
2: जी, आप मजाक अच्छा कर लेती हैं, काफी खुश मिजाज चल पड़ती हैं आप। आप कहीं काम करती हैं?
0: जी अभी तो लॉ पढ़ रही हूं।
2: बस बस, साफ जाहिर है तभी आप इतनी बहस मुबहसा कर रही हैं। देखिए मुझे अनिल जैन कहते, अनिल जैन, आपका इसमें शरीफ।
0: बेग योर पार्डन,
2: आई मीन योर गुड नेम।
0: सरला पांड्या।
2: सरला पांड्या, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, बहुत खुशी। सरदार जी देखिए वो हरी बिल्डिंग नजर आ रही है ना, बस वहीं रोक देना।
1: लो, लो, लो, लो।

0: थैंक यू मिस पांड्या, थैंक यू वेरी मच। सरदार जी कितने पैसे हो गए?
1: ओह फॉरगेट इट, मैं दे दूंगी।
0: जी बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता, लिफ्ट तो मैंने आपको दी है।
1: जी नहीं, लिफ्ट मैंने आपको दी है।
0: अच्छा अच्छा चलिए यूं ही समझ लीजिए, लेकिन किराया तो मैं ही दूंगा।
1: देखिए आप फिर झगड़ा शुरू कर रहे हैं। ऐसा कीजिए, इन पैसों का मेरी तरफ से अपनी बेगम को कोई तोहफा दे दीजिएगा।
0: देखिए आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं।
1: देखिए जाइए जाइए, आपको बहुत देर हो रही है और फिर टैक्सी का मीटर चल रहा है।
0: खैर यार,
2: मम्मी जल्दी इधर आओ। क्या बात है पप्पू, नीचे देखो, डैडी आ गए।
0: तो फिर मिलेंगे।
2: वो देखो टैक्सी के पास।
3: हाँ, ये हाथ किससे मिला रहे हैं?
2: कोई आंटी बैठी है।
3: मैं भी कहूँ इतनी देर क्यों लग गई। चल पप्पू अंदर चल चल। ठीक 6 बजे आ जाऊंगा। जानते हैं अब क्या बजा है?
0: सॉरी शांति, सॉरी, टैक्सी मिलने में देर हो गई।
3: टैक्सी? कौन सी टैक्सी?
0: अरे भाई टैक्सी, वही टैक्सी, आज भी कोई बस में आने का दिन था।
3: आज तो टैक्सी का दिन था, और फिर कोई साथ हो तो बस में मजा थोड़ी आता है।
0: आप शराब पक रही?
3: जी बक नहीं रही हूँ, आंखों से देखा है। पप्पू जरा बता तो अपने डैडी को क्या देखा था तुमने?
0: क्या देखा था बे?
2: डैडी वो आंटी कौन थी आपके साथ?
0: कौन सी आंटी भाई?
3: हाँ जी वही, जिसके साथ आप हंस हंस कर हाथ मिला रहे थे। हम दोनों बालकनी से सब तमाशा देख रहे थे। हंसे क्यों?
0: अरे शांति, हुआ ये कि टैक्सी नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से एक टैक्सी मिली, तो एक बेचारी लड़की ने रिक्वेस्ट की कि उसे जल्दी घर पहुंचना है, तो मैंने उसे लिफ्ट दे दी। वो हाजी अली तक जा रही थी।
3: घर का पता वाता तो पूछ लिया होगा तुमने।
0: शांति तुम्हें तो बस कोई बात चाहिए, चलो तैयार हो जाओ जल्दी से।
2: हम दोनों तो 6 बजे से तैयार है। आप तैयार हो जाइए।
0: हाँ भाई मुझे तैयार होना है।
2: अरे हाँ मम्मी, डैडी का प्रेजेंट तो दे दो।
3: तू ही दे दे।
2: ओके डैडी ये लो, मेरी तरफ से और मम्मी की तरफ से, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
0: थैंक यू डार्लिंग, और ये प्रेजेंट मेरी ये पैकेट किधर गया भाई?
2: कौन सा पैकेट डैडी?
0: अरे तुम्हारी मम्मी के लिए भेंट लाया था, लगता है टैक्सी में ही रह गया।
3: बस बस ज्यादा सफाई पेश करने की जरूरत नहीं। साफ साफ क्यों नहीं कहते उसे प्रेजेंट कर दिया?
0: शांति शांति, अरे सचमुच मैंने तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम खरीदा था, ये देखो।
3: मुझे नहीं चाहिए प्रेजेंट वेजेंट, जिसके लिए लिया था उसे मिल गया।
0: शांति शांति प्लीज, कम से कम आज तो झगड़ा मत करो।
3: जी हाँ, जैसे रोज तो मैं ही झगड़ा करती हूँ।
0: मेरा मतलब ये नहीं था। वो
2: मैं देखता हूँ कौन आया है।
4: हेलो जिन साहब है?
5: पप्पू कौन है?
2: मम्मी टैक्सी वाली आंटी आई है।
5: अच्छा
0: अरे मिस पांड्या आप आइए आइए आइए। शांति जरा इधर तो आना, इधर।
4: ओह आंटी आप यहाँ बैठी है? अरे सरला तुम, व्हाट अ सरप्राइज। क्या मम्मी भी आई है?
1: नहीं आंटी, मैं तो ये पैकेट देने आई थी, जैन साहब टैक्सी में भूल गए थे।
0: तो आप एक दूसरे को जानती हैं?
3: जी हाँ, सरला की मम्मी हमारे क्लब में है।
0: ओह थैंक गॉड। वो मिस पांड्या, वो
1: अंकल मेरा नाम सरला है।
3: तो तुम ही इनके साथ टैक्सी में आई थी?
1: हाँ आंटी, मुझे क्या मालूम था कि ये आपके मेरा मतलब है मेरे अंकल है। पर एक बात का आज पता चल गया।
3: क्या?
1: अंकल आपसे बहुत डरते हैं। बेचारे बहुत घबराए हुए थे।
0: क्या भाई?
1: हाँ, हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, विश यू हैप्पी एनिवर्सरी।
0: थैंक यू थैंक यू। भाई सरला तुम नहीं आती तो मुझे अगली एनिवर्सरी तक शांति कहाँ मिलती?
3: जी हाँ, मैं इतनी बुरी जो हूँ?
0: नहीं नहीं भाई, इसमें अच्छे और बुरे का सवाल नहीं है शांति। जहाँ विश्वास नहीं वहाँ प्रेम नहीं। ये छोटी छोटी बातें ही तो होती हैं जिनसे जिंदगी मीठी कड़वी बन जाती है। शक और वहम से घर तबाह हो जाता है। शांति
3: बस बस बस, अब ज्यादा भाषण।

0: देने की जरूरत नहीं,
1: नहीं है।
0: अब तैयार होना है कि नहीं?
1: अच्छा
0: तो अब मुझे इजाजत? नहीं सरला, ये कैसे हो सकता है, अब तो केक खा कर ही जाना होगा।
1: शुक्र है सरला, तुम्हारी वजह से केक तो कटेगा।

0: श्रोता नातिका सेंट की बोतल, लेखक हरि मेहरा, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर और कलाकार ब्रजेंद्र मोहन, गिरिराज भट्ट, सविता बजाज, माया इसरानी व ब्रजभूषण, ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। एक नज़र हमारे कल के कार्यक्रमों के विषय में। श्रोताओं, कल सुबह 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुने गए हिंदी में समाचार कार्यक्रम चिंतन 6:05 पर, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना 6:10 पर, कार्यक्रम कृषि चर्चा 6:30 पर, रामचरितमानस भाग 10 6:40 पर, देशगान 6:50 पर, संस्कृत में समाचार होंगे 6:55 पर, हिंदी में समाचार सुनेगा सुबह 7 बजे और कार्यक्रम चित्र पर संगीत का समय होगा 7:05 पर, प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा सुनिएगा 7:35 पर, लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर 7:45 पर, समाचार प्रभात सुबह 8 बजे, मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर, फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर, विविध भारती कार्यक्रम सुबह 9 बजे, प्रादेशिक समाचार 9:55 पर, आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले होगा कार्यक्रम सुगम संगीत 10:10 पर, फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनिएगा सुबह 10:30 पर, विविध भारती कार्यक्रम 11 बजे और प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 11:55 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। ये थे हमारे केंद्र से कल सुबह के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही।
1: किसान भाई मन, का आप मन रासायनिक उर्वरक के खर्चा ला कम करना चाहता तो आज ही अपनावा हरी खाद, ढेंचा, सनई, लोबिया जैसे फसल ला उगावा और फूल आए के पहली खेत मा जोत देवा। यह माटी ला भरपूर नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ देते जेकर ले बंजर जमीन मा उपजाऊपन बढ़ते, कम लागत बेहतर पैदावार। अधिक जानकारी पर अपन लखठा के कृषि केंद्र ले संपर्क कराओ।
2: रामू भैया, ए दारी ते धान के फसल भर यूरिया और डीएपी के जुगाड़ कर डाले हस का गा, दाम हर तो आसमान छुवत है भैया।
3: अरे अरे अरे नहीं भैया, ये दारी मैं हर यूरिया के खर्चा ला आधा करे बर अपन के भुइया मा हरा खाद ला बोए। हाँ,
2: हरियर खाद वो का होते भैया?
3: बस ढेचा और सनई ला उगाना है, 40 और 50 दिन के भीतर मा माटी मा मिला देना है और फसल ला प्राकृतिक रूप ले पोषण आहार मिलते।
2: वाह, ये तो संजीवनी बूटी जैसे काम करी भैया, महु भी अपनाऊ लगा।
3: हरी खाद ला अपनाव, धरती दाई के स्वास्थ्य ला बचाव।
2: ज्यादा जानकारी बर अपन नजदीकी कृषि कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर में संपर्क कराओ।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही

0: विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: फ्रीक्वेंसी 7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या के 5:30 होने को है। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिशा यादव और मैं एक बार फिर हाजिर हूं युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवाड़ी लेकर। कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी श्रोता साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर हमें सुबह उठते ही ताजी हवा मिले, चारों तरफ हरियाली हो, पक्षियों की मीठी आवाज़ सुनाई दे और वातावरण साफ सुथरा हो, तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत लगेगी। वो कहते हैं ना कि प्रकृति जितना सुकून देती है, उतना सुकून शायद हमें कहीं ना मिल पाए। प्रकृति के बीच अगर हम शांत भी बैठे हैं तो भी एक प्यारा सा पीस जो हमें प्रकृति अनुभव कराती है, हम उस अनुभव को बार बार फील करना चाहते हैं। दोस्तों, हम सभी देख रहे हैं कि गर्मी काफ़ी बढ़ रही है, हमारा घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सुबह से ही तेज़ धूप, गर्म हवाएं और बढ़ता प्रदूषण लोगों को परेशान कर रहा है। पहले मौसम इतना ख़राब नहीं होता था, लेकिन अब हर साल तापमान बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है पेड़ों की लगातार कटाई और हरियाली की कमी। हमारी लापरवाही की वजह से प्रकृति और पेड़ पौधों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। अगर हम किसी एक पेड़ को भी नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ता है और हम आज पर्यावरण को कई तरह से नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं। जैसे हम में से कई बिना ज़रूरत के पेड़ों की कटाई करते हैं। घर, सड़क और बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए जंगलों को ख़त्म किया जा रहा है। बहुत लोग पेड़ तो काट देते हैं लेकिन नए पौधे नहीं उगाते। प्लास्टिक और कचरा इधर उधर फेंक देते हैं जिससे मिट्टी और पानी दोनों प्रदूषित होते हैं। पौधे लगाए तो जाते हैं पर उनकी देखभाल नहीं की जाती, जिस कारण पौधे सूख जाते हैं। वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, इससे हवा प्रदूषित हो रही है और वातावरण गर्म होता जा रहा है। पानी की बर्बादी, बिजली का गलत उपयोग और ज़रूरत से ज़्यादा संसाधनों का इस्तेमाल भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। कुछ लोग जंगलों में आग लगा देते हैं या लापरवाही से आग फैला देते हैं, जिससे हजारों पेड़ और जानवर नष्ट हो जाते हैं। और आग जलाने के लिए सजावटी वस्तुएं व लकड़ी से बनी वस्तुएं बनाने के लिए पेड़ को काटा जा रहा है। हम में से कई लोग पर्यावरण की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते और ये सोचते हैं कि एक इंसान से क्या फर्क पड़ेगा, जबकि बदलाव हमेशा एक व्यक्ति से ही शुरू होती है। हमें खुद को, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग हैं। अगर धरती पर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो इसका सबसे बड़ा असर हमारे जीवन पर पड़ेगा। पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं, इनके बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे जैसे पेड़ पौधों की संख्या कम होती जाएगी, वैसे वैसे हम सभी के लिए समस्याएं भी पैदा होती जाएंगी। हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी क्योंकि पेड़ ही हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खुद के अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। बिना पेड़ पौधों के हवा जहरीली होती जाएगी और हमें सांस लेने में बहुत परेशानी होगी। अस्थमा, एलर्जी और फेफड़ों की बीमारियां तेजी से बढ़ेंगी। पेड़ों के बिना धरती का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आज जो गर्मी हम महसूस कर रहे हैं वो और भी खतरनाक हो जाएगी। बारिश का संतुलन बिगड़ जाएगा, कहीं सूखा पड़ेगा तो कहीं बाढ़ आएगी, खेती पर भी बुरा असर पड़ेगा और खाने पीने की चीज़ों की कमी होने लगेगी। पेड़ मिट्टी को मजबूती से अपनी जड़ों में बांध कर रखते हैं। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो मिट्टी बहने लगेगी और ज़मीन बंजर हो जाएगी, इससे खेती करना मुश्किल हो जाएगा और पहाड़ों में भूस्खलन भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, पशु पक्षियों का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा क्योंकि उनका घर जंगल और पेड़ ही होते हैं। पेड़ों के कई जीव जंतु खत्म हो जाते हैं, इसलिए अक्सर पेड़ों की कटाई के कारण जानवर इंसानी इलाकों में आ जाते हैं, जिससे उन जानवरों को भी खतरा होता है और इंसानों को भी। पेड़ कटाई से प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। बिना पेड़ पौधों के हमें फल, सब्जियां, दवाइयां और लकड़ी जैसी ज़रूरी चीज़ें भी नहीं मिल पाएंगी। हमारा जीवन भी पूरी तरह प्रभावित होगा। दोस्तों, आज प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि लोगों के सांस लेने की परेशानी होने लगी है। छोटी उम्र में ही लोग कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।
इसका समाधान सिर्फ मशीनों में नहीं बल्कि प्रकृति में छिपा है। जितनी ज्यादा हरियाली होगी उतनी ही शुद्ध हवा मिलेगी, इसलिए हर व्यक्ति को कम से कम साल में एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। पौधा लगाना ही काफी नहीं है, उसकी देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है। जैसे हम अपने अपनों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही पौधों की भी देखभाल हमें करनी चाहिए। हमें कोई स्पेशल मौकों पर जैसे बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी में एक पौधा हर साल ज़रूर उगाना चाहिए, ताकि वो पौधा बाद में एक पेड़ बनकर आपकी यादों को संजोता रहे। दोस्तों, हम सबको आगे आकर पेड़ों और पर्यावरण को बचाना है। पेड़ पौधों का हमारे जीवन में महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 12 मई को यानी आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पौधों की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, क्योंकि पौधे हमारे भोजन और ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। पौधों में होने वाली बीमारियों और कीटों के कारण हर साल फसलें नष्ट हो जाती है। ये दिन इन्हें बचाने के उपायों को बढ़ावा देता है। जैव विविधता और पर्यावरण की रक्षा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, पौधे स्वस्थ रहेंगे तो धरती स्वस्थ रहेगी, और जब धरती स्वस्थ रहेगी तभी इंसान का जीवन भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए हमें पेड़ पौधों को अपने दोस्त की तरह समझना चाहिए। हमें जितना हो सके उतने पेड़ पौधे उगाने चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि जितना प्यार हम प्रकृति को देंगे उतना ही सुंदर और सुरक्षित भविष्य हमें मिलेगा। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आज के क्रम की ओर। आज का क्रम है क्रम एक ही कलाकार, जिसमें हम उन गीतकार के बारे में जानेंगे जिनके लेखन में एक अलग सी खूबसूरती थी, जिनके गीतों के बोल आज भी हम गुनगुनाते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उन महान गीतकार के बारे में जिन्होंने बॉलीवुड के गीतों में राज किया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महान गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में। इनके बारे में आगे और भी जानेंगे, उससे पहले सुनते हैं इनका लिखा फिल्म मेरे जीवन साथी का ये गीत।

दोस्तों, मजरूह सुल्तानपुरी का जन्म 1919 में उत्तर प्रदेश में जिला सुल्तानपुर में हुआ था। उनका असल नाम असरार उल हसन खां था। उनके पिता मोहम्मद हसन खां पुलिस में सिपाही थे। उन्होंने उर्दू, अरबी और फारसी में पढ़ाई की। बाद में उन्होंने यूनानी चिकित्सा पद्धति की शिक्षा लेकर हकीम का कार्य शुरू किया, लेकिन उनका मन साहित्य और शायरी में ज़्यादा लगता था। बचपन से ही उन्हें कविता लिखने और मुशायरों में भाग लेने का शौक था। कुछ समय के लिए उन्होंने हकीम का कार्य भी किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके भीतर का शायर उन्हें मुशायरों की दुनिया में खींच लाया। दोस्तों, मजरूह साहब की प्रतिभा को सबसे पहले फिल्म निर्माता कारदार ने पहचाना। 1946 में आई फिल्म शाहजहां से उनकी फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। इस फिल्म में उन्होंने महान गायक केएल सहगल के लिए जब दिल ही टूट गया जैसे सदाबहार गीत लिखा। इस एक गाने ने उन्हें फिल्म जगत में वो मुकाम दिला दिया जिसके लिए लोग बरसों मेहनत करते हैं। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, मजरूह सुल्तानपुरी ने अपने लंबे फिल्मी करियर में 300 से अधिक फिल्मों के लिए 400 से ज़्यादा गीत लिखे। उनके गीतों की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे सरल भाषा में गहरी भावनाएं व्यक्त करते थे। उनके शब्द सीधे दिलों को छू जाते थे। उन्होंने प्रेम गीतों के साथ साथ प्रेरणादायक और दर्द भरे गीत भी लिखे। उनकी लेखन शैली अत्यंत मधुर और प्रभावशाली है। वे उर्दू भाषा के श्रेष्ठ शायरों में गिने जाते हैं। उनकी रचनाओं में साहित्यिक सुंदरता और भावनात्मक गहराई का अद्भुत मेल दिखाई देता है। उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से समाज और जीवन की सच्चाइयों को भी व्यक्त किया है। उन्होंने कई सुपरहिट गीत दिए हैं, जैसे मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, लेकर हम दीवाना दिल, ओ मेरे दिल के चैन, दीवाना हुआ बादल, रात कली एक ख्वाब में आई, एक लड़की भीगी भागी सी, हाल कैसा है जनाब का, बाबू समझो इशारे, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, पिया तू अब तो आ जा, ओ मेरे सोना रे सोना, मितना मिला रे मन का, बाबुल की दुआएं लेती जा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, गजब का है ये दिन, सोचो जरा, पहला नशा पहला खुमार, जैसे कई सुपरहिट गीत दिए। दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि भारतीय सिनेमा के गीतों को सुनने वालों में मजरूह सुल्तानपुरी के गीत बहुत ही लोकप्रिय हैं। अगर हम उनके गीतों की लिस्ट निकालें तो उन्होंने अब तक हिंदी सिनेमा में 4000 से अधिक गीत लिखे हैं, जिसमें ज़्यादातर गीत सुपरहिट हैं। दोस्तों, आगे हम इनके बारे में और भी जानेंगे। उससे पहले सुनते हैं इनका लिखा फिल्म अनामिका का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

दोस्तों, मजरूह साहब की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वे हर पीढ़ी और हर संगीतकार के साथ तालमेल बिठा लेते थे। जहां एक तरफ उन्होंने नौशाद और ओपी नैयर के साथ शास्त्रीय और रूहानी संगीत पर काम किया, वहीं दूसरी ओर आरडी बर्मन के साथ में उन्होंने ओ हसीना जुल्फों वाली और मोनिका ओ माई डार्लिंग जैसे गीत आधुनिक और चुलबुले गीत भी लिखे। उन्होंने पाकीजा और कयामत से कयामत तक फिल्मों के लिए गीत लिखे। उनके शानदार फिल्मी सफर का सबसे बड़ा सम्मान 1993 में मिला, जब उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे ये सम्मान पाने वाले भारतीय सिनेमा के पहले गीतकार बने। उन्हें फिल्म दोस्त

मस्ती के गाने, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए, फिल्म फेयर पुरस्कार व साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए इकबाल सम्मान से नवाजा जा चुका है। मजरूह सुल्तानपुरी भारतीय संगीत और साहित्य जगत के एक ऐसे महान रचनाकार थे जिन्होंने अपने शब्दों से लाखों लोगों के दिलों में स्थान बनाया। उनकी रचनाएं सदैव अमर रहेंगी। दोस्तों आइए सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा, रफी का गाया हुआ फिल्म दोस्ती का ये गीत।

दोस्तों, मजरूह सुल्तानपुरी एक ऐसा ही महान नाम है। वे न सिर्फ एक बेहतरीन गीतकार थे, बल्कि उर्दू अदब के एक आला दर्जे के शायर भी थे। उन्होंने लगभग 6 दशकों तक अपने गीतों के माध्यम से करोड़ों दिलों पर राज किया। उनका निधन 24 मई 2000 को मुंबई में हुआ। मजरूह साहब भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गीत आज भी उतने ही चाव से गुनगुनाए जाते हैं। उनका फिल्मी सफर महज गानों का संग्रह नहीं, बल्कि भारतीय संगीत के विकास की कहानी है। उन्होंने साबित किया कि एक गीतकार कभी लोगों के दिल से जाता नहीं, बल्कि अपने गीतों से के माध्यम से सबके मन में एक छाप छोड़ जाता है। इसी तरह हम इन्हें याद करते रहेंगे व इनके गीत गुनगुनाते रहेंगे। क्रम एक ही कलाकार यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, अब समय हो चला है कार्यक्रम समाप्ति का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपसे फिर मिलेंगे युवाणी के अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त ऋषा यादव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है FM 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या के 6 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को

0: व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि ये भारत और नेपाल की अटूट मित्रता तथा पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में एक सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बीच सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रोड की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम रेन पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। संध्या की 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण, एक नजर हमारे कल शाम के कार्यक्रमों के विषय में। श्रोताओं कल संध्या 5:00 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। 5:10 पर पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम और युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे 5:30 पर, जिसमें आज के बाद का विषय होगा जानिए आर के नारायण को पुण्यतिथि, घटना चक्र और तरुणों की पसंद। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा संध्या 6:00 और छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार सुनेगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से 6:10 पर। कार्यक्रम फिल्म संगीत 6:20 पर प्रादेशिक समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से 6:45 पर। कार्यक्रम फिल्म संगीत संध्या 7:00 और 7:20 पर सुनेगा कृषक बंधुओं का कार्यक्रम चौपाल, जिसमें आज की बात का विषय होगा फलों और सब्जियों की तुड़ाई उपरांत प्रबंधन। आज की नसीहत में नवजात बछड़ों की देखभाल और प्रबंधन। इसके अलावा आज का टीप कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत 8:20 पर, कार्यक्रम फिल्म संगीत 8:30 पर, समाचार संध्या 8:45 पर। विविध भारती कार्यक्रम रात्रि 9:00, कार्यक्रम फिल्म संगीत रात्रि 10:00 और 10:30 पर सुनेगा गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम।

गुलदस्ता हिंदी में समाचार होंगे रात्रि 11 बजे 11:05 पर सुनेगा अंग्रेजी में समाचार। ये थे हमारे केंद्र से कल के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: एफएम 107 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या की 6:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से प्रसारित छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री है पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा के बचत भर लोगन मल्ले ईंधन बचाए और विदेशी उत्पाद के प्रयोग कम करे के करीन विनती। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA है चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिला भर 3 मई के होए NEET UG परीक्षा ला रद्द करे के फैसला ले है। और दुर्ग जिला के कुम्हारी थाना क्षेत्र में आज संझा सिलेंडर में विस्फोट होए ले एके परिवार के 4 लोगन के मौत। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा के बचत पर लोगन मन ले ईंधन बचाए और विदेशी उत्पाद के प्रयोग कम करे के विनती करे है। गुजरात के बड़ोदरा में काली एक ठिन जनसभा में प्रधानमंत्री है पेट्रोल और डीजल के उपभोग कम करे और वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन कक्षा और वर्चुअल बैठक जैसन कोविड दौर के उपाय अपनाए के अपील कर दोहरेन। इति छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव घलो पश्चिम एशिया संकट ले उपजे हालात के बीच लोगन मल्ले मदद की अपील करे है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA है चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिला बर 3 मई के होए NEET UG परीक्षा ला रद्द करे के फैसला ले है। NTA है बतैन कि सरकार है पेपर लीक के आरोप मन के पूरा जांच भर मामला ला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ला सौंपे के फैसला ले है। NTA है कहिन कि परीक्षा भर 9 तारीख अलग ले अधिसूचित करे जाही। पंजीकरण विवरण उम्मीदवार के जानकारी और 3 मई के परीक्षा भर चुने गए परीक्षा केंद्र वैसने रही। एजेंसी है कहिन है कि दोबारा परीक्षा भर और पंजीकरण कराए के जरूरत नहीं पड़े और परीक्षा शुल्क घलो नहीं लगाए। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाए जाते। मौका में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति भवन में राखे गए कार्यक्रम में 15 नर्सिंग पेशेवर ले जुड़े नर्सिंग के क्षेत्र में बढ़िया कामकाज भर राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिन। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्स मिडवाइफ्स सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक मल्ला देगीस। उन्हें आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौका में छत्तीसगढ़ में घलो कतकोन कार्यक्रम हुआ थे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल है रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में रखे गए कार्यक्रम में नर्सिंग संवर्ग के पदनाम में परिवर्तन करे के घोषणा करीन। नर्सिंग सिस्टर मल्ला अब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जाने जाही और स्टाफ नर्स के नाव नर्सिंग ऑफिसर हो ही। राज्य शासन है प्रदेश में चरचरावत गर्मी ला देखत स्कूल मन भर गर्मी के छुट्टी घोषित करे जाए के बावजूद कुछ एक प्राइवेट स्कूल मन डहार ले ए बेरा कक्षा लगाए जाते। एला शासन है गंभीरता ले लेवत अपन आदेश के उल्लंघन माने हैं। लोक शिक्षण संचालनालय है शिक्षा विभाग के जम्मो संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी मल्ला चिट्ठी जारी करके ऐसन प्राइवेट स्कूल मन के खिलाफ कार्रवाई करे बर कहे है। ये बारे में बिलासपुर उच्च न्यायालय है घलो एक ठिन याचिका दायर करे गई रही से जिला हाईकोर्ट है संज्ञान में ले है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान है काली ले छत्तीसगढ़ के 2 दिन के दौरा में रही। अपन प्रवास के दौरान उमन ग्रामीण विकास मंत्रालय को तिले चलाए जात आने आने योजना मन के समीक्षा करी संगे संग ग्रामीण विकास ले जुड़े जनप्रतिनिधि अधिकारी और हितग्राही मन ले गोटबात करी। श्री पासवान है विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ले जुड़े तैयारी और ग्राम पंचायत मन में चलाए जात ग्रामीण विकास के बारे में घलो जान वाली ही। अपन प्रवास के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री है स्व सहायता समूह मन के माइलोगिन और आने आने योजना मन के हितग्राही मन ले गोट बात करी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा है आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के पिंडरा रोड में न्यायिक कर्मचारी मन बर बनाए जात आवासीय परिसर और मरवाही में नवा सिविल कोर्ट भवन बनाए के भूमि पूजन करीन। ये मौका में मुख्य न्यायाधीश जिला जज और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मल्ला निर्देश दिन है कि जम्मो प्रस्तावित कामला तय करेगे मापदंड के मुताबिक कराया जाए। प्रदेश में नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाई के तहत आदर्श आचार संहिता लागू होए के संग लाउडस्पीकर जैसन यंत्र के प्रयोग पर दिशा निर्देश जारी करेगी है। जौन क्षेत्र में चुनाई होइया है वहां रतिहा 10 बजे ले बिहनिया 6 बजे तक लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रोक लगा देगी है। चुनावी सभा और प्रचार वाले गाड़ी मन में लाउडस्पीकर लगाए पर सक्षम अधिकारी ले अनुमति लेना जरूरी होगी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
2: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगू बढ़ू पांच समाचार को दी। दुर्ग जिला के कुम्हारी थाना क्षेत्र में आज संझा सिलेंडर में विस्फोट होए ले एक परिवार के चार जिन लोगों के मौत हो गए। इमा 1.5 साल के एक जिन नोनी घलो शामिल है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर है बताइन कि कपरी रोड स्थित एक ठीन मकान में 60 सर्किट की स्थिति आगे लग गई। आगे के चपेट में आए ले घर में रखे गैस सिलेंडर फट गए और आगे पूरा घर में फैल गए। घर में आगे लगे की स्थिति यहां रहैया परिवार के मनखे मन बाहर नहीं निकल सकिन और जिंदा जल गए। पुलिस मामला की जांच कर रहे थे। जांजगीर चांपा जिला के धुरकोट गांव में कलिंदर खाए के बाद एक जिन लड़का के मौत और 3 जिन आने लड़का मन के बीमार होए के मामला आगुआ है। बीमार लड़का मन के इलाज जिला अस्पताल में चलत है और उखर हालत सामान्य बताया जात है। प्रशासन ह कलिंदर के सैंपल ला जांच पर भेज दे है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ह गांव में लोगन मन के स्वास्थ्य की जांच करत है। रायपुर पुलिस ऑपरेशन निश्चय के तहत गांजा तस्कर मन के खिलाफ बड़का कार्रवाई करे है। महासमुंद धमतरी और गरियाबंद जिला मन में नाकेबंदी के दौरान फेरी लगा के कपड़ा बेचे के आड़ में करे जात अंतर्राज्यीय तस्करी के खुलासा हो है। पुलिस आरोपी मन के ले 378 किलो ले ज्यादा के गांजा जब्त करे है जेखर भाव बाजार में 1,98,00,000 रूपया बताया जात है। कार्रवाई में 11 ठीन गाड़ी जब्त करे गए है और पुलिस 12 जिन तस्कर मन ला घलो गिरफ्तार करे है। ये तस्कर मन कपड़ा के ढेर के बीच गांजा रख के ओडिशा ले मध्य प्रदेश जावत रहिन। नारायणपुर जिला में जिला सुरक्षा बल मन माओवादी मन डहार ले लुका के रखे गए 1,00,00,000 रूपया नगदी के संगे संग बड़ मात्रा में हथियार गोला बारूद विस्फोटक जिनिस और रोजे काम में अवैया जिनिस बरामद करे है। जिला के पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुरिया सुरक्षा बल मन डहार ले करे गए कार्रवाई के जानबा देवत बताइन कि बछर 2025-26 में जिला में 270 हथियार के रिकवरी हो है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव गंवई के सड़क मन के बढ़िया रख रखाव में पूरा देश में दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश के सीहोर में रखे गए योजना के रजत जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य ला सम्मानित करीन। राज्य गोतिले पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह और प्रमुख अभियंता के कटारे पुरस्कार लीन। प्रदेश में अब तक 32,000 किलोमीटर लंबा और 8,000 ले ज्यादा सड़क मन के नवीनीकरण करे जा चुके है। महासमुंद के जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव ला गैस चोरी के मामला में निलंबित कर दे गए है। पाछू 9 मई के ए मामला के खुलासा करत पुलिस जिला खाद्य अधिकारी के संगे संग 3 जिन लोगन मला गिरफ्तार करे रहिन। आरोपी मन 6 ठीन LPG गैस कैप्सूल टैंकर मन ले गैस चोरी करके ओला 80,00,000 रूपया में बेचे रहिन। हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरा होए के मौका में अवैया 30 मई के रायपुर में पत्रकारिता मारतंड उत्सव मनाया जाही। के बारे में रायपुर के प्रेस क्लब के प्रतिनिधि मंडल मन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ले मिलके उमल्ला कार्यक्रम में शामिल होए के न्योता दिन। मुख्यमंत्री आयोजन के पोस्टर के विमोचन करीन। ये कार्यक्रम में बड़का पत्रकार संपादक और मीडिया विशेषज्ञ मन शामिल हुईन। अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग ले मिले जानबा के मुताबिक प्रदेश में काली एक दो जगह में हल्का वर्षा हो या गरज चमक के संग बूंदाबांदी होए के संभावना है। मौसम विज्ञानी आकाशवाणी समाचार ला बताएं कि प्रदेश में अवैया 4 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बढ़ोतरी हो सकते। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। प्रधानमंत्री पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा के बचत पर लोगन मल्ले ईंधन बचाए और विदेशी उत्पाद के प्रयोग कम करे के करीन विनती। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिला पर 3 मई के होए NEET UG परीक्षा ला रद्द करे के फैसला ले है। और दुर्ग जिला के कुम्हारी थाना क्षेत्र में आज संझा सिलेंडर में विस्फोट होए ले एक परिवार के 4 जिन लोगन के मौत। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यहीं सिरावत है। जय जोहार।
3: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या की 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए चितचोर फिल्म का गीत। येसुदास की आवाज में रविंद्र जैन की लिखी हुई गीत उन्हीं के संगीत निर्देशन में।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
6: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
6: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
6: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: Akashwadi at 90.
1: कार्यक्रम फिल्म संगीत का अगला गीत हमने लिया है दीवाना फिल्म से. अब तानू अलका याग्निक और साथियों की नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर की लिखी हुई गीत.

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था?
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्री चरण दास ने भी इसे गाया था और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश की जय हे को रखेंगे। और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है और इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। पूरे देश में इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
0: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।
2: संगीत का अगला गीत लीजिए, सुनिए दस्तूर फिल्म से अभिजीत भट्टाचार्य की, और गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया है आनंद मिलिंद ने।

अभिजीत भट्टाचार्य के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या की 6:45 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
6: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
5: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
6: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
5: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
7: आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित होने के बावजूद कक्षाएं लगाने वाले अशासकीय स्कूलों के खिलाफ होगी कार्रवाई। दुर्ग जिले के कुम्हारी क्षेत्र में सिलेंडर में विस्फोट होने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने नर्सिंग स्टाफ का पदनाम बदलने की घोषणा की। नर्सिंग सिस्टर अब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
8: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का, इलेक्ट्रिक बस ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
7: छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी पश्चिम एशिया संकट से उपजे हालात के बीच लोगों से सहयोग की अपील की है।
9: प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से वैश्विक परिदृश्य पर आह्वान किया है, पेट्रोल डीजल रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम हो, ऐसे कुछ आग्रह प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश पर जब भी इस प्रकार की परिस्थितियां आती है वो देश के नागरिकों के सहयोग से ही उस पर अमल करना संभव होता है। निश्चित रूप से हम सब भी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर अमल करने की दिशा में बढ़ेंगे।
7: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने चिकित्सीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित NEET UG परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। NTA ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। NTA ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में भीषण गर्मी

0: को देखते हुए स्कूलों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किए जाने के बावजूद कुछ अशासकीय संस्थाओं द्वारा वर्तमान में भी कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। इसे शासन ने गंभीरता से लेते हुए अपने आदेश का उल्लंघन माना है। लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षा विभाग के सभी संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर ऐसे निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। इस संबंध में बिलासपुर उच्च न्यायालय में भी एक याचिका दायर की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा है कि यह अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर आज छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर के डॉ भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम में नर्सिंग संवर्ग के पदनाम में परिवर्तन की घोषणा की है। इसके अनुसार नर्सिंग सिस्टर अब नर्सिंग सीनियर नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगी, जबकि स्टाफ नर्स का नाम नर्सिंग ऑफिसर होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान कल से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अपने प्रवास के दौरान वे ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे, साथ ही ग्रामीण विकास से जुड़े जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और हितग्राहियों से भी संवाद करेंगे। श्री पासवान विकसित भारत जी राम जी अधिनियम से संबंधित तैयारियों और ग्राम पंचायतों में संचालित ग्रामीण विकास गतिविधियों की भी जानकारी लेंगे। अपने प्रवास के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री स्वसहायता समूहों की महिलाओं और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से भी बातचीत करेंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गौरेला पिंडरा मारवाही जिले के पिंडरा रोड में न्यायिक कर्मचारियों के लिए बनाए जा रहे आवासीय परिसर और मारवाही में नए सिविल कोर्ट भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश ने जिला जज और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी प्रस्तावित निर्माण कार्य निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कराया जाए। आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र में आज शाम सिलेंडर में विस्फोट होने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें 1.5 साल की एक बच्ची भी शामिल है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर ने बताया कि खपरी रोड स्थित एक मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग की चपेट में आने से घर में रखा गैस सिलेंडर फट गया और आग तेजी से फैलने लगी, जिसके कारण घर के अंदर मौजूद परिवार के सदस्य बाहर नहीं निकल सके और जिंदा जल गए। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांजगीर चांपा जिले के धुरकोट गांव में तरबूज खाने के बाद एक बच्चे की मौत और 3 अन्य बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अनिता श्रीवास्तव ने बताया कि बिस्तर रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले के सारे तथ्यों का पता चल पाएगा।
1: जो 4 बच्चों ने कुछ तरबूज खाया था और रात में चिकन खाया था, तो उन 4 बच्चों को जिला अस्पताल जांजगीर लेके आए तो उसमें रास्ते में एक बच्चे की मौत हो गई और 3 बच्चे यहाँ पे भर्ती थे, तो उसके लिए जांच की टीम तुरंत ही वहाँ पे गांव गई उनके और वहाँ जाके अब बाकी भी बच्चों की जांच की। तरबूज में कुछ कीटनाशक किस चीज से पकाया था वो नहीं जानते। बाकी जैसे कि ये पता चला है कि वो तरबूज एक दिन पहले का कटा हुआ था और उसके बाद शाम को बच्चों ने खाया, जो कि पूरा दिन इतनी तेज गर्मी है तो उससे सड़ भी सकता है। तरबूज का सैंपल है वो फूड डिपार्टमेंट वाले लेके गए हैं और दूसरा रिपोर्ट हमारे फॉरेंसिक विभाग से आएगी, तभी पता चलेगा कि ये किस कारण से हुआ है।
0: इस बीच बच्चे का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि मृत बच्चे का बिस्तर सुरक्षित रखा गया है, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया है। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए करीब 1 करोड़ रुपए नकदी सहित बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुरिया ने सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि हाल के महीनों में जिले में 270 हथियारों की रिकवरी हुई है।
2: 47 3 SLR, 2 303, 315 है, तो बहुत सारे मोर देन 250-300 लाइव राउंड्स हैं और साथ ही साथ अन्य दैनिक उपयोगी सामान भी मिले। ड्यूरिंग ऑपरेशन डंप से कैश रिकवरी भी हुई, तो 2 जगहों से कुल 1 करोड़ 164,000 रुपया जब्त हुआ है। ये पूरी कार्रवाई में एसटीएफ नारायणपुर डीआरजी, हमारे बीएसएफ आईटीबीपी का एक संयुक्त योगदान रहा।
0: रायपुर पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय के तहत गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद जिलों में संयुक्त नाकेबंदी के दौरान फेरी लगाकर कपड़ा बेचने वालों की आड़ में की जा रही अंतर्राज्यीय तस्करी का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपियों से 378 किलो से अधिक का गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 1,98,00,000 रूपये बताई गई है। कार्रवाई में 11 वाहन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने 12 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो कपड़ों के ढेर के बीच गांजा कर ओडिशा से मध्यप्रदेश ले जा रहे थे। महासमुंद के जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव को गैस चोरी के मामले में सम्मिलित पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। बीते 9 मई को इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने जिला खाद्य अधिकारी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने 6 एलपीजी गैस कैप्सूल टैंकरों से गैस चोरी कर उसे 80,00,000 रूपये में बेच दिया था। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के उत्कृष्ट रखरखाव में देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। मध्यप्रदेश के सीहोर में आयोजित योजना के रजत जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य को सम्मानित किया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रदेश में अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है।
3: प्रदेश में आज से लेकर आगामी 5 दिनों तक मेघ गर्जन का एक्टिविटी 1-2 स्थानों पर होने की संभावना है। मेघ गर्जन के साथ तेज हवा लगभग 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा हवा चलने की संभावना है और इसके साथ साथ हल्की वर्षा भी होने की चांसेस है। अधिकतम तापमान के बारे में बात करें तो अधिकतम तापमान आज से लेकर अगले 4 दिन तक लगभग 2-3 डिग्री का क्रमिक वृद्धि जो है वो एक्सपेक्टेड है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित होने के बावजूद कक्षाएं लगाने वाले अशासकीय स्कूलों के खिलाफ होगी कार्रवाई। दुर्ग जिले के कुम्हारी क्षेत्र में सिलेंडर में विस्फोट होने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने नर्सिंग स्टाफ का पदनाम बदलने की घोषणा की। नर्सिंग सिस्टर अब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर कहलाई जाएंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
4: FM 100.7 MHz पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस फिल्म का गीत आइए सुनते हैं कुमार सानू अलका याग्निक की युगल आवाजों में। समीर की लिखी हुई गीत है, नरीम श्रवण के संगीत निर्देशन में।

0: आकाशवाणी F90।
1: मैं HD महान शक्ति छत्तीसगढ़ से आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई। पिछले 9 दशकों से आकाशवाणी ने अपने उत्कृष्ट प्रसारण से संस्कृति को संयोजित तथा जन जन तक सूचना एवं मनोरंजन पहुंचाने का उत्कृष्ट कार्य किया। कामना है कि आकाशवाणी आने वाले वर्षों में अपने मनमोहक विरासत को आगे बढ़ाते हुए नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना के साथ आकाशवाणी रायगढ़ को 90 स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
3: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
4: देश की सुरीली धड़कन
5: विविध भारती,
3: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
4: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
3: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
4: वीर सैनिकों की जय माला
3: और हसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
4: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
6: सखी सहेली,
4: बॉम्बे टॉकीज और
7: सेल्यूलॉइड के सितारे,
4: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
8: मुझे याद सब है जरा जरा,
3: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
4: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
3: मन का सुकून, दिल की आरती,
4: सुरीली संदली
9: कार्यक्रम।

संगीत में। आइए सुनते हैं पत्थर के सनम, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। शब्द रचना है मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत बद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: कार्यक्रम फिल्म संगीत में लीजिए सुने किशोर कुमार की आवाज में इंदिवर की लिखी हुई गीत कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम है सफर।

किशोर कुमार के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषक बंधुओं का कार्यक्रम किसानवाणी।

संगवारी हो आज के बैठकी में पहुंच गए ना कहा और बैठकी में किसानवाड़ी सुनैया सबो संगी संगवारी दाई दीदी बहनी लईका सियान किसान मितान सबो झनला सुमित्रा पटेल के राम राम जय जोहार। हो देखा संगवारी हो आप मन तो मौसम ला देखते छव गर्मी के मौसम चलत है कह बहुत ज़्यादा गर्मी करत है तापमान हर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गिस हवे तो ऐसे में लू लगे के संभावना रहते कह तो ऐसे में अपन के स्वास्थ्य के देख रेख करना जरूरी हवे और अपन के संगे संग अपन के घर परिवार और जोन भी हमन पशुपालन के काम करे हन चाहे कुकरी हो छेरी हो भेड़ी हो गाय हो जो भी रखे हन ओकर हमला अच्छा से देख रेख करना पड़ी गर्मी ले हमला बचा के रखना पड़ी कहा और अच्छा से रखबो तो जोन हमार आय के स्रोत हवे संगवारी हो ओहर अच्छा रही वह नहीं गड़बड़ाए और हमार देख रेख में हमार स्वास्थ्य के देख रेख में हमार खान पान अच्छा होना चाहिए दिनचर्या भी सही होना चाहिए सही समय में सूतना है सही समय में उठना है और खान पान के हमला विशेष ध्यान रखना है। और देखा संगवारी हो अभी लू लग सकत है तो हमला लू ले बच के रहना है जैसे यदि कन्हो मनखे ला लू लगे है तो एकल लक्षण दिखते संगवारी हो तो एकल लक्षण में तेज बुखार आते जोन आदमी ला जोन मनखे ला लू लगते तेज बुखार आते चक्कर आते बेहोशी हो जाते और उल्टी होते सिर दर्द भी होते और त्वचा लाल और सूखा हो जाते ये सब वो लक्षण दिखत है तो आप मन जान लेवा कि वो मनखे ला लू लग गए है कहा। एक बचाव करे बर हमला का करना है तेज धूप में बाहर निकले ले बचना है कहा यानी कि हमला तेज धूप में बाहर नहीं निकलना है और जोन आदमी ला लू लगे है ओला दिन भर पानी और ORS पिलाना है और ओला हल्का ढीला कपड़ा पहनाना है कहा और ओकर सिर ला ढक करके रखना है जैसे कि टोपी है गमछा है या फिर छाता है ये सबो ले हमला ढक करके रखना है। यदि हमन कन्हो जरूरी काम से ओला बाहर लेके जात हन तो ये सब ला लगा के जाना है और धूप में काम करते समय बीच बीच में हमला आराम करना है संगवारी हो और जैसे लू लगत है तो हमला का करना है पानी लेना है ORS छाछ नींबू पानी ये सबो ला लेना है और तरबूज खीरा ककड़ी जितका भी पानी वाला जीनिस है फल है सब्जी है और जो भी मौसमी फल है हरा पत्तेदार सब्जी है ये सबों के हमला सेवन करना चाहिए। और संगवारी हो हमला खाली पेट धूप में नहीं जाना है चाय काफ़ी और तला भुना ला मतलब कम करना है एकर सेवन नहीं करना चाहिए बच्चा और बुजुर्ग मल्ला धूप में नहीं छोड़ना है तो ये सबो काम ला हमन करबो तो हमन लू ले बच सकत हन। देखा संगवारी हो आप मन सतर्क रिह और सुरक्षित रिह और सुरक्षित के संगे संग स्वस्थ भी रिह ये सब बोला अपना हाथों तो और आज के बैठकी के चर्चा में आप वो संगवारी हो तो आज के बाद के विषय हवे कृषि यंत्रों का सही इस्तेमाल एवं देखभाल से उम्र बढ़ाएं। संगवारी हो खेती किसानी के काम में आज के बखत बेरा में कृषि यंत्र यानी कि मशीन हर मनखे के गोड़ हाथ बराबर आए यानी कि आज के जो बखत बेरा है एमा हमन मशीन के बिना कछु भी काम ला नहीं कर सकत हन। पहली कार्य ही से मनखे खुद अपन के गोड़ हाथ में यानी कि नांगर बैला रखे और ओकर माध्यम से खेती किसानी के काम ला करे कहा तो अभी ये जो कृषि यंत्र है एकर ही हमन सहारा खेती किसानी के काम ला करथन और अगर हमन एकर सही तरीका से एला नहीं चलाबो तो यह जल्दी से खराब हो जाही कहा ओकरे खातिर हमला कृषि यंत्र के सही इस्तेमाल करना है और ओकर देखभाल करना है और ओकर उम्र ला हमला बढ़ाना है कहा जैसे कि काम के पहली और बाद में ओकर सफाई करना है
मशीन ला खेत मा ले जाए के पहली देख लेवा कि सब ओकर पुर्जा मन ओकर मशीन मन ठीक है कि नहीं है, ओकर नट बोल्ट ढीला है कि सही है कि नहीं है, ये सब बोला हमला देख लेना है। और खेत ले मतलब खेत ले उबारे के बाद मशीन में फंसे धुर्रा कचरा और माटी ला बने साफ करो, माटी हर नमी सोखते जेकर ले मशीन में जल्दी जंग हर लग जाते कहा। ओकर बाद संगवारी हो तेल पानी और ग्रीस, मशीन के जतकी घिसने वाला हिस्सा है जैसे कि बैरिंग है चेन है और जोड़ है, ओमा बखत बखत मा ग्रीस और लुब्रिकेंट तेल ला हमला डालत रहना है। अगर ट्रैक्टर है तो ओकर इंजन आयल और फिल्टर ला कंपनी के बताए समय मा हमला बदलते रहना है। और संगे संग नट बोल्ट के भी हमला जांच करते रहना है। खेत मा चले के सेती मशीन हा बहुत हालते कहा। देखा खेत में हमार खेत हा कब उबड़ खाबड़ रही थे तो मैं मशीन ला चलाथन तो हा बहुत ही हाले बर लगते, जेकर ले ओकर नट बोल्ट हा ढीला हो जाते तो ओकरे सेती हमला खेत में चलाए के पहली ओकर नट बोल्ट के सही तरीका ले जांच कर लेना है। और हफ्ता में एक बार पाना पेचकस धर के सबो जोड़ मन ला कस देवा ताकि काम के बीच में मशीन हर झन टूटे। और जतका भी धार वाले औजार है ओकर हमला जतन करके रखना है, जैसे कि नांगर है कल्टीवेटर के फार और फसल काटे के मशीन के धार ला हमेशा तेज रखना है। अगर धार हर कम हो जाही तब मशीन हर ज़्यादा जोर लगही और डीजल हर घलो ज़्यादा जरही कहा ज़्यादा खपत होही, ओकरे सेती हमला धार वाला औजार के जतन करना है। ओकर धार ला पहली ले अच्छा से करके रखना है। और संगवारी हो एला सही तरीका ले चलाना है जतकी भी कृषि यंत्र है, मशीन ला ओकर ताकत ले ज़्यादा बोझ झन देवा यानी कि ओवरलोडिंग नहीं देना है। ट्रैक्टर ला सही गियर में चलावाओ एकर से इंजन के उम्र ह बाढ़ते संगवारी हो, एती ओती अर्रा धुर्रा हमला नहीं चलाना है। और काम नहीं होए के बखत जब हमार मशीन ले काम ह सिरा जाते तो एकर हमला सुरक्षित रखाई भी करना है, एला सुरक्षित तरीका ले रखना भी है। जब खेती के सीजन ह सिरा जाते तब मशीन ला खुल्ला मा झन छोड़ो, का करथन हमन हमार जो खेती किसानी के काम है वह सिरा गिस न कहके ओला हमन खुल्ला में छोड़ देथन तो एकर से जो मशीन के नाना प्रकार के ओकर भाग रहे थे ओहर खराब होए के संभावना रही थे संगवारी हो, एकरे सेती एला छाँव में रखना है और सूखा जगह में रखना है। और जंग लगे ले बचाए बर मशीन में पेंट या जोन भी जलिस वाला तेल है ओकर लेप लगा के हमन रख सकत हन। संगी हो मशीन के सेवा करबो तो मशीन हमला मेवा दही कहा। ऐसे ही इंजन वाला यंत्र है जैसे अभी आप बात करते रहें ट्रैक्टर है पावर टीलर है तो एकर फिल्टर के हमला सफाई के विशेष ध्यान रखना है। एयर फिल्टर ला नियमित रूप से साफ करना है ताकि इंजन ला पर्याप्त हवा मिल सके। और रेडिएटर कूलर के स्तर कूलेंट के स्तर के हमला जांच करना है। और रेडिएटर के जाली ला साफ रखना है ताकि इंजन ओवरहीटिंग के शिकार न हो सके। यदि यंत्र लंबे समय तक खड़ा रहने वाला है यानी वाला हमें लंबे समय तक रखना है तो बैटरी के जो टर्मिनल है वाला हटा देना है और वाला समय समय में चार्ज करते रहना है कहा। और एकर लाभ के बात करबो संगवारी हो तो पूंजी के बचत होते कहा, यानी कि मशीन के उम्र हर 5 से 7 साल तक बढ़ सकत है। यदि हमन कृषि यंत्र के सही इस्तेमाल और देखभाल करबो तो एकर हर एकर ले 5 से 7 साल तक ओकर उम्र हर बढ़ जाही तो एकर से हमीच माला फायदा है कहा। और ईंधन के भी बचत होते, अच्छा तरह ले सर्विस किया गया जो मशीन है ओकर ले 10 से 15% कम ईंधन खपत करते कहा। और संगे संग समय के भी बचत होते,
एन वक्त पर मशीन खराब हो के जो जोखिम है वह कम हो जाते और मशीन हमार अच्छा रही हमन ओकर सही इस्तेमाल करबो देखभाल करबो तो एकर से हमार मशीन अच्छा चलही तो हमार समय के भी बचत होही कहा तो एकरे सेती संगवारी हो हमला कृषि यंत्र के सही इस्तेमाल और देखभाल करना है। तो संगवारी हो ये तो होगी से आज के बाद के विषय। अब बेरा होगी न कृषक प्रश्न मंच के कोती जाए के। तो संगवारी हो आप मन कापी पेन निकाला और आज के प्रश्न ला लिखा। आज के प्रश्न हवे नींबू में लगने वाला दो प्रमुख कीट के नाम बतावा। तो संगवारी हो एकर उत्तर आप मल्ला हमन आगे चर्चा करबो ते ता एमा जरूर आप मल्ला मिल जही कहा। तो आप मन हमार कार्यक्रम ला पूरा अंत तक सुनिहा अंत तक बने रहा और एकर उत्तर लिख के जरूर भेजिया संगवारी हो ईमेल के माध्यम से या पत्र के माध्यम से। और संगवारी हो देखा आज के मौसम के कोती जाबो तो आज के अधिकतम तापमान रहिस 38 अंश सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहिस 25 अंश सेंटीग्रेड। आर्द्रता विहनिया 7 बजे रही से 80% और यह दोपहर में घट के 2 बजे होगी से 45% और हवा के गति 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार ले चलत रहिस और हवा के जोन दिशा है दक्षिण ले पूरब कोती बोहात रहिस कहा। और ये जानकारी हर हमला मिलते कृषि महाविद्यालय व अनुसंधान केंद्र बोईरदादर रायगढ़ के जोन मौसम वैधशाला है उमन के यंत्र के हिसाब ले ये जानकारी हर हमला मिलते कहा। अब आवा संगवारी हो सुनबो आज के भेंटवार्ता के क्रमला। तो आज के किसानी बहनी ला आज हवी दिन मंगलवार कहा और आज महिला किसानीन के बारी रहते तो मैं गे रहे ग्राम अमेरी विकास खंड बरम के लाके किसानीन कल्पना चौधरी ले अतिरिक्त आय के लिए धनिया

0: शक्ति के खेती ये विषय में हो रही मोर बातचीत तो आवा एला सुन लेबो।
1: संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। और देखा संगवारी हो, हमार कार्यक्रम में भेंटवार्ता किसान के क्रम रही थे, तो यही भेंटवार्ता के क्रम में मैं भेंट कर था एक किसानिन बहनी ले जोन मन धनिया के खेती करे हमें और बढ़िया से आमदनी कमात हमें, तो आवा संगवारी हो भेंट कर वो हमार संगवारी ले, हमार बहनी ले। तो दीदी आप मल्ला मोर को तिले राम राम जय जोहार।
2: राम राम जय जोहार।
1: हाँ, तो आप मन के परिचय बता।
2: मोर नाम कल्पना चौधरी।
1: अच्छा हाँ, आप मन कौन गा गया?
2: ग्राम मेरी से।
1: अच्छा हाँ, ये बता कि आप मन अभी धनिया लगाया।
2: हाँ
1: हाँ, तो ये धनिया ला कब ले लगाया?
2: ये धनिया ला हमन अप्रैल में लगाए हैं।
1: अप्रैल में लगाए। हाँ। तो जैसे ये धनिया लगा के पहले खेत के तैयारी करना पड़ते।
2: हाँ,
1: है ना, खेत के जुताई करना पड़ते, तो आप मन कैसे करे
2: हा? हाँ, ओला जुताई करे हन, ओकर बाद गार बनवाए हन।
1: अब मन का में जुताई कर है? ट्रैक्टर में।
2: हाँ, ट्रैक्टर में।
1: अच्छा, ट्रैक्टर में जुताई करवाले है, ओकर बाद गार बनाए है।
2: हाँ
1: हाँ,
2: ओकर बाद बीज डाले हन।
1: अच्छा, बीज डाले है।
2: हाँ।
1: तो ये बीज ला आप मन कहाँ ले लाने है?
2: बीज ला दुकान ले लाने हन, वही दवाई वाला दुकान ले।
1: अच्छा अच्छा हाँ, तो
2: ओला डाले हन, ओकर बाद पैरा डाले हन।
1: हाँ,
2: ओकर बाद दवाई डाले हन।
1: का दवाई डाले है?
2: बन नहीं जामे वाला।
1: अच्छा अच्छा हाँ, तो ये पैरा डाले हैं, तो पैरा ला कब डालते हैं?
2: पैरा ला बीज हर बढ़िया ठीक से जाम ही।
1: हाँ,
2: और बीज में घाम नहीं पाही।
1: हाँ हाँ,
2: तो हर फूल ही तहां ले और अच्छा से जाम थे पैरा।
1: अच्छा,
2: डाले ले।
1: हाँ, मतलब पैरा डाले ले ओ में नमी बने रही।
2: हाँ,
1: करके,
2: हाँ,
1: है ना?
2: नमी बने रही।
1: हाँ, मिट्टी में नमी बने रही तो।
2: हाँ,
1: जल्दी से होनी सूख पाए तो।
2: हाँ, हाँ,
1: जो बीज है वो अच्छा से उग जाए।
2: हाँ,
1: हाँ, जैसे पैरा डाले है ओकर बाद का करे है?
2: ओकर बाद पानी छिड़काव करे हैं।
1: हाँ, पानी छिड़काव करे हैं।
2: हाँ।
1: तो ये जो बीज है यह कतका दिन में जाम जाते?
2: ये हर 8 से 10 दिन में जाम जाते।
1: 8 से 10 दिन में।
2: हाँ।
1: जैसे छोटे छोटे हो जाते आप मल्ला दिखे वाला थे बीज।
2: हाँ।
1: पौधा के रूप में।
2: हाँ।
1: तो ओकर बाद का करना पड़ते?
2: ओकर बाद फिर से राखड़ देना पड़ते।
1: हाँ,
2: और पानी तो बीच बीच में छिड़कते रहे बरे।
1: अच्छा हाँ, बीच बीच में आप मन छिड़कते रहता, यानी
2: हाँ,
1: नमी देख के कहा।
2: हाँ, हाँ, नमी
1: जैसे
2: देख।
1: गर्मी में ज्यादा पानी।
2: हाँ,
1: अभी गर्मी ज्यादा लगत है तो ज्यादा पानी छिड़के वाला लगत है कहा।
2: हाँ,
1: तो अपन गर्मी के मौसम में कतका दिन में पानी छिड़कता?
2: 3 दिन में।
1: हाँ, 3 दिन 2 दिन में कहा।
2: हाँ, हाँ,
1: अच्छा, तो आप मन के पास सिंचाई के का सुविधा है?
2: सिंचाई के हमारे बोर है जो।
1: अच्छा, बोर है।
2: हाँ,
1: आप मन के खेत में ही बोर है कहा।
2: हाँ, हाँ,
1: हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात है।
2: हाँ,
1: तो जैसे यह जाम जाते तो आप मन बीच बीच में सिंचाई कर रहा था,
2: हाँ,
1: ओकर बाद यह कतका दिन में मतलब उसकाय के लाग हो जाते, मतलब एला बेचे के लाग हो जाते?
2: हाँ, वो 1 महीना 20 दिन 15 दिन में हो जाते।
1: अच्छा, 1 महीना
2: हाँ,
1: 15 दिन 20 दिन में हो जाते।
2: हाँ,
1: तो यह जैसे हो जाते।
2: हाँ,
1: तो का आपन सब धनिया ला एक साथ उसका था कि अलग अलग उसका था?
2: सब ला एक साथ उसका के।
1: अच्छा,
2: हाँ,
1: जैसे बड़े बड़े हो जा रहे थे जोन पौधा है,
2: हाँ,
1: तो ओला पहले उसका देता है ना?
2: नहीं नहीं,
1: नहीं।
2: सब एक साथ होती।
1: सब एक साथ
2: हाँ,
1: हो जाते?
2: दवाई विटामिन डालते नहीं तो सब एक साथ होती।
1: अच्छा, एक साथ हो जाते, माने
2: हाँ,
1: कि आप मन एक साथ सब खेत के लिए उखाड़ के बेच देता?
2: हाँ, एक साथ लेते।
1: अच्छा, तो एला आप मन कहाँ में बेचता?
2: इला गांव ला वो ये आते।
1: अच्छा, कोचिया?
2: हाँ, कोचिया।
1: कोचिया थे?
2: हाँ, या तो फिर रायगढ़ लेके।
1: अच्छा, रायगढ़ या पटेल पाली में लेके
2: हाँ,
1: बेचता?
2: हाँ,
1: मंडी में कहा?
2: हाँ,
1: हाँ, तो का आप मन ला एकर से लाभ मिलते?
2: हाँ,
1: तो आप मन एकर से पहले आऊ धनिया लगाए रहा?
2: हाँ, लगाए रहे।
1: अच्छा, मतलब आऊ भी एकर पहले लगा
2: हाँ,
1: चुके हैं।
2: हाँ,
1: हाँ, तो आप मन एकर खेती के बारे में पूरा जाना था, है
2: हाँ,
1: ना?
2: जाना था।
1: तो लगभग जैसे ये धनिया हार
2: हाँ,
1: आप मन बेचता
2: हाँ,
1: तो अनुमानित कतका रेट मिल जाते?
2: अनुमानित 100 रुपया 50 रुपया।
1: अच्छा हाँ, रेट के हिसाब से
2: हाँ,
1: मिल
2: रहते
1: जाते
2: हैं।
1: कहा।
2: हाँ, हाँ,
1: हाँ, तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और दीदी आप मन बहुत ही अच्छा जानकारी दे था
2: हाँ,
1: धनिया के खेती के बारे में।
2: हाँ,
1: तो आओ भी हमार जो दूसर रेडियो सुनने वाला श्रोता संगवारी हैं या किसान संगवारी हैं,
2: हाँ,
1: ओ मल्ला आप मन का कहना चाहता था, आप मन के संदेश बता।
2: हाँ, और संगवारी मन लगा बताया था
1: हाँ
2: कि और खाली नहीं बैठे,
1: हाँ
2: और कुछ कुछ धनिया कुछ कुछ साग सब्जी लगा के आपन के गुजारा था।
0: हाँ बिल्कुल आप मन सही कहा, आप मन के जो विचार है बहुत बढ़िया है, आप मन के संदेश बहुत अच्छा है। आप मन के जो आप धनिया के खेती के बारे में जानकारी दा एला सुन करके उमन भी ऐसे खेती कर ही और आमदनी कमा ही। आप मन ला इतनी अच्छा जानकारी दे बर बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम जय जोहार।
2: जय जोहार।
0: हाँ तो संगवारी हो हमन सुनत रहें आज के किसानिन बहनीला जोन मन धनिया के खेती करे हैं करे हवे और बहुत ही बढ़िया से आमदनी कमात हमें संगवारी हो। और हमन देखा आज के नसीहत के चर्चा करबो तो आज के नसीहत के विषय हवे नींबू में लगने वाले प्रमुख कीट एवं उनका नियंत्रण। देखा भैया हो नींबू जो लामन सिट्रस लिमोन भी कैथन यह रुटेसी कुल के एक छोटा सदाबहार पेड़ हवे वृक्ष हवे जोन ला एकर खाय योग्य फल बर उगाए जाथे जेकर उपयोग कई प्रकार के खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ में किया जाथे। ये वृक्ष हर फैले हुए और सीधा बाढ़ते मतलब यह एकर जो टहनी है यह फैलत जाथे और यह सीधा बाढ़त जाथे। एकर कुछ ही बड़ी शाखा होते और एमा कांटेदार पौधा भी होते। पेड़ में बड़े आयताकार या अंडाकार हल्के हरे पत्ता होते और एमा बैगनी सफ़ेद फूल गुच्छा में लगते और नींबू के फल एक अंडाकार बेर होते जो हरे छिलके ले घिरे होते जोन हर पके ले पीला हो जाते और अंदर की मुलायम पीला खंडित गुदा ला सुरक्षित रखते। नींबू के पेड़ हर 3 से 6 मीटर या फिर 10 से 20 फीट तक ऊंचा हो सकत है और यह कई बच्चर तक जीवित रह सकत है। लगभग 40 बच्चर में यह पूरी तरह से फल देवर लगते। नींबू ला झाड़ीदार नींबू या फिर फारसी सेब भी कहा जाते और माना जाते कि एकर उत्पत्ति भारत के पूर्वी हिमालय में हो रही। और एकर खेती बर संगवारी हो एकर जलवायु के बात करबो तो नींबू बर उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु हर सबसे अच्छा होते और पाला एकर बर हानिकारक हवे। एकर माटी के बात करबो एकर खेती बर तो जल निकासी वाला दोमट माटी सबले अच्छा हवे एकर बर उपयुक्त हवे और माटी के पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। और एकर उन्नत किस्म में हवे कागजी नींबू यह सबसे लोकप्रिय और अधिक रस वाला किस्म हवे। और संगवारी हो एकर रोपण के विधि के बात करबो तो नींबू के रोपण के समय जुलाई अगस्त या फिर फरवरी मार्च या फिर अभी आप मन तैयारी कर सकत हो। और एकर पौधा ले पौधा के बीच के दूरी 5 मीटर या फिर 6 मीटर के दूरी रखना चाहिए। एकर गड्ढा के आकार 60 सेंटीमीटर लंबा 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा हमन खोद करके ओमा खाद डाल के माटी भर करके हमला पौधा ला लगाना है। नींबू वर्गीय फसल में कीट के प्रकोप हर संगवारी हो काफ़ी अधिक होते जो न केवल फल के गुणवत्ता ला खराब करते बल्कि पेड़ के उम्र ला भी कम कर देते। तो एमे का कीट लगते एमे लगने वाला प्रमुख कीट का हवे संगवारी हो तो एक तो हवे सिट्रस बटरफ्लाई यह नींबू के सबसे हानिकारक नींबू में लगने वाला सबसे हानिकारक कीट हवे। एकर इल्ली शुरुआती अवस्था में पक्षी के बीट की तरह दिखाई देते और बाद में हरा रंग के हो जाते और यह का नुकसान पहुंचाते हमार नींबू ला तो एकर जो इल्लिया है कोमल पत्ती ला किनारा ले खाना शुरू करते और देखते ही देखत पूरा पेड़ ला पत्ती विहीन कर देते यानी कि पूरा पेड़ के पत्ती ला झड़ा देते। और एकर नियंत्रण कैसे करना है संगवारी हो तो हाथ ले इल्ली मल्ला चुन करके हमला नष्ट कर देना है। ये जो कीट है सिट्रस बटरफ्लाई एकर इल्ली ला हमला हाथ ले ही चुन चुन करके ओला नष्ट करना है। और नीम के तेल के 5 मिलीलीटर 5 मिलीलीटर

लीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके हमला छिड़काव करना है। नींबू के तेल ला एमें छिड़काव करना है और गंभीर अवस्था में हमला क्विनाल फास 25 ईसी 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हमन छिड़काव कर सकते हैं। यानी कि ये जो क्विनाल फास है ओला 1 लीटर पानी ले पानी में 2 मिलीलीटर डाल करके हमने का छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरा कीट हवे संगवारी हो लीफ माइनर। ये कीट हर पत्ती के भीतर टेढ़ी मेढ़ी चमकदार सुरंग बनाथे। एकर पत्ती के भीतरे भीतर एहर टेढ़ी मेढ़ी सुरंग बना लेथे और एकर से जो पेड़ है ओला का नुकसान होते तो एकर से पत्ती हर मुड़ जाते सूख जाते और प्रकाश संश्लेषण कम हो जाते। एकर ले सिट्रस कैंकर रोग फैले के खतरा भी बढ़ जाते और एकर नियंत्रण पर हमला प्रभावित पत्ती ला तोड़ करके जला देना है। जोन पत्ती में एकर जो लक्षण दिखा थे तो पत्ती ला हमला तोड़ देना है औला जला देना है और इमिडा क्लोरफ्रीड या फिर स्पिनो सैंड के हमला उपयोग करना है और नई पत्ती आए के समय नीम के काढ़ा के स्प्रे करना है। जब हमन पेड़ वृक्ष में या पेड़ में देखा था नींबू के तो उमें नया पत्ती आ थे करके दिखाई दे थे तो उमें नीम के काढ़ा के हमला स्प्रे कर देना है। और तीसरा है संगवारी हो सिट्रस साइला। ये हर एक छोटा सा उड़ने वाला कीट हवे जो कोमल टहनी और पत्ती के रस ला चूस ले थे। एकर से एकर हमला ले जोन पत्ती है वह पीला पड़ जाते और फूल हर झड़े वलग थे और ये कीट है सिट्रस ग्रीनिक नामक घातक बीमारी के वाहक भी होते। एकर नियंत्रण पर डायमिथियोट के छिड़काव करना है और पीला चिपचिपे प्रपंच के हमला प्रयोग करना है। तो ये सब प्रकार के कीट हमार नींबू में लगते कहा और भी कीट हवे सिट्रस सीड्स। ये हर बहुत सूक्ष्म लाल पीले रंग के मकड़ी जैसे कीट होते जो पत्ती के निचले सतह में रहते। एकल ले पत्ती में सफेद या धूल भरे धब्बे दिखाई देते और फल के जो रंग है वह बदरंग हो जाते। एकर नियंत्रण पर हमला घुलनशील गंधक 3 ग्राम प्रति लीटर छिड़काव करना है या फिर प्रॉपर गाइड के प्रयोग भी एकर बर प्रभावी होते। अब एक ठन कीट हवे संगवारी हो जो नींबू के फल चूसक कीट हवे। ए कीट हर रात के समय सक्रिय होते और पकने वाले फल में छेद करके रस ला चूस लेते। एकर से सुई जैसे छेद के कारण फल सड़ करके नीचे गिर जाते। आप मन देखे हवा कि फल अपने आप सड़ के नीचे गिर जाते तो ये कीट के कारण होते। ये जो फल चूसक सलब है एकर कारण ऐसे होते। एकर नियंत्रण पर बगीचा के आसपास झुमक लता ला नष्ट कर देना है। जो हॉस्ट प्लांट है ओला हमला नष्ट कर देना है और रात के समय धुआं करना है या फिर प्रकाश प्रपंच लगाना है। फल ला कागज या पतले कपड़ा ले थैली ले ढक देना है। ये सब ओकर नियंत्रण के उपाय हवे संगवारी हो। ये सब वो हर नींबू में लगने वाला कीट हवे और देखो ओकर हमला साफ सफाई भी करना है। एकर कीट प्रबंधन कैसे करना है तो सूखा ओकर जो नींबू के पेड़ के सूखा है रोगग्रस्त टहनी है ओला समय समय में छटाई करना है और ओकर साफ सफाई करना है। और बगीचा में मित्र कीट जैसे लेडीबग बीटल ला बढ़ावा देते इसमें जैविक नियंत्रण के उपाय ला कर सकथन। और नीम के प्रयोग हमला हर 15 ले 20 दिन में नीम आधारित कीटनाशक के छिड़काव एक सुरक्षा कवच के तरह काम करते तो ओकरे सेती हमला नीम के प्रयोग करना है हर 15 ले 20 दिन में। और संतुलित खाद डालना है कह अधिक नाइट्रोजन के प्रयोग ले हमला बचना है काबर की हर कोमल पत्ती ला बढ़ावा देते जेकर ले कीट अधिक आकर्षित होते। हमारे पेड़ में जब
कोमल पत्ती ज़्यादा रही तो कीट है तो आकर्षित हो ही। ओकरे से ती हमलाओं में संतुलित मात्रा में खाद डालना है, न ज़्यादा न कम। तो ये तो होगी संगवारी हो नींबू में लगने वाले प्रमुख कीट अवमन के नियंत्रण के उपाय। तो आवा संगवारी हो सुन ले वो एक ठन ये सुग्घर अकन के लोकगीत ला।

0: मेरी लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: माटी के सांस लौटा ही हरी खाद, अंधाधुन रासायनिक खाद ले थक चुके हैं जमीन, इला करना है फिर ले जिंदा। हरी खाद माटी के संरचना ला सुधारते, नमी ला बनाए रखते, पैदावार ला 20% तक बढ़ाते, सस्ता सरल और टिकाऊ खेती के आधार हरी खाद। आज ही शुरुआत करो हरी खाद पर बीज मा ढेचा सनई मूंग जैसे बीज के उपयोग करो और धान के फसल लेहे के पहली एकर बुआई जरूर करो। ज्यादा जानकारी पर अपन के लखठा के स्थानीय कृषि कार्यालय ले संपर्क कराओ।
2: हाँ तो संगवारी हो, अभी हमन सुनत रहन संदेश और संदेश के पहले सुनत रहन सुघर अकन के लोकगीत ला, जेला गाय रहिन है चतुर राम साहू, कांति यादव और गीता भट्ट। तो लोकगीत है बढ़िया लागिस हो ही संगवारी हो, बढ़िया तो लागिस कहा। और देखा आज के टिप के विषय में बात करबो, तो आज के टिप के विषय हवे फसल चक्र के सिद्धांत अपनाएं और भूमि की उर्वरता बढ़ाएं। देखा संगवारी हो, फसल चक्र अपना करके हमला भूमि की उर्वरता और पैदावार ला बढ़ाना है। यह एक ठन टिकाऊ कृषि पद्धति हवे। एकर सीधा सा मतलब ये हवे संगी हो कि एक ही खेत में ये हर बार एक ही फसल ला हमला नहीं उगाना है, फसल ला अदल बदल करके हमला बोना है या फिर उगाना है कहा। एकले माटी ला पोषक तत्व वापस मिलते और कीट बीमारी के प्रकोप कम होते। देखा संगवारी हो, हमन एक ही खेत में एक ही फसल ला बार बार लेबो तो ओमे का होते, माटी के जोन उर्वरा क्षमता होते और कम हो जाते, तो ओकरे से ती हमला फसल ला अदल बदल के फसल चक्र ला अपनाना है। और फसल चक्र के मुख्य सिद्धांत ये हवे कि दलहन के बाद हमला अनाज वाला फसल लेना है। दलहन फसल जैसे कि मूंग है, उड़द है, चना है, सोयाबीन है, ये सबो हर माटी में नाइट्रोजन ला स्थिर करते, नाइट्रोजन ला स्थिरीकरण करते। एकर बाद अधिक पोषक तत्व लेहे वाला फसल जैसे कि गेहूं है, मक्का है, धान है, ये लगाना चाहिए। यानी दलहन के बाद अनाज वाला फसल लगाना चाहिए। ओकर बाद गहरा जड़ वाला फसल के बाद उथला जड़ वाला फसल लगाना चाहिए। जैसे गहरा जड़ वाला फसल हवे अरहर, कपास, माटी के निचला स्तर ले एहर पोषक तत्व वाला।

देते, यानी कि एक जड़ गहराई तक जाते तो यह जो निचला स्तर है माटी के वहाँ ले पोषक तत्व वाला लेते, जबकि उथला जड़ वाला फसल है जैसे गेहूं है वह ऊपरी परत ले पोषक तत्व वाला लेते, तो ओकरे सेती हमला गहरा जड़ के बाद उथला जड़ वाला फसल लगाना है, और अधिक खाद चाहने वाली फसल के बाद कम खाद चाहने वाली फसल ला लगाना है, जैसे आलू या गन्ना जैसे फसल ज़्यादा उर्वरक लेते, ओकरे बर ओकर बाद दाल या दूसर कम पोषक तत्व ले वाला फसल ला लगाना चाहिए, और माटी में कार्बनिक पदार्थ ला बढ़ाना है बढ़ाते हर, तो फसल चक्र में ऐसे पौधे ला पौधा ला शामिल करना है जो अधिक बायोमास यानी कि जैव पदार्थ ला छोड़ते, जैसे सनई है या ढेचा है। अभी अपन ये सनई और ढेचा के बारे में सुनत रहा कहा, और खरपतवार और रोग नियंत्रण पर यह फसल चक्र हर कारगर होते, अलग अलग फसल उगा ले कीट मन के जीवन चक्र हर टूट जाते और हर नष्ट हो जाते, और भूमि के उर्वरता बढ़ाए पर भी फसल चक्र के आप मन उदाहरण के रूप में समझ सकत है, जैसे धान है, धान के बाद गेहूं, गेहूं के बाद मूंग या फिर ढेचा, ये हर सब ले लोकप्रिय और टिकाऊ फसल चक्र हवे संगवारी हो। मक्का है, मक्का के बाद सरसों, उकर बाद उड़द, ये फसल चक्र हर फसल विविधता ला बढ़ाते और माटी ला स्वस्थ रखते, ऐसे ही अरहर, अरहर के बाद गेहूं, गेहूं के बाद परती जो लहमन फेलो भी कहथन, माटी ला हर आराम दे बर और पोषक तत्व ला पुनः प्राप्त करे बर ये चक्र ला अपनाना है। सोयाबीन, सोयाबीन के बाद गेहूं या सरसों तो लगाना है, तो एकर से खरीफ में दलहन के बाद रबी में अनाज लगाना है, और फसल चक्र के प्रमुख लाभ के बात करबो तो उर्वरता में वृद्धि होते, फसल चक्र अपनाए ले हमर जोन उपज माटी के उर्वरता है उसमें वृद्धि होते, कहा माटी में प्राकृतिक रूप ले नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ के मात्रा हर बढ़ते, और संगवारी हो फसल चक्र ले कीट बीमारी में कमी आते, एक ही फसल में निर्भर रहने वाला कीट और बीमारी जैसे उकठा रोग हर कम हो जाते, जैसे हम एक ही खेत में एक ही फसल ला लगाथन तो उसमें कीट और बीमारी बहुत जल्दी लगे के संभावना रहते, और फसल चक्र अपना ले खर्च में भी कमी आते संगवारी हो, उर्वरक और कीटनाशक के प्रयोग हमला कम करना पड़ते, और मृदा संरचना में सुधार भी होते एकर से फसल चक्र अपना ले, अलग अलग जड़ ले माटी के संरचना और जल धारण क्षमता हर बेहतर हो जाते, और आर्थिक स्थिरता बने रहते, किसान ला साल भर अलग अलग फसल मिले ले आय बने रहते, और ये संगवारी हो आप मन एक ही फसल के खेती के साथ फलदार यानी दलहन या फिर हरी खाद जैसे ढेचा है, सनई है, ये वाला फसल ला शामिल करत हवा तो माटी के उर्वरता स्वाभाविक रूप ले बढ़ी और आप मन के पैदावार हर भी बढ़ी, तो आप मन फसल चक्र ला अपनावा संगवारी हो और मुनाफा कमावा। ये तो होगी आज के टिप के विषय, और संगवारी हो आगे और भी चर्चा के विषय है, कहा वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह पर्व।

सकत हे। कतका झन कैसे करथे संगवारी हो, अपन लत में चलत रहते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। हमला सड़क में चले के नियम के अनुसार ही चलना है, सावधानी से चलना है। एकर से हमर ही जान नहीं बचे बल्कि दूसर के भी जान बचते। तो हमन आप मन बर नारा ये हवे संगवारी हो, परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे। ये अभियान के मूल भावना ला पूरा तरह ले व्यक्त करते। संगी हो, सुरक्षित ड्राइविंग के मूल मंत्र ये हवे कि गति सीमा के पालन करना है। संगी हो, जल्दी पहुँचे ले बेहतर हवे सुरक्षित पहुँचना। हमन जल्दी जल्दी पहुँचे के चक्कर में हमन जो गाड़ी चलाए के जो गति है ओला हमन अधिक कर देथन, जेकर से दुर्घटना हो के संभावना हो जाते। तो एकर से अच्छा ये हवे कि जल्दी पहुँचे ले हमन सुरक्षित पहुँचन, संगवारी हो धीरे चलन और हमेशा हमर जोन गति है ओला निर्धारित सीमा के भीतर ही हमला चलाना है। और जैसे हमन सड़क में वाहन चलात हन तो सुरक्षा उपकरण मन के उपयोग हमला जरूर करना है। यदि हमन दुपहिया वाहन में हन तो हेलमेट ला जरूर लगाना है। और हमन चार पहिया या फिर कार में हन तो उमें सीट बेल्ट के उपयोग अनिवार्य रूप से हमला करना है। यह दुर्घटना के समय जीवन रक्षा के पहली कड़ी हवे संगवारी हो। यदि हमर दुर्घटना हो जात भी है तो ये सब जो सुरक्षा उपकरण है यह हमला बचा लेते। ओकरे सेती हमला ये जो सुरक्षा उपकरण है ओला अपनाना है। कुछ देर के जो जैसे कतका जन कहते हैं कि हेलमेट लगाए पर हमला अच्छा नहीं लगे, बाल खराब हो जाते, तो ये सब ला झन देखाओ संगवारी हो। सुरक्षा उपकरण ला जरूर लगावा और अपमन सुरक्षित रहो। और संगे संग हाँ, कतका संगवारी मन नशा में वाहन चलाते हैं, तो ऐसे नहीं करना है संगवारी हो। नशा में वाहन नहीं चलाना है। शराब पी करके वाहन चलाना न केवल अपराध हवे बल्कि यह जानलेवा भी हवे। देखा संगवारी, कोई तो शराब पिए है, एक जन के लापरवाही के वजह से सड़क में कई जन के जान जा सकत है। मतलब एक लापरवाही करने वाला इंसान के वजह से एक दूसर इंसान अच्छा इंसान के मौत हो जाते। तो एकरे से ती हमला नशा में वाहन नहीं चलाना है और फोन से दूरी बना के ही रहना है। देखा संगवारी हो, हमन गाड़ी चलात हन तो मोबाइल के उपयोग नहीं करना है। काबर की मोबाइल के उपयोग करे ले हमर ध्यान ह भटक जाते। यदि फोन आते और बात करना जरूरी हवे तो गाड़ी ला किनारे करके खड़े करके हमला बात करना है। तो संगी हो, हमला पैदल चलने वाला मनखे मन के ऊपर भी ध्यान देना है। उमन जैसे हमन उमन के सम्मान करना है। ये जो रोड रहते सड़क रहते वह सिर्फ गाड़ी चलाने वाला मन भर नहीं हवे, वह बल्कि सबके हवे। सड़क सिर्फ उमन के नहीं है। और हमला जेब्रा क्रॉसिंग के उपयोग करना है और पैदल चलने वाला मल्ला का करना है प्राथमिकता देना है। संगवारी हो, जागरूकता ही बचाव हवे। ट्रैफिक सिग्नल के पालन करना है। लाल पीली या हरी बत्ती के संकेत के ईमानदारी से हमला पालन करना है। और वाहन के रख रखाव समय समय में अपन वाहन के ब्रेक टायर और लाइट के जांच करवाते रहना है। संगी और सड़क सुरक्षा कन्हो एक व्यक्ति के जिम्मेदारी नहीं हवे बल्कि एक सामूहिक कर्तव्य हवे। जब हमन सड़क पर परवाह करथन तब हम और हमर परिवार ह सुरक्षित रहते। तो ये तो रही संगवारी हो वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह जो 8 से 12 मई तक मनाए जाते। तो आवा संगवारी हो, एक ठन आऊ सुघर अकन के लोकगीत ला सुन लेबो, ओकर बाद फिर चर्चा करबो।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए।
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे, RBI कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हाँ तो संगवारी हो, अभी हमन सुनत रहें संदेश कहा, और संदेश के पहली सुनत रहें लोकगीत ला, और एला गाय रहन है केदार यादव और मन के साथी मन। तो लोकगीत बढ़िया लागे हो ही संगवारी हो, कैसे लागे संगवारी हो आप मन जरूर लिख के भेजियो ईमेल के माध्यम से या पत्र के माध्यम से। और देखा संगवारी हो, हमार और चर्चा के विषय हवे स्क्रीन टाइम कम करने में माता पिता और समुदाय की भूमिका। तो देखा भैया हो, स्क्रीन टाइम ला संतुलित करना आज के डिजिटल युग में एक बड़े चुनौती हवे। एला कम करे बर केवल बच्चा मन के ऊपर ही हमला दबाव नहीं डालना है, दबाव डालना ही नहीं है, बल्कि एमें माता पिता और समुदाय, समुदाय यानी कि आस पड़ोस, स्कूल और समाज, ये सबों के सामूहिक भूमिका सबले महत्वपूर्ण हवे संगवारी हो। यानी ये सबों मिलजुल के हमन बच्चा मन के स्क्रीन टाइम ला कम करे में सहायक हो सकत है। तो माता पिता के का भूमिका होना चाहिए, बच्चा संगवारी हो वही सीखते जो ओमन देखते, न कि ओला सीखते जो हमन ओला कहथन। ओकरे बर एकर बदलाव की शुरुआत घर से ही होना चाहिए। तो एकर बर हमला रोल मॉडल बनाओ। यदि माता पिता खुद हर समय फोन के इस्तेमाल करी तो बच्चा भी वही करी कहा। तो संगी हो, भोजन के समय या बातचीत के दौरान फोन ला दूर रखे के आदत डालो। यानी कि आप मन मोबाइल देखिए तो बच्चा मन देखी तो ओ मन भी देखे वा लगते हैं, ओकरे सेती ओ मन के सामने में मोबाइल झन देखाओ। विकल्प प्रदान करो संगवारी हो ओमन ला, केवल फोन छीन लेना ही समाधान नहीं हवे, बच्चा मन ला बोर्ड गेम्स, पेंटिंग है, कहानी सुनाना या फिर घर के छोटे मोटे काम में शामिल करके ओमन के ध्यान ला हमला आकर्षित करना है। और संगे संग डिजिटल साक्षरता, बच्चा मन ला तकनीक के उपयोग के फायदा और नुकसान के बारे में हमला समझाना है कहा। ओमन ला सिखावा कि इंटरनेट एक उपकरण हवे, न कि मनोरंजन के एकमात्र साधन। हमार आजकल लइका मन, बच्चा मन, सबो बच्चा मन इंटरनेट ला एक मनोरंजन के साधन ही मान चुकी हैं।

हमेशा उनमें मनोरंजन करत रहते हैं। तो यह सिर्फ मनोरंजन के ही साधन नहीं हवे, इमें नाना प्रकार के जानकारी भी रही थे। कहा एक जैसे उपयोग करबो वैसे होते संगवारी हो, तो एक सेती हमला उमन के डिजिटल साक्षरता के ऊपर भी ध्यान देना है। और एमा समुदाय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। समुदाय भी एक ऐसे वातावरण बना सकते हैं जहां स्क्रीन के बिना रहना आसान और मजेदार होते। कहा उमन बस सुरक्षित खेल के मैदान तैयार कर सकते हैं। सामुदायिक गतिविधि है, जैसे मोहल्ला या कॉलोनी में बच्चा मन बर खेल प्रतियोगिता, लाइब्रेरी या फिर स्टोरी टेलिंग सेशन या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन किया जा सकते हैं, जेकर से बच्चा मन स्क्रीन टाइम ले दूर रह सकें, उनके स्क्रीन टाइम ला कम कर सकें। तो ये तो है संगवारी हो स्क्रीन टाइम कम करने में माता पिता और समुदाय की भूमिका। और संगवारी हो संतुलित उर्वरक उपयोग और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। और संगवारी हो मोर जाए के बेला हो गए, कहा तो मोला देवा विदा। आप सबो संगी संगवारी मल्ला सुमित्रा पटेल के राम राम, जय जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कृषक बंधुओं का कार्यक्रम किसानवाड़ी। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:20 हुए हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम में ये सुनते हैं भरत कुमार और साथियों की आवाज में उन्हीं की लिखी हुई गीत, सुरेंद्र कोहली के संगीत निर्देशन में।

0: 90. अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: इसी के साथ कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत अब संपन्न होता है। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:30 होने को हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए गीत गाता चले इस फिल्म का गीत, जसपाल सिंह और साथियों की आवाज में, रविंद्र जैन की लिखी हुई गीत उन्हीं के संगीत निर्देशन में।

0: FM 90।
1: हेलो नमस्कार, रेडियो श्रोता में रामलाल बिश्नोई जोधपुर राजस्थान से। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी टीम रायगढ़ को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी से हमें सही सटीक जानकारी मिलती है तथा लोकल प्रोग्राम व राष्ट्रीय प्रोग्राम से हमारी जानकारी में वृद्धि एवं मनोरंजन होता है। आकाशवाणी ही सही मायनों में जन जन की वाणी है। आकाशवाणी देश का गौरव है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।

कार्यक्रम चित्र प्रसंगित में आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में रविंद्र जैन की लिखी हुई गीत उन्हीं के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम है सौदागर।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
6: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
6: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
6: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
7: इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। FM 107.7 MHz पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक संबंध में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांचकर्ता अब संदिग्ध नेटवर्क के विस्तार और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के प्रसार से जुड़े धन के लेन देन की जांच कर रहे हैं। दल ने कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। अगले दिन 4 नीट परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर 2 गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीसामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न देने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम के एकमात्र विधायक एस कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कल से ही विश्वास मत से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंत नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सहित 4 मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं।
2: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और

0: तुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि इस कदम से अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक, तकनीकी अथवा भू राजनीतिक हर तरह की बाधाओं का सामना करने में सक्षम है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खंडित भू राजनीतिक और व्यवसायिक परिस्थितियों के कारण दुनिया हर दिन संकटों का सामना कर रही है, लेकिन भारत ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में परिवर्तित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
2: विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार ना करें। और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होकर उभर के आएगा।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
3: आईसीएआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने किफायती दरों पर रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच बंबई शेयर बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई है। अन्य आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
4: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की गिरावट से 95.63 पैसे प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ।
1: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। गुजरात में जनगणना का पहला चरण 1 जून से शुरू होगा। लोगों को पहली बार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे। पहली से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिम्बोग में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एरवियन स्याह और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन अमसा कारुनन और एमआर अर्जुन तथा महिला डबल्स में ऋतुपर्णा श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि चार अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए kmygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। सीबीआई अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मोहम्मद रफी को अब्दुल्ला फिल्म में सुना। अब सुनिए पतंग फिल्म में लता मंगेशकर को। धुन बनाई है चित्रगुप्त ने, बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने।

अब सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है अनुरोध।

0: ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए।
1: तुम्हें याद करते करते
2: छाया गीत
1: लग जागने,
2: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
3: तेरे मेरे सपने अब
2: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
3: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
2: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

मदन मोहन के ही संगीत निर्देशन में एक और गीत सुनिए, चिराग फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की, और इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

आप सुनिए कारवां फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके लिए। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ। ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: ये है विविध भारती।
1: आज की फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: चंद्रमा।
1: भारतीय सिनेमा आज जिस शिखर पर है उसके पीछे अनगिनत कलाकारों तकनीशियनों का योगदान है। एक सदी की यात्रा के बाद आज भारतीय सिनेमा तकनीकी रूप से बहुत विकसित है, लेकिन जब सिनेमा अपनी राह बना रहा था, परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए कैमरे की अपनी भाषा और व्याकरण गढ़ रहा था, उस दौर में लोक रंजन के प्रभावशाली माध्यम सिनेमा के जरिए अनेक कलाकारों ने दर्शकों के स्मृति पटल पर अपनी एक अमिट छवि अंकित करती थी। गुजरे दौर के एक विशिष्ट कालखंड में सिनेमा के पर्दे पर राज किया था अभिनेता महिपाल ने।

भारत में हिंदुस्तानी सिनेमा के शुरुआती दौर में पौराणिक आख्यानों, जादूगरी की तिलस्मी दुनिया के आसपास बुनी गई कहानियों पर आधारित फिल्मों की अधिकता थी। आम दर्शकों की अभिरुचि, बाजार की मांग, बजट और तकनीक की सीमित उपलब्धता के दबाव के चलते फिल्म निर्माताओं ने कॉस्ट्यूम ड्रामा युक्त पीरियड फिल्मों को ज्यादा तवज्जो दी। महिपाल पौराणिक आख्यानों पर आधारित फिल्मों के नामचीन अभिनेता थे।

0: सन 1919 में जोधपुर राजस्थान में जन्मे महिपाल सिंह सन 1940 में मुंबई आ गए और पहली बार नजर आए 1942 में आई फिल्म नजराना में। अभिनेता महिपाल ने होमी वाडिया, जेबीएच वाडिया, सोहराब मोदी और वी शांताराम जैसे उस दौर के दिग्गज फिल्मकारों के साथ काम किया था।
1: कुछ भी नहीं।

0: फिल्म नवरंग में अभिनेता महिपाल की भूमिका अभिनय कला के विविध रंगों में रंगी नजर आती है।
1: अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली कंकरी गले में मारी कंकरी कन्हई ने पकड़ी बाह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा भोली पनी हारी बोली।

नवरंग महिपाल की एक उल्लेखनीय फिल्म है। अभिनेत्री निरूपा रॉय, माला सिन्हा और मीना कुमारी के साथ भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। बाबू भाई मिस्त्री की फिल्म पारस मणि भी अभिनेता महिपाल की एक प्रसिद्ध फिल्म है।

0: अभिनेता महिपाल के अभिनय से सजी यूं तो अनेक फिल्में हैं, लेकिन उनमें भी प्रसिद्ध फिल्में हैं अल हिलाल, माया बाजार, जन्म जन्म के फेरे, आन बान, तुलसीदास, अलीबाबा और 40 चोर, अल्लादीन और जादुई चिराग, जबक, संपूर्ण रामायण, सुनहरी नागिन, बीन का जादू, जंतर मंतर, वीर भीमसेन, सती सावित्री, वीर घटोत्कच, बालक ध्रुव, रानी और लालपरी, जय संतोषी मां, गोपाल कृष्ण और संत रविदास की अमर कहानी। अभिनेता महिपाल की मशहूर फिल्म का ये गीत आज भी बेहद लोकप्रिय है।
1: जरा

दर्शकों में अभिनेता महिपाल के लिए जबरदस्त दीवानगी थी। पर्दे पर कई पौराणिक चरित्रों की भूमिका में दर्शकों ने उन्हें सराहा। कई अवसरों पर लोग श्रद्धा में भरकर उनके चरण तक छू लिया करते थे। महिपाल हमारे भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

0: याद रखना।
1: जाओ कहीं भी सनम, तुझे इतनी पसंद, हमें याद रखना
0: ओ तेरी दुनिया।
2: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म अभिनेता महिपाल पर। विविध भारती की ओर से यह कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विविध भारती कार्यक्रम 107 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 10 बजने को है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविध संगीत। कार्यक्रम का आरंभ लीजिए सुनिए उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में। कलाम है अमिक हनफी का और संगीतकार हैं उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।

हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं। ये गीत अभी आप सुन रहे थे एक फूल दो माली फिल्म से। आवाजें थी आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। गीतकार थे प्रेम धवन और संगीतबद्ध किया था रवि ने। कार्यक्रम बीवी

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: कार्यक्रम देवी संगीत में आइए सुनते हैं पंकज उदास की आवाज में जमीर काजमी की लिखी हुई गीत, पंकज उदास के संगीत निर्देशन में।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
3: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संडली
5: भारती।
6: इसी के साथ कार्यक्रम देवी संगीत अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 16.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजकर

30 मिनट होने को हैं। प्रस्तुत है पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं नागिन फिल्मों का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। शब्द रचना है राजेंद्र कृष्ण की और संगीतकार हैं हेमंत कुमार।

अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त

0: करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़। श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।
7: पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें में आइए सुनते हैं शिकारी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज में। फारूक कैसर के बोल हैं, संगीत से सजाया है जीएस कोहली ने।

धीरे रे चलो मोरी बांकी हिरणिया। ये गीत अभी आप सुन रहे थे जौहर महमूदीन गोवा फिल्म से, मुकेश की आवाज में, कमर जलाबादी की लिखी हुई गीत, कल्याण जयानंद जी के संगीत निर्देशन में। कार्यक्रम यादें का अगला गीत हमने लिया है बॉम्बे टू गोवा। इस फिल्म में आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को, बोल हैं राजेंद्र कृष्ण के और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

0: करते हो?
1: क्या कर रहा हूँ?
0: भैया छोड़ो ना।
1: क्यों छोड़ू?
0: समझो ना।
1: क्या समझूं?
0: वो लोग देख रहे हैं।
1: अरे तो देखने दो, और जलेंगे।
0: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
1: आओ ना।

0: तुम्हें पाके हम जहां पा लिया है, ये गीत आप सुन रहे थे गहरा दाग फिल्म से। आवाजें थी आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की, शब्द रचना थी शकील बदायूनी की और संगीतकार थे रवि। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए, नौशाद की संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी की लिखी हुई गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है गंगा जमुना।
1: गोरी गुजरिया से नेहा हमार

आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

0: बनिया रामा कैसा जा।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक, मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, 22 स्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून दिल की आरती,
2: सुरीली संडली।
7: इसी के साथ पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित क्रमशः हिंदी व अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे।

0: Touches of gold. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Sunrisers Hyderabad by 82 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad tonight, chasing a target of 169 runs. Sunrisers Hyderabad were all out for 86 runs in 14.5 overs. Earlier put into bat, Gujarat Titans posted 168 runs for the loss of 5 wickets in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब आज का हमारा प्रसारण समाप्त होता है। कल के प्रसारण के साथ सुबह 5:51 पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब आज का हमारा प्रसारण समाप्त होता है। कल के प्रसारण के साथ सुबह 5:51 पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे।